सूरज की पहली किरण यह संदेश देती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहिए। हर नया दिन नई उम्मीद और नई सफलता लेकर आता है।

ईश्वर की भक्ति, अच्छी सोच और निरंतर कर्म, यही जीवन को सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाने वाले 3 अमूल्य सूत्र हैं। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपके बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए भारती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून 2026 सुबह के 5:53 और 28 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए आपको जानकारी दे दें, आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। छह बजकर दस मिनट का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। छह बजकर चौवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान।

7:10 का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का। आठ 8:45 पे आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर का। 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल।

3:10 का समय रहेगा कार्यक्रम मन भावन का। 5:10 पर आप सुनेंगे पानी पर लिखी कहानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

साथियों, कहते हैं कि कलयुग जोग न जग्गे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। अर्थात कलयुग में न योग है, न यज्ञ है और न ज्ञान है। कलयुग में केवल राम के गुणों का गान ही एक आधार है। भगवान राम का जीवन चरित्र हमें प्रेम, त्याग, धर्म और मर्यादा के पथ पर अग्रसर करता है। और जब जानकी नाथ अंग संग हो तो फिर कौन बिगाड़ करे।

साथियों, जब भक्त और भक्ति की बात होती है तो अनन्य भक्तों का जिक्र होता है और एक नाम आता है सूरदास जी का, जो सबसे अलग दिखाई देता है क्योंकि उनकी भक्ति में वात्सल्य, सखा भाव और माधुर्य का एक अनूठा संगम है जो ईश्वर को मानव रूप में उनके समीप लाता है। आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। आइए सुनते हैं उनकी एक भावपूर्ण और भक्तिमय रचना।

और कर्म सब कर्म है भक्ति कर्म नेह कर्म, कहे कबीर पुकार के भक्ति करो तजी भर्म। लेकिन देखा जाए तो भक्ति दरअसल कोई कार्य नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और इस वक्त हम और आप मिलकर एक साथ कर रहे हैं श्रद्धा और भक्ति के सुमन अर्पण उस परम शक्ति के प्रति। 6:34 और 47 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त।

आयुष सुमिरन को इसी प्रकार जारी रखते हैं 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर. और अब सुनते हैं रामचरितमानस का ये सुंदर जीवनदायिनी प्राणदायिनी राम नाम गुणगान, रामचरितमानस का ये सुंदर संगीतमय पाठ.

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा।

के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं, उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना इसे बालकांड से लिया गया था और इसी के साथ अब कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब जानेंगे देश और दुनिया का हाल संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के जरिए। और उसके बाद 7:10 पर आपसे एक बार फिर मिलूंगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक सन्धेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामि क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और

0: राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and

साथियों, सूरज हर रोज ये सिखाता है कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उजाला फिर लौट कर आता है। तो अगर किसी बात की चिंता आपको परेशान कर रही है तो उसे थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए और इस खूबसूरत सुबह की ताजगी को अपने दिल में उतरने दीजिए और इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड और 7:11 और 44 सेकेंड पर। गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जनाब 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया से ये गाना था आशा जी और रफी साहब की आवाज में, और फिल्म बड़ी मजेदार क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें तीन स्ट्रगलिंग और बेरोजगार कलाकार एक ही घर में रहते हैं और अनजाने में तीनों ऐसी लड़कियों के प्यार में पड़ जाते हैं जिनकी रुचियां उनके दोस्तों की रुचियों से मेल खाती हैं। फिर शुरू होती है कॉमेडी और कंफ्यूजन की स्थिति जो फिल्म को बड़ी मजेदार बनाती है। कभी मौका मिले तो इसे देखिएगा जरूर। लेकिन कंफ्यूजन जो है ना वो हमारी लाइफ में भी कई बार होता है, हम सभी को होता है, और कभी कभी कंफ्यूजन से अजीबोगरीब परिस्थितियां बन जाती हैं। अब जैसे कि मैरिड कपल्स की अगर हम बात करें तो अगर ये कपल्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो छोटी छोटी बातों पर उनका नजरिया एक दूसरे से अलग होने से कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है जो अनजाने में दूसरे व्यक्ति को कई बार अपमानित भी फील करवा सकती है। अब इसका सॉल्यूशन तो सिंपली यही है कि अपने मन की बात आप खुलकर अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करें और जो भी शिकवे शिकायतें उलाहने या फिर एक दूसरे से जो भी एक्सपेक्टेशंस हों उन पर एक ओपन माइंडेड बातचीत और डिस्कशन किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बातें करने से ही तो बात बनती है। और आज के दिन की बात करें तो भाई इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक कप कॉफी के साथ ढेर सारी बातें हम कर सकते हैं, और वीकेंड भी है। मौसम के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन हवा गजब की है। हवा की गति करीब 23 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। चलिए हवा पर ही एक बहुत खूबसूरत गाना आपको सुनवाती हूँ। 7:16 और 32 सेकेंड, ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड।

जी हाँ दोस्त, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज का दिन बहुत मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आज बारिश हो सकती है, पूरी पूरी संभावना है इसकी। वैसे कई दिनों से ये फोरकास्ट हम सुन रहे थे, लगभग 2-3 दिन पहले से आ रहा था। कल भी हवा तेज चलने का, आंधी का अलर्ट हम सबके मोबाइल्स पर हमको मिल गया था, और रात को भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं हुई है, लेकिन आज का जो मौसम है वो कुल मिलाकर सुहावना रहने वाला है। और अभिमन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में इस गाने ने भी इस मूड को बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है। आज की हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और हवा की गति मैंने आपको पहले ही बताई थी, 23 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अब इतनी झूमती हवाओं में और अच्छे मौसम में आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी अपने

आसपास आप खुद ही महसूस करने लगते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो बाहर का ही नहीं बदलता, हमारे मन का मौसम भी उसी के साथ बदल जाता है। और वैसे भी देखें तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, लेकिन हम अपने में ही कई बार इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ें या वो बातें या वो मूल्यवान सीख दिखाई ही नहीं देती। लेकिन सही बात ये भी तो है ना कि आफ्टर ऑल हमारे जो विचार हैं वही हमें बनाते हैं। तो कहते हैं ना कि जीवन में सारा खेल बस विचारों का है, विचार अच्छे रखिए सब अच्छा होगा। इसी पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ते हैं अपने आज के दिन में, और अभी सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना लता जी और मुकेश की आवाज में, और फिल्म आप सब खुद पहचान जाएंगे क्योंकि ये गाना इतना सुना है हमने और इतनी बार हम इसको एंजॉय कर चुके हैं कि आज भी जब भी हम सुनते हैं हर बार हम इसके साथ खुद ही गुनगुनाने लगते हैं।

कहते हैं कि रुत कोई भी हो, अगर आपके अपने आपके आसपास आपके साथ हों तो फिर आप हर रुत को, हर मौसम को एंजॉय करते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही तो खूबसूरती है रिश्तों की। और हमारा आपका रिश्ता तो वैसे ही बहुत स्पेशल है, इसलिए तो हम हर रोज आपसे मिलने चले आते हैं।

लेकर आते हैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स जिनमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने होते हैं जो आपके साथ हम यहाँ शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं गोल्ड स्टूडियो के जरिए। और आज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आपको जल्दी से मैं ये बता दूं जो आज आपसे मिलने आएंगे। 8:45 पर आपके साथ रहूंगी मैं म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में, और 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे सेगमेंट में होंगी रेखा आपके साथ, जो बात करेंगी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, और 11:10 पर तस्वीर में आज हम आपको तमिलनाडु में यरकौड की सैर पर लेकर चलेंगे। 12:10 पर एक कदम बुजुर्गों की ओर, दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज अभिनेत्री श्यामा के बारे में बात करेंगे। 2:30-3 दोपहर में आप सुनेंगे प्रोग्राम उन्नत किसान, जिसमें आज का विषय होगा प्याज का समुचित भंडारण और खरीफ प्याज की तैयारी, और इसमें शामिल होंगे हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर पीके गुप्ता जो निदेशक हैं NHRDF नई दिल्ली में। शाम 6:30 आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा। रात 8:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मधुरिमा। रात 10:30 हरसिंगार, और रात 11:45 पर गीत मेरे मन में। तो फिलहाल लता जी और सुबीर सेन की आवाज में खूबसूरत गीत के साथ मैं अभी आपको कहती हूँ अलविदा, लेकिन फिर मिलूंगी आपसे 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में। सो कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक, और इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। आपकी ये रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं आपसे ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड।

0: बादलों से उतली झमाझम बौछार से, अंबर से धरती पर बरसते प्यार से, प्रकृति के हरियालवी श्रृंगार से, गुदगुदाती पवन के संग नशीली फुहार से, कौन है जिसका न मन झूम जाए। नदियां व झील सरोवर लगे भरने, नया जीवन पा उमंग उठे झरने, झूम उठे सब वृक्ष लता, नहा धोकर पक्षियों के दल लगे गुंजन करने, प्रकृति का हर ओर छोर आनंद मग्न, नए अंकुर खेतों का श्रृंगार करें, कृषक मन में नई उमंगे भरे, मौसम की अनुकूलताओं के वरदानों से, मनोकामनाओं की पूर्ति की फसलें लहरे, वर्षा की रानी सौगातों से बिखरा चहूं ओर नया जीवन नया सवेरा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर एक सुहावनी और हल्की भीगी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामाचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड हेलो देयर ऑल यू लवली पीपल ट्यून्ड इन टू अस दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग। गेट रेडी फॉर अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आज सवेरे। सो फॉर स्टार्टर्स वी हैव सम न्यूज़ हेडलाइंस। मुकेश,
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: Center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cyber Crime Coordination Center, under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes and account recovery systems. We have more from our correspondent.
3: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और बदलाव भी ला रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणाम को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने दोहराया कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रहित से प्रेरित होते हैं और क्रय सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं।
1: U.S. President Donald Trump says he has called off new military strikes on Iran hours after threatening to escalate the war by seizing control of country's oil industry. In a social media post, Mr. Trump said he made the move based on the fact that discussions with Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved. The announcement came after 2 days of back-and-forth attacks between the U.S. and Iran had threatened to pushed the West Asia region closer to the resumption of a full-scale war. Trump, on multiple occasions over the last several weeks, has claimed that the warring parties have been on the cusp of a deal without anything coming to fruition. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today, with host England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on 5th of next month at the iconic Lord's Cricket Ground. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian women's team will be looking to create history as they aim for their first T20 World Cup title. For the first time in the tournament's history, 12 teams will compete with 33 matches scheduled across 7 venues, making it the biggest edition of the ICC Women's T20 World Cup to date.
0: उधर मेक्सिको सिटी में कल रात फीफा विश्व कप का भव्य समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। एस्टेका स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मैच में सह मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से मात दी। मेक्सिको के लिए जूलियन क्नोन्स ने 9वें मिनट में पहला गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। बाद में राउल जिमेनेज ने 67वें मिनट में दूसरा गोल कर मेक्सिको की बढ़त को 2-0 में तब्दील कर दिया। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए, जिससे मेक्सिको के 10 और दक्षिण अफ्रीका के 9 खिलाड़ी मैदान पर रह गए। ग्रुप ए का यह मुकाबला इतिहास के सबसे बड़े विश्व कप की शुरुआत है, जिसमें 48 टीम शामिल हो रही हैं। कनाडा, मेक्सिको और अमरीका में एक महीने तक चलने वाले इस फुटबॉल विश्व कप में 104 मैच खेले जाने हैं। श्रोताओं, रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। इस कड़ी में पहले बात चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की।
1: यस मुकेश, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द 16 किलोमीटर वेलाचेरी थाम्बरम हाई रोड इज सेट टू बी रीनेम्ड आफ्टर मेजर मुकुंद वरदराजन, द इंडियन आर्मी ऑफिसर हु वाज किल्ड इन एक्शन एंड पॉस्टमसली अवार्डेड द अशोक चक्र, द कंट्रीज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री ऑनर। द थाम्बरम कॉरपोरेशन काउंसिल अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन टू नेम द आर्टेरियल रोड मेजर मुकुंद वरदराजन इन रिकग्निशन ऑफ हिज सैक्रिफाइस। द प्रपोजल वाज टेकन अप फॉलोइंग द अप्रूवल फ्रॉम द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। We have another news from Chennai. The Tamil Nadu School Education and Information and Public Relations Minister Raj Mohan said that all teachers' vacancies in the government schools will be filled in the state. He noted that in line with Chief Minister C. Joseph Vijay's vision, the government is continuously working to ensure world-class education for government school students. Along with upgrading school infrastructure, the efforts to establish digital technology facilities and modern labs are underway across the state. He appealed to the public not to believe in fake news in social media and baseless rumours surrounding the education department. He warned that strict legal action would be taken against those spreading rumours that gamble with the future of students. Getting to Bengaluru now, Infrastructure Development Minister M.B. Patil has requested the centre to include the Bengaluru-Shivamogga air route in the upcoming Udaan bidding process to restore suspended flight services. In a letter to the Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, Patil said the route is vital for the economic, tourism, agricultural and industrial growth of Malnad and Central Karnataka districts. Flights between Bengaluru and Shivamogga, operated by Indigo since Shivamogga Airport opened in February 2023, were suspended due to financial losses. Patil noted that the lack of direct connectivity has inconvenienced passengers and affected access to domestic and international destinations. He urged the centre to support the route through the viability gap funding VGF mechanism under Udaan. Patil also highlighted that work on night landing facilities at Shivamogga Airport is progressing rapidly and that the airport already has the necessary infrastructure to resume operations. We have another news from Bengaluru. Greater Bengaluru Authority GBA Chief Commissioner Maheshwar Rao has directed officials to integrate all ongoing and proposed development works across the GBA jurisdiction through a common GIS platform to improve coordination among departments. Chairing a review meeting, Rao instructed city corporations, BWSSB, BESCOM, KPTCL, BMRCL, KRIDE and other agencies to submit their action plans for GIS mapping. He also directed that contract bills be processed only after project details are uploaded to the platform. The meeting also reviewed key infrastructure projects, including finalization of the Hebbal Junction design, measures to prevent monsoon waterlogging, maintenance of lifts on foot over bridges, completion of the Yelahanka Old Town Railway underpass by November, and improvement works under the Suraksha 75 project. Going to Hyderabad now, the Ministry of Coal successfully concluded a major roadshow yesterday to accelerate domestic coal and lignite gasification projects. Chief Guest and Union Minister of Coal and Mine G. Kishan Reddy highlighted that India possesses nearly 400 billion tons of coal reserves, the world's fifth largest. He described gasification as a transformational opportunity for the country's energy and industrial future. Minister Reddy emphasized that despite these vast resources, India remains heavily dependent on importing methanol, ammonia and essential fertilizers. He stated that gasification offers a strategic pathway to convert domestic coal into high-value products, thereby reducing foreign exchange outflow and boosting economic resilience. He also announced that the draft request for proposal is open for public feedback to ensure an investor-friendly framework under the government's 46,000 crore rupees promotion scheme. And Mukesh, over to you now for rest of the news.
0: बिल्कुल सुभद्रा, अब बात करते हैं दिल्ली से जुड़े समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंच के तहत दिल्ली अपना अनुभव, कार्यपद्धतियां और सामूहिक विचार साझा करने में सक्षम रही और विकसित भारत की भावना को भी हमने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राज्यों ने भी अपने अनुभव और कार्यपद्धतियां साझा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार इस महीने की 18 से 20 तारीख तक राजधानी में विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। इन शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सुनते हैं हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
4: इन शिविरों के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर परवेश साहिब सिंह ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को किसी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह शिविर केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता के साथ सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका अधिकतम लाभ उठाएं।
0: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। मुंबई में राज्य परिवहन विभाग की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सरनाईक ने कहा कि भत्ता 53% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते में भविष्य में होने वाली कोई भी वृद्धि तुरंत निगम के कर्मचारियों को भी दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। श्री सरनाईक ने कहा कि सड़क परिवहन निगम बेड़े में अब तक लगभग 3000 नई बसें जोड़ी जा चुकी हैं और वर्ष 2035 तक पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कृषि मित्र भर्ती संबंधी फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आना चाहिए और न ही इसके लिए कोई भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती संबंधी कोई भी घोषणा केवल आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से ही जारी की जाएगी। अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। तो राज्य सरकार ने कोलकाता में 20 जून को पूरे राज्य भर में पश्चिम बंगाल दिवस मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी शिक्षण संस्थानों और जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। तारकेश्वर को मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है, क्योंकि यहां पर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बंगाल के इतिहास और बंगाल के विभाजन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और सुभद्रा के साथ। और अब जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की।

0: जी श्रोताओं, बिल्कुल जैसा कि अभी आप ये अंग्रेजी की कविता सुन रहे थे, कुछ इसी कड़ी में अगर हम बात करें हिंदी में भी, तो बच्चों के लिए क्या खूबसूरत लिखा गया है कि जहां होनी थी बेफिक्री सी जिंदगी, वहां ठानी कमाने को अनमोल रोटी, जहां एक एक पल बिताना था खेल में, वहां झोंक दिया बचपन काम की व्यस्तता में, जिन हाथों में कलम थी पकड़ानी, वहां इन्होंने पकड़ा दी जीवन की अनगिनत परेशानी, जहां दुलार के स्वर पड़ने थे कानों में, वहां हर ओर थी डांट डपट की पुकारें, जहां बालपन में करनी थी मासूम गलतियां, वहां सुनी अनजानों की कड़वी बोलियां, जहां अनगिनत स्वप्न सजाने थे आंखों में, वहां दिखा मुश्किलों का सैलाब रात के अंधेरों में, कर्म जो इन नन्हे हाथों से करवाए, वो दूर खड़ा क्यों मुस्काए, नहीं चाहिए इन नन्हे हाथों की कमाई, जो छीन लेती है बचपन की परछाई, छोटे से बचपन के ये कुछ सुनहरे पल, जी लेने दो इन्हें मस्ती में निश्चल, तो कुछ इसी तरह से इस साल भी बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनाया जा रहा है। इस कड़ी में अगर हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने भी बार बार पिछले कुछ अपने भाषणों में बच्चों की, जो बच्चों से मजदूरी कराई जाती है या बच्चों पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उनके उन्मूलन का बहुत ही व्यापकता से जिक्र किया है। तो हमें भी उन बच्चों से इस तरह के कामों को नहीं करवाना चाहिए, और उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बालपन की भावना उनके हृदय में शेष रहने का हमें प्रयत्न करना चाहिए।
1: Yes, let the children play.

0: And now let's get to the history of the day.
1: Milton.
0: 1550, King Gustav I of Sweden founded the city of Helsinki. The city, which is currently the capital of Finland, was part of Sweden at that time. And 1665 this day, New Amsterdam legally becomes an English colony, renamed New York after English Duke of York. And 1817, the earliest form of bicycle, the dandy horse, was driven by inventor Carl von Dries. And 1898 this day, Philippines declared its independence from Spain. And 1903, Niagara Falls, Ontario, was incorporated as a city. And also today marks Independence Day in Philippines and Russia. And what about you, Mukesh? Anything else you have?
1: जी बिल्कुल, वर्ष 1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विनजेट विमान बोइंग 777 ने पहली बार आज ही की तारीख को उड़ान भरी थी। इसके बाद वर्ष 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश की वार्ता भी आज ही की तारीख को शुरू हुई थी। इसके 7 बरस बाद यानी कि वर्ष 2008 में 10वें ओसियाना सिनेफेन फिल्म समारोह में प्रख्यात फिल्म निदेशक मृणाल सेन को पुरस्कृत किया गया था।
0: एंड 2011 साइंटिस्ट पब्लिश्ड द डिस्कवरी ऑफ व्हाट मे बी द ओल्डेस्ट artwork in the Americas, an engraving of an ice age mammoth on a fossil bone likely at least 13,000 years old.
1: और 2016 में सायना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी आज ही के दिन अपने नाम किया था। अब बात करते हैं उन जानी मानी हस्तियों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो आज श्रोताओं, पुण्यतिथि है सी नारायण रेड्डी की। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 5 दशकों से भी अधिक समय तक काव्य रचना की। अब तक उनकी 40 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं।
0: And we are going back to the year 1843. Our birth anniversary tributes go out to Sir David Gill, a Scottish astronomer known for measuring astronomical distances. And Hollywood legend Gregory Peck left us this day in the year 2003. From his very first year in Hollywood through 5 decades of making motion pictures, Gregory Peck has been to audience around the world the quintessential Hollywood leading man, tall, dark and handsome looks complemented by an overwhelming sense of moral and physical strength. Peck received 4 Oscar nominations within 6 years and finally winning with his masterpiece film To Kill a Mockingbird in 1962. And today is the birthday of Metro Man E. Sridharan, a retired officer of the Indian Engineering Service and advisor to several metro projects in India. Besides this, he is a member of the United Nations High-Level Advisory Group on Sustainable Transport. And of course, he has received numerous national and international awards for his work.
1: श्रोताओं, भी हमने बात की थी इससे कुछ पहले सी नारायण रेड्डी की, तो उन्होंने फिल्मों में भी काफी नाम कमाया। 1962 में उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया। पहली फिल्म मिली उन्हें गुलबे कावली कथा। इस फिल्म के साथ वो मशहूर हो गए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

और आज ही पुण्यतिथि है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे की। वे लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और गायक थे। वे दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। पीएल देशपांडे को पुल देशपांडे के नाम से भी जाना जाता था। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, महाराष्ट्र भूषण, कालिदास आदि अनेकों सम्मानों से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनकी पहली फिल्म कुबेर का ये मराठी गीत।

आज श्रोताओं जयंती है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोकगीत भरतरी गायिका सुरुजुबाई खांडे की। उन्हें 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में हिस्सा बनने का मौका मिला था। आइए सुनते हैं उनकी गायकी का ये अंश।

0: छत्तीसगढ़ सरकार से उन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख और स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार भी मिला है। इन्हें सबसे पहले रत्नपुर मेले में गायन का मौका मिला। इसके बाद मध्य प्रदेश आदिवासी लोक सेवा कला परिषद ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में गाने का मौका दिया। और श्रोताओं, आज ही के दिन हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है। हिंदी की वो ऐसी पहली लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नाउ इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व

0: के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में

0: सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय

0: कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विद गवर्नमेंट्स

0: अब खबरें तफसील से। एक अहम वाक़े में मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मजकूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसायल को मुल्क के लिए बरूए कार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निजाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मसनूई शनाख्त तैयार करने के लिए एआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मस्कुरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखा दही करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजिमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं। ये अनासिर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने टेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीकेकार को मुस्तहकम बनाए और सार्फिन को शामिल करने के निजाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर यह कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डाटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें। शहरियों को यह सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई और टकराव के असरात से निमटने के लिए मजबूत और मुतनव्वे सप्लाई निजाम, पायदार सिफारती कोशिशों और बैन अल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जुग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉ जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज़े खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम वक्त और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है।

0: पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत में मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों का अहम रोल रहा है। इस अरसे के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बनाने की समत सरकार की जानिब से किए गए इकदाम की बात कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 साल के दौरान भारत एक मजबूत आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह वो जरूरतमंदाना इकदाम हैं जो अजाइम को अमल से जोड़ते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत ने उन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे ये बात यकीनी हुई है कि भारत की आवाज आलमी प्लेटफॉर्म पर गूंजे। भारत ने मुल्क मुकद्दम के उसूल को सबसे ऊपर रखते हुए खारजा पॉलिसी में नई तवानाई फूंकी और अपने पुराने ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ नए दोस्त भी बनाए। भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात कोविड-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपनी इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वैक्सीन मैत्री इकदाम शुरू किया। जनवरी 2021 से भारत ने 99 ममालिक और अक्वाए मुत्तहदा के दो इदारों को 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर ज्योतिष को बिस्वास ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से वैक्सीन की तेज रफ्तार तरसील खैरसगाली का एक गहरा मुजाहरा था। उन्होंने भारत, उसकी हुकूमत और उसके अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निमटने के ऑपरेशंस भारत की आलमी शमूलियत का एक अहम हिस्सा रहा है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के मशरकी साहिल पर तूफान दित्वा आया, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों बेघर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होकर रह गया। श्रीलंका के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भारत ने श्रीलंका को फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, जिसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ करने वाले किट्स और तकरीबन 4.5 टन अदवियात और सर्जिकल आलात, इसके अलावा 60 टन खसूसी साजो सामान शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रुवान कदी थुकोवो ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ बेपनाह गर्मजोशी और यकजहती का मुजाहरा किया है। पिछले 12 साल में भारत ने वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मौसर इकदाम के जरिए एक आलमी रहनुमा के तौर पर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे में वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुशाहदा करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। खवातीन का 10वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील

0: टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्नाबॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
1: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमरीकी नाजमुल उमूर को तलब किया। ये खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा मेंबरा ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमात के लिए एजाज से नवाजा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई जहानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मतनवे सप्लाई निजाम और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 पर गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: जनाब, दिल और जीवन दोनों शायराना लग सकते हैं खुद ब खुद जब हम अपने भोजन में कैलोरी इनटेक को कम करते हैं तो। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बढ़ती उम्र के साथ कई रोग जब हमें घेरने लगते हैं तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से हम सेल्स की उम्र को बढ़ने में रोकने तक कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, जिससे एजिंग प्रोसेस को भी थोड़ा सा धीमा करने में मदद मिलती है, जो एक्चुअली स्पीकिंग हम सभी की चाहत होती है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो फिर उम्र कोई भी हो, जिंदगी में अगर खुशी और संतुष्टि का भाव हो तो वही सबसे बेहतर समय और उम्र होती है। 8:50 पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।
1: तू कितने बरस की?
2: मैं 16 बरस की।
1: तो मैं 17 बरस का।
2: 16
1: 17
2: 17
1: 16

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

8:55 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और डिजिटल होना हम सबको पसंद भी है और आज की रियलिटी भी है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में खतरे भी बहुत ज्यादा हैं और डिजिटल खतरों से बचने की तैयारी में अब CISF भी लग गया है, जो तैयार करने जा रहा है करीब 5,000 साइबर कमांडोज, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो भविष्य में आने वाले डिजिटल खतरों और चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना कर सके। इसके लिए खास तरह का एक कैंप शुरू करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उनको नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर खतरों की पहचान करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और घटना पर प्रतिक्रिया और कानूनी ढांचे जैसे जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं उसमें इंटेंसिव ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है। तो फिर कोशिश तो देखिए हर जगह जारी है और कोशिशें ही रंग लाती हैं, तभी तो ये कोशिश है गृह मंत्रालय की।

जिसके तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की देशव्यापी क्षमता निर्माण पहल में वो अपना सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही योगदान हम भी दे सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में जिनसे हम जुड़े रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। अब सोचना हमें है, आपको है कि हम किस तरह अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं ताकि अपने साथ साथ समाज के भी हम कुछ काम आ सकें। फिलहाल इस पॉजिटिव नोट के साथ म्यूजिकल जिंदगी के इस पहले सेगमेंट से मुझे लेनी होगी आपसे विदा, क्योंकि कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि इसके बाद आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल्ली का सेकंड सेगमेंट आपके साथ रहेगा और रहेंगी रेखा। तो आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही पूर्वोत्तर को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी असर होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित होते हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन की यात्रा पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टेगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति हुई है और इसे ध्यान में रखते हुए यह अचानक बदलाव आया है। श्री ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि नाजुक युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सवेरे एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि सवेरे करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचा लिया गया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. In a significant development, Centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment. It will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
2: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over ₹15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
3: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: Center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cyber Crime Coordination Center, under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jaishankar said the impact of the conflicts extends far beyond the regions where they occur. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. U.S. President Donald Trump has called off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. The move comes hours after he threatened to escalate the war by seizing control of Iran's oil industry. In a social media post, Mr. Trump credited progress in discussions with high-level Iranian leadership as cause for the sudden change. He also suggested that progress has been made in talks to extend the fragile ceasefire. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Kerala and Mahe, places over northeast India, Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Bihar, interior Karnataka, Jharkhand, Odisha, Tamil Nadu, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim are expected to receive moderate to heavy rainfall during the day. IMD also predicted moderate rainfall, thunderstorms and lightning over many places of Delhi and NCR today. Similar weather conditions are likely to persist today over Haryana, Chandigarh, Punjab, parts of Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with host England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start their campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first Women's T20 World Cup title. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony last night. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों कहते हैं रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सींचना पड़ता है। एक साथ बाल्टी भर पानी दे दो या 10 दिन पानी मत दो, दोनों ही हालातों में पौधे का बर्बाद होना तय है। तो फिर अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को सींचते रहिए हर दिन थोड़े थोड़े प्यार से, फिर देखिएगा कैसे खिले खिले रहेंगे ये सब। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। 9:11 और 31 सेकंड हो गए हैं और ये सफर है म्यूजिकल दिल्लगी का, तो चलिए शुरू करते हैं म्यूजिकल दिल्लगी।

दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी योजना की जिसने देश के करोड़ों घरों तक राहत पहुंचाई है। नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत सरकार देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने बिल्कुल मुफ्त राशन दे रही है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले हर परिवार को हर महीने गेहूं और चावल बिना किसी पैसे के मिल रहा है। अच्छी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए यानी 2028 तक बढ़ा दिया है। मतलब अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों की थाली में मुफ्त अनाज पहुंचता रहेगा। इस योजना की एक और खास बात है वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन देश के किसी भी कोने में हो अपने हिस्से का मुफ्त राशन ले सकते हैं। अब काम के लिए शहर बदलने पर राशन कार्ड की चिंता भी नहीं होगी, और अगर आप किसी और शहर में हैं, परिवार किसी और शहर में है, तो आप आधा राशन इधर और आधा राशन उधर भी ले सकते हैं। आपको याद होगा कोरोना के मुश्किल वक्त में इस योजना ने कैसे लोगों को सहारा दिया था। तब फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को 50 लाख रुपए का खास बीमा कवर दिया गया था। साथ ही महिला जनधन खाता धारकों को हर महीने सीधी आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई थी। तो दोस्तों यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सिर्फ मुफ्त अनाज नहीं है, ये देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर इसका लाभ जरूर उठाइए, और अगर आपके पास कोई आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस योजना से लाभ मिल सकता है तो उसे इसके बारे में जरूर बताइए। फिलहाल तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, पर अभी एक गीत एंजॉय कीजिए, उसके बाद बताऊंगी और भी काम की बातें।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
7: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
9: वेलकम बैक। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 9:26 और 53 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस। चल रही है म्यूजिकल दिल लगी, बिना म्यूजिक के तो अधूरी है, तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों आज है 12 जून और ये दिन पूरी दुनिया में बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, इसे कहते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और आज हम जो दिन मना रहे हैं उसके थीम की अगर मैं बात करूं तो रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। यानी इस विषय की अगर मैं बात करूं तो बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। इसका मतलब साफ है, बच्चों के हाथ में औजार नहीं, किताब और खिलौने होने चाहिए और उनके माता पिता के पास इतना सम्मानजनक काम होना चाहिए कि पेट भरने के लिए बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े। इस साल के अभियान की तीन बड़ी बातों की अगर मैं बात करूं तो ये अभियान तीन बड़ी बातों पर जोर दे रहा है। पहली बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, क्लास में बैठकर पढ़ना उसका हक है, कारखानों में काम करना नहीं। हमें ये पक्का करना है कि कोई बच्चा मजदूरी पर ना जाए, काम पर ना जाए और उस पर कोई ऐसी मजबूरी ना हो जिसकी वजह से उसे कोई काम करना पड़े। दूसरी बात, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। जब माता पिता को सही वेतन और स्थिर रोजगार मिलेगा तभी वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। गरीबी ही बाल श्रम की सबसे बड़ी वजह है और इस जड़ पर वार करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, मजबूत सुरक्षा। इसके लिए वैश्विक स्तर पर योजनाओं पर काम किया जा रहा है जिनका मकसद है श्रम कानूनों को और सख्त बनाना, कंपनियों की जवाबदेही तय करना और कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देना ताकि कोई भी परिवार मजबूरी में अपने बच्चे का बचपन ना

भेजे। दोस्तों, बाल श्रम सिर्फ एक बच्चे का बचपन नहीं छीनता, वो पूरे देश का भविष्य कमजोर करता है। अगर आप इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। कहाँ जाना है आपको और कैसे इन्वॉल्व होना है, इसके साथ बता दूं एक बार फिर से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इन पेजेस पर जाइए और जुड़ जाइए इस अभियान के साथ। आइए इस 12 जून हम सब मिलकर बाल श्रम को लाल कार्ड दिखाएं, क्योंकि मैदान में खेलने की उम्र में किसी बच्चे को काम की भट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। यही तो है ना हमारा उद्देश्य आज के दिन खास तौर पर। वेल, बातें और भी हैं, करूंगी जरूर, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं और इस गीत के बाद फिर और भी कुछ काम की बातें जरूर बताऊंगी।

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आंखों की अगर बात करें तो वो किताब की तरह होती हैं, जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह देती हैं। इन्हीं आंखों से हम दुनिया के रंग, अपनों की मुस्कान और सपनों की उड़ान देखते हैं। पर क्या हम इनकी उतनी ही फिक्र भी करते हैं? आज भागदौड़ भरी जिंदगी में और स्क्रीन की दुनिया में हमारी आंखें सबसे ज्यादा थकती हैं। तो चलिए कुछ आसान सी आदतें, कुछ आसान से टिप्स आपको देती हूँ। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और ये वो सारे टिप्स हैं जो आपकी आंखों को दुरुस्त रखेंगे, बेस्ट रखेंगे, अच्छा रखेंगे। इसे 20-20-20 नियम कहते हैं, यानी 20-20-20 का जो ये नियम है। दिन भर में खूब पानी पिए ताकि आंखें सूखी ना रहें। खाने में गाजर, पालक, पपीता, आंवला और बादाम को शामिल करें। इनमें विटामिन ए और ओमेगा 3 होता है जो नजर को तेज करता है। धूप में निकलें तो यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहनें। मोबाइल और लैपटॉप कम से कम एक हाथ की दूरी पर रखें। आंखों को बार बार मलने से बचें और रोज 7-8 घंटे की पूरी नींद लें। और सबसे जरूरी बात, साल में एक बार आंखों की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि नजर का ये अनमोल तोहफा दोबारा नहीं मिलता। अपनी आंखों से प्यार करिए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि आंखें ही तो हैं जो इतने खूबसूरत सपने सजाती हैं, इतने खूबसूरत रिश्तों को देखती हैं, दोस्तों को देखती हैं और इतनी खूबसूरत प्रकृति को आप तक पहुंचाती हैं, आपसे जोड़ती हैं, है ना? तो चलिए फिलहाल एक गीत और उसके बाद बातें और भी हैं। मेरा साया फिल्म, लता जी की आवाज़।

दोस्तों सूरज दादा इन दिनों फुल फॉर्म में है, आग बरसा रहे हैं। आज थोड़ी हवा ठंडी है, कल रात बारिश हुई, लेकिन अगर धूप तेज होती है तो फिर इतनी तेज होती है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और गर्मी से हम तड़प उठते हैं। ऐसे में अगर हमने सेहत की ढाल नहीं पकड़ी तो गर्मी हमें चारों खाने चित कर सकती है। तो सुनिए गर्मी को मात देने का देसी फॉर्मूला बिल्कुल मुफ्त में, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा और इसे जरूर खुद पर अप्लाई भी करिएगा। पहली बात, पानी से यारी पक्की कर लीजिए। लू दिमाग का पानी सुखा देती है, उससे पहले आप गटागट पी जाइए। सादा पानी, नींबू, शिकंजी, छाछ, बेल का शरबत, नारियल पानी, जो मिले बस घटक लीजिए। बॉडी हाइड्रेटेड तो गर्मी दूर रहती है। और अगर मैं बात करूं पेट को कूल रखने की, तो इसके लिए आपको समोसे कचौड़ी को बाय बाय बोलना होगा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और दही को हेलो हाई करना होगा। ये एसी हैं आपके पेट के, और अगर आप इन्हें खाते हैं तो सचमुच आपकी सेहत बहुत ही दुरुस्त रहती है और आपको गर्मी में राहत भी मिलती है। फैशन नहीं, प्रोटेक्शन पहनिए। टाइट काले कपड़े अगर आप पहनते हैं तो ये भी आपको कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा लगने की वजह बन सकते हैं, तो इन्हें रखिए साइड में। सूती, ढीले और सफेद कपड़े गर्मी के हीरो होते हैं। सिर पर गमछा या कैप, आंखों पर चश्मा। दोपहर 12 से 3 बजे तक घर में रुके रहिए, कोशिश करिए कि बाहर ना निकलिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में रहिए, लेकिन धूप में मत निकलिए। यही सयानेपन की निशानी है, और अगर आप ये सब अपनाते हैं तो सचमुच आप गर्मी से बच सकते हैं। और एक और बात, दादी की माँ के नुस्खे आपको याद हैं? जब हम छोटे हुआ करते थे तो दादी हमें बहुत सारी चीजें कहा करती थी, बताया करती थी। उन्हें भी थोड़ा बहुत आजमा लेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा। जेब में हो सके तो थोड़ा सा प्याज रख लीजिए। लू पास नहीं फटकेगी। घर से निकलो तो कच्चे आम का पना पीकर निकलो, लू बोलेगी बाय बाय। दोस्तों गर्मी से डरिए मत, बस थोड़ी अक्ल लगाइए, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए इन चीजों का, पानी पीजिए, कूल रहिए, और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ठंडा दिमाग और ठंडा शरीर ही गर्मी का असली जवाब है। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप इन्हें अपना लेते हैं तो फिर गर्मी आपको परेशान नहीं करने वाली है। फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ, उसके बाद काम की बातें तो मैं बताती ही रहूंगी। येसुदास और हेमलता जी की आवाज में चित्तौर फिल्म से प्यारा सा गीत।

तो भाई आज शाम क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं बुला रही हूँ चाय पर, लेकिन आपको बता रही हूँ कि अगर आज शाम को आप फ्री हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में सुधा आंटी राधा आंटी फिल्म की प्रस्तुति होने वाली है। अगर आप फ्री हो और इस जगह के आसपास हो तो जरूर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसे देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लोक नृत्य और संगीत का आयोजन भी आज शाम 6 बजे से है, तो अगर आप इसमें भी रुचि रखते हैं तो पहुंच जाइए इंडिया हैबिटेट सेंटर शाम 6 बजे। तो भाई खाली वक्त है तो उसे इधर उधर मत गंवाइए, गर्मी का मौसम है, बाहर मत जाइए, लेकिन यहाँ पर जाकर आप इन दोनों आयोजनों का आनंद ले सकते हैं। ना कोई पैसा लगना है, ना ही कोई टेंशन होना है, गर्मी से भी बचे रहेंगे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वेल, फिलहाल एक और प्यारे से गीत, क्योंकि गीतों का सिलसिला तो चलता रहना चाहिए, है ना।

0: अब तो इस सफर से जाने का हो गया है टाइम, क्या करें, क्योंकि भाई टाइम जो है वो बढ़ता ही चला जाता है, हमारे रोके कहाँ रुकता है। 9:58:54 हो चुके हैं, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि शाम 5:10 पर, क्योंकि आज शुक्रवार है, तो आप सुन सकेंगे पानी पर लिखी कहानी। और आज की कहानी होगी आवाजों के साए, स्वर और आलेख मंजू बत्रा का, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। जरूर सुनेगा शाम 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी। और मैं रेखा अब आपसे फिर से मिलूंगी, कब पता है ना आपको, 10:30 लेकर दिल का मेल बॉक्स। लेकिन दिल का मेल बॉक्स में मिलने से पहले आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, विश्व दर्पण, वर्ल्ड न्यूज, बहुत कुछ है जो आप सुन सकते हैं। और मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी 10:30 लेकर दिल का मेल बॉक्स। जुड़िएगा जरूर और लिख भेजिएगा हमें आपकी पसंद, कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं। फिलहाल सुनिए समाचार, मैं चलती हूँ, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएएम में मुख्य अतिथि के रूप में

पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: financial infrastructure, according to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs. Cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. News just in, renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Kalikesh Darayan Singh Dev, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. Rana recently underwent a medical procedure after falling ill during the Indian contingent's return flight from the ISSF World Cup in Munich, Germany. Upon landing in New Delhi, he was immediately hospitalized and underwent a medical procedure to have a stent fixed. Rana was serving as a high-performance coach for Indian pistol shooters. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts, and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jaishankar said the impact of the conflicts extends far beyond the regions where they occur. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today, with host England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final is set to take place on 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony last night. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashvani se Vishw Darpan ke saath, main Mukesh Kumar. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन के स्विट्जरलैंड दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत, 37 घायल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अलकांस और रक्षा सचिव जॉन हीली ने सैन्य निधि विवाद के चलते इस्तीफा दिया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। उन्हें आशा है कि इस सप्ताह के अंत में यूरोप में हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार न रखने और न ही खरीदने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए, जिसे उन्होंने तेहरान के खिलाफ अमरीकी प्रशासन के दबाव अभियान का मुख्य उद्देश्य बताया। अमरीका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। इससे क्षेत्र में हफ्तों से चले आ रहे सैन्य तनाव और समुद्री व्यवधानों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम होने की संभावना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य

0: तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: इससे पहले डॉक्टर जयशंकर अपने दो देशों के दौरे के अंतिम चरण में कुल तारंता वार्ता में भाग लेने के लिए बुल्गारिया से फिनलैंड पहुंचे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब द्वारा आयोजित इस वार्षिक वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेता और नीति निर्माता एक साथ आए थे। विदेश मंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और तेजी से अनिश्चित होते वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर बल दिया। उनकी मुलाकात फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता के दौरान हुई। विदेश मंत्री ने फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेपी पी लजारो और फिलीपींस के लोगों को देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मिश्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिक में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अल कांस ने रक्षा सचिव जॉन हीली के इस्तीफे के बाद स्टारमर सरकार से इस्तीफा दे दिया है। हीली का इस्तीफा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ सैन्य निधि को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ है। श्री अल कांस ने कल इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि सरकार की रक्षा निवेश योजना न तो पर्याप्त रूप से परिवर्तनकारी है और न ही इसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध है। ये इस्तीफा हीली के उस तीखे पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा प्रस्तावित सैन्य खर्च देश की रक्षा के लिए आवश्यक राशि से बहुत कम है। श्री हीली के स्थान पर कैबिनेट में सुरक्षा मंत्री और पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी डैन जार्विस को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे के ईदगाह मैदान में हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोग मारे गए और 37 अन्य घायल हो गए। हालांकि किफायती आटा, चावल, बिजली और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कल शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने AK-47 राइफलों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे हालात खराब हो गए। रावलकोट में करीब 60-70 हजार लोग पाकिस्तान के निरंतर कब्जे और क्षेत्र में उसकी नीतियों के खिलाफ नारे लगाने के लिए इकट्ठे हुए थे। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पीओके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 30 मृतकों और 200 घायलों के लिए न्याय की मांग की थी। खाई गाला गांव में निवासियों ने बाजार बंद कर दिए और हिंसा के खिलाफ मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के बाद सड़कें और खेत खलिहान खून से लथपथ हैं और शोक संतप्त परिवार अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने क्यूबा की सरकारी तेल और गैस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे क्यूबा पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर आरोप लगाया है कि वो ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल दमन जारी रखने और अपने नेतृत्व को समृद्ध करने के लिए कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अंतर्गत क्यूबा की सरकारी ऊर्जा

0: कंपनी यूनियन क्यूबा पेट्रोलियम को प्रतिबंधित घोषित करने की घोषणा की है। श्री रूबियो ने कहा कि हर्षद सादा की तरह ऊर्जा को भी क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार ने लंबे समय से दमन और स्वार्थपूर्ण सत्ता के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। अमरीकी विदेश विभाग ने आरोप लगाया कि दशकों से बुनियादी ढांचे में कम निवेश के कारण आम क्यूबा वासियों को ईंधन की कमी और बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका 2026 के वैश्विक शांति सूचकांक में 14 पायदान पर पहुंच गया है, जिससे उसे दक्षिण एशिया में दूसरा स्थान मिल गया है और यह इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। यह रैंकिंग लगभग 3 दशक के गृह युद्ध के बाद देश के निरंतर सुधार को दर्शाती है, जो 2009 में समाप्त हुआ था और राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने के प्रयासों का परिणाम है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन के स्विट्जरलैंड दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत और 37 अन्य घायल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुनील वर्मा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to embark on 2-day visit to Switzerland today. 16 killed, 37 injured in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir after Pakistani army opens fire on protesters. UK Armed Forces Minister Al Carnes and Defence Secretary John Healey stepped down over dispute on military funding. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. US President Donald Trump has called off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. The move comes hours after he threatened to escalate the war by seizing control of Iran's oil industry. In a social media post, Mr. Trump credited progress in discussions with high-level Iranian leadership as cause for the sudden change. He also suggested that progress has been made in talks to extend the fragile ceasefire. President Trump also said that a deal to end the war with Iran is nearly complete and is expected to be signed over the weekend in Europe. He made these remarks at the Oval Office in the White House yesterday.
2: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And great thing, stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like, if the market goes down, that means they don't like the deal. The Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland. Dr. Jayashankar.

राकेश जी आ गई, मुझे पता है कि आपको इंतजार हो रहा है ना बहुत देर से कि भाई जल्दी से वक्त हो और हम अपनी पसंद धड़ाधड़ यहाँ पर भेज दें। शुरू हो जाइए, भेज दीजिए वो गीत और वो नाम जो आपका नाम है और वो गीत की बोल जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन भेजना कहाँ है, जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जान लें, 9868868753 या 9868668753 ये नंबर है जिस पर आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com नंबर एक बार फिर से बता दूं, 9868868753 जी हाँ, 9868868653 दोबारा नहीं बताऊंगी, जल्दी से नोट कर लीजिए और अपनी पसंद हमें लिख भेजिए। अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा और अच्छे से लिखिएगा, साफ सफाई से, नाम के नीचे नाम, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने में दिक्कत हो और फिर मुझे उसे स्किप करना पड़े। तो जितना हो सके क्लियर लिखिए ताकि मैं उन्हें शामिल कर सकूं। दिल का मेलबॉक्स सुन रहे हैं आप, 10:32:24 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आचरेखा क्रिस्टल वॉइस और ये है दिल का मेलबॉक्स जिसमें आप भेज रहे हैं हमें अपनी पसंद। तो चलिए शामिल कर लेते हैं कुछ मैसेजेस को। रजनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड।

उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बाघेल और पूरे परिवार ने हमें मैसेज भेजा है। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने महाराष्ट्र नांदेड़ से मैसेज किया है। योगेश शर्मा ने फरीदाबाद से लिखा और हमें लिखा है उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव गरिमा ने कहां से, नई दिल्ली से। और इसके साथ हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है महाराष्ट्र पुणे से, सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ और लिखते हैं कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे लगते हैं, शुक्रिया। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का मैसेज, मुकेश जगताप का मैसेज, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मजरूगा टीला से, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह नेपानगर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजानिया ने हमें सिरसा हरियाणा से लिखा है। मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान और मोहम्मद इसरार नरगिस खातून के साथ लिख रहे हैं हमें मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद, सुफियान बलीमारान से हमें लिख रहे हैं। और राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश हमें लिख रहे हैं संभाजी नगर छत्रपति से। और पुराना तालाब डुमराव से वल्ला अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी और असमा नाज अंसारी का हमें मैसेज पहुंचा। और इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम, वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम का मैसेज हमें लिखा है। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा ने ये मैसेज है। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और जीनत जहां का मैसेज। और ओपी तेग चंदानी ग्रेटर कैलाश से हमें लिख रहे हैं। प्रभा अंधरा, प्रमिला और निशा महेश का मैसेज सरगुजा मेन पार्ट से हमें मिला है। और भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता का मैसेज। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमाराज, जालंधर से मीना कौर और दुर्गा कौर का मैसेज। बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्ल्यू अंसारी, इंदिरा विहार से लिख रहे हैं। दिल्ली से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवीएम का मैसेज मालियान सरधना मेरठ से मिला है। बिहार स्टेट से नसरीन अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू, गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से हमें लिखा है मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमीन ने। थोड़ा स्पेस कम कर देंगे तो मुझे एक ही मैसेज में इजीली से पढ़ना होगा वरना स्क्रॉल ही करती रह जाऊंगी मैं। और इसके अलावा हमें लिखा है चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल ने जमशेदपुर से ये मैसेज हमें पहुंचा है। कहां से, डोंडी लोहारा से प्रभा जमुरिया, अनुश्री जमुरिया और पूजा डोली जमुरिया का। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेश कुमार जाटव, संदीप जाटव और कशर जाटव का मैसेज। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार का मैसेज। राजस्थान भोपालगढ़ से सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का। शांतिनगर सोनीपत से और नरगिस खातून, मोहम्मद इसरार, ये देखिए फिर से बदल बदल के मैसेज करते हैं, ये चीज सही नहीं है भाई। आप अलग अलग डिजाइन में मैसेज भेजते हैं ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं और फिर से पढ़ दूं। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेज रहे हैं। दादा बाबू रोड गिरी डी झारखंड से, मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद चाहत का मैसेज है। और बबलू साहू, चामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव से हमें मैसेज मिला। सिद्धार्थ गुणाने, अश्नताई गुणाने, हीरामणि शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने का हमें ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से मैसेज। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली का बड़वाह जिला खरगोन एमपी से मैसेज। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का मैसेज और फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण का हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी और पूरे परिवार, मोहिनी ऋतिक, बलबीर सिंह का मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद दुल्हापुर से।
और इसके अलावा सुरेश नारंग, सोनाली नारंग का आशा नारंग के साथ, सैयद मसरूर के साथ हमें सहारनपुर से मैसेज पहुंचा है। और हमें लिखा है जयराम खोरवाल ने फिर से हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है। विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे ने हमें महाराष्ट्र से लिखा है, बीड शहर से।

हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे प्रिया सरोदे का मैसेज। तो भाई और मैसेजेस को शामिल करने की कोशिश भी करूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत शामिल करते हैं और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान भारती, अरहान अहमद, सुफियान नवाब पलीमारान से हमें लिख रहे हैं। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से

0: अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com।
5: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स और दिल का मेल बॉक्स में आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी है। किस किसने हमें मैसेजेस भेजे हैं ये शामिल कर लेती हूं और फिर अगला गीत किसकी फरमाइश है ये आप पता कर ही लेंगे। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का अलीगढ़ से और मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने हमें पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लिखा। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे अब्बासी परिवार ने बुलंदशहर से हमें लिखा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश का मैसेज, पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर का नरवेल महाराष्ट्र से और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरकर का मैसेज, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, जगदीश धाकड़ ने मध्य प्रदेश रतलाम से हमें लिखा है और विरार महाराष्ट्र से विकास वर्तक का मैसेज, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का हरियाणा झज्जर से और कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान का मैसेज हमें पहुंचा है। साथ ही हमें लिखा है उस्मान वोहरा, शहनाज, शिरीन और गुड्डी ने अहमदाबाद से, जी हाँ अहमदाबाद से, और हमें महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश, प्रितेश और पूरे संगई परिवार का मैसेज मिला है। साथ ही हमें मनोहर लाल गांधी ने विजय नगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिखा है। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का मैसेज, कॉलेज रोड गरोड़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हमें हरी प्रसाद विश्वकर्मा, उषा, मानसी, वाणी का मैसेज मिला और ये मैसेज पंकज मोहड़ का अमरावती महाराष्ट्र से, प्रकाश गोगिया ने हमें लिखा है दिल्ली से, मधु किरण का भी मैसेज हमें पहुंचा है, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मैसेज हमें बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मिला है। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने प्रथम सलूजा के साथ हमें लिखा है जनकपुरी नई दिल्ली से और ये मैसेज संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल का पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का मैसेज हमें मिला, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा का भाटापारा छत्तीसगढ़ से मैसेज, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुबना और आलिया अंसारी का मैसेज और रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का मैसेज और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज कहां से पहुंचा है, आप इतना छोटा लिखते हैं कि मुझे नाम अलग से ढूंढने पड़ते हैं, ऋतु बत्रा, जुगल बत्रा, हर्षिता बत्रा और कृष बत्रा का गोपाल पार्क से मैसेज मिला है। पहले अपने नाम लिखिए एक के बाद एक और उसके बाद अपने शहर का नाम लिखिए, थोड़ा स्पेस दीजिए और ऊपर नीचे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे लाइन से जब आप लिखते हैं तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। रेणू गोयल, सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी से हमें लिख रहे हैं और इसके अलावा धर्मवीर फिल्म से गीत सुनना चाहा है किसने, जगदीश कुमार, ऋतिक, राहुल ऋतिक नांगलोई से, राहुल

स्वर्ण सिंह गिल का दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविनाश के साथ ठाकुरावाला से लोहगढ़ गांव से मैसेज पहुंचा। कैलाश चंद कोटली कोटपुतली राजस्थान से हमें लिख रहे हैं और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज हमें मिला है। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का हमें व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से मैसेज पहुंचा। भवानीगढ़ पंजाब से राजेंद्र कुमार सचदेवा का मैसेज और ये मैसेज हमें लिखा है अनिल शर्मा ने सरिता विहार से। इसके अलावा हमारे पास सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचिता वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्वद और सानवी का मैसेज पहुंचा है कालेगांव जाफराबाद से। हमें लिखा है कैप्टन ईश्वर चंद्र शर्मा ने द्वारका से जय हिंद और हमें मिधि कपूर ने गुड़गांव से हमें मैसेज पहुंचाया है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, कोशिश रहेगी शामिल करती चलूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत उमा देवी जी की आवाज में। और इससे पहले जो गीत सुना था ना लता जी की आवाज, तो मैंने बता दी थी किशोरदा का नाम बोलना भूल गई थी, तो बता दूं कि उसमें किशोरदा भी शामिल थे। फिलहाल ये गीत, ये रहा उमा देवी जी की आवाज में।

आपके भी गीत हम तक पहुंच रहे हैं, जिनकी फरमाइशें आप पहुंच सुनना चाहते हैं, जो गीत आप फरमाइश हमें कर रहे हैं, आपके भी मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। पुराना धूमधारा विक्की पूनाराम धूमधारा विक्की और दीपू यश का हमें रघुबीर नगर से नई दिल्ली से मैसेज पहुंचा है। इसके खन्ना ने गुरुग्राम से लिखा है और हमारे पास ये मैसेज जितेंद्र कुमार गोदावरी आशनी लकी और विशाल का फरीदाबाद से, दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत का गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से मैसेज, उत्तराखंड से विपिन नेहरा काशीपुर से काशीपुर

उत्तराखंड से विपिन नेहरा का मैसेज, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से हमें लिख रहे हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल का हमें मैसेज पहुंचा। राजेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश खयाना से हमें लिख रहे हैं, विष्णु गार्डन से। सुनीता पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से मैसेज पहुंचा है। और एके टंडन ने माया इंक्लेव हरिनगर से हमें लिखा है कि आपका प्रेजेंटेशन होमली लगता है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही महसूस करें। और मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का मैसेज हमें पहुंचा है, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से। हमें लिखा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक ने, मयंक शर्मा ने। एसपी गोयल का हमें मैसेज पहुंचा है, नाम नहीं लिखा कहां से। और इसके अलावा हमारे पास मेरा जहां आजाद नगर गुलाब से लिख रही हैं गुलाब साबिर राही ताज मोहम्मद अंसारी के साथ। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का मैसेज। राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारू जटोलिया, कृष्णा जटोलिया के साथ दिल्ली नांगलोई से लिख रहे हैं। और हमारे पास अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का मैसेज भी पहुंचा है, कहां से, मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज से। और इसके बाद मैं देख रही हूँ बहुत सारे रिपीट मैसेजेस, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, दंतरेगी से हमें लिख रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि मैं बार बार बहुत सारे नामों को शामिल कर चुकी हूं, लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, कोई बात नहीं, मेरे पास तो मैसेजेस पहुंच रहे हैं। फिलहाल मैं गीत आप तक पहुंचा देती हूं। ये गीत की फरमाइश हमें लिखी है विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे ने, मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से, और हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

दोस्तों दिल का मेल बॉक्स में तो इतना ही, लेकिन फिर से मुलाकात होगी 11:10 पर। लेकर तस्वीर जुड़िएगा जरूर आपके दोस्त आर्ष रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। फिलहाल इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमरीकी सीनेटर और बड़ी अमरीकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रैड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइड स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने

भाई, क्या आप 2026 की इन गर्मियों में, इन छुट्टियों में दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं? तो मैं आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर आप यहाँ पर कभी गए हैं तो हो सकता है कि आपकी यादें ताज़ा हो जाएं, और अगर आप नहीं गए हैं तो आपका मन कर जाए कि आप आज ही बस बैग उठाएं और पहुंच जाएं। आज जिस जगह की मैं बात करने वाली हूँ उसे जानते हैं हम तमिलनाडु के एयरकोड के नाम से। जी हाँ, तमिलनाडु का एयरकोड, ये पर्यटन स्थल जो है वो बहुत ही खास है, और अगर आप पारिवारिक छुट्टियां यहां पर बिताना चाहते हैं तो इसके लिए एकदम बेस्ट प्लेस है ये, जिसमें भरपूर आनंद, आराम, रोमांच और मौज मस्ती सब कुछ आपको मिलेगा। एयरकोड झील, पगोड़ा पॉइंट, गुफा, भालुकी और कोटा चोडू, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए जो यहाँ की अद्भुत सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आज की इस तस्वीर में रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ के बारे में इतना कुछ तो मैं आपको बता ही दूंगी कि अगर आप यहाँ जाने का प्लान करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप यहाँ पर अच्छे से घूम सकें, आप जान सकें कि यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए, करने के लिए, खाने के लिए और घर लाने के लिए। बहुत सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको, लेकिन रहिए मेरे साथ इस सफर में जुड़े हुए। 11:12 और 40 सेकंड हो चुके हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। तस्वीर सुन रहे हैं आप, और शुरुआत करते हैं प्यारे से गीत के साथ रफी साहब और आशा जी और साथियों की आवाज में। ये रहा आई मिलन की बिला से खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ग्यारह बजकर 20 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्ची रेखा क्रिस्टल वॉइस। आज हम निकले हैं तमिलनाडु के यरकौड की यात्रा पर। तमिलनाडु का यरकौड हिल स्टेशन अपनी अद्वितीय सुंदरता और प्रकृति की शांति के साथ आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक शांत और प्राकृतिक पर्यटन स्थल होने के नाते ये परिवार और दोस्तों के साथ खुशनुमा पल बिताने के लिए, मनोरंजक गतिविधियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर मैं बात करूं यरकौड पहाड़ियों की, तो संतरे के बागानों, कॉफी, फलों और मसालों के बागानों से भरी ये भूमि शेवरॉय पहाड़ी में स्थित है। और अगर आप यरकौड में ठहरे हैं तो आप आसपास के स्थानों जैसे सलेम, स्वामी मलाई, होसुर, इरोड, नमक्कल और कुछ बाकी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो यहां पर घूमने के लिए ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां आपको जरूर जरूर जाना चाहिए। यरकौड हिल स्टेशन गर्मियों के मौसम में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये अभी भी एक अनछुआ प्लेस है। यहां पर अभी भी कम लोग पहुंचते हैं, इसलिए हम यहां यरकौड हिल स्टेशन और उसके आसपास घूमने के लिए आपको कुछ बेहतरीन प्लेसेस बताएंगे जिसमें आप घूम के लिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यरकौड झील की, तो तमिलनाडु में प्राकृतिक रूप से बनी झील यरकौड झील जो है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। हरे भरे मैदानों के बीच शानदार नजारों का आनंद आप यहां ले सकते हैं। यहां के शांत और सुखद वातावरण में आप झील किनारे स्थित कई रेस्टोरेंट्स हैं, भोजनालय हैं, जहां पर बैठ सकते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। यरकौड में एक दिन में घूमने की योजना बनाते समय इस जगह को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करिएगा, क्योंकि ये जगह इस जगह पर तो है ही, यहां से आसानी से आप घूमने के लिए जा सकते हैं और आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये केंद्र है कहा जाए यरकौड का, तो अपने आप में आसपास की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यही वजह है कि प्रकृति प्रेमी और भोजन प्रेमी यहां समान तौर पर पहुंचते हैं। एक अगर मैं बात करूं तो जिन्हें खाना बहुत पसंद है, जिन्हें प्रकृति बहुत पसंद है, वो सभी लोग यहां पर जरूर जाते हैं। झील में आप बोटिंग कर सकते हैं और आपके कई यादगार पलों को संजो कर ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लूप रोड ट्रिप की, तो अपने आप में ये भी काफी खास है। 32 किलोमीटर का लूप रोड ट्रिप आप यहां पर कर सकते हैं।

दोनों ओर बैरियर लगे हैं। यूपिन जैसे घुमावदार मोड़ वाली लूप रोड 32 किलोमीटर की यादगार यात्रा का अनुभव आपको देती है और यहां तभी गाड़ी चलाएं जब आपको ड्राइविंग अच्छी तरह से आती हो और अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा हो। एयरकोट में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है ये। आसपास के इलाकों में हाइकिंग करना आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव यहां हो सकता है और अगर आप एयरकोट में दो दिन में घूमना चाहते हैं, रोमांच और प्रकृति के नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये जगह उसमें आप शामिल कर सकते हैं और उसके लिए ये प्लेस एकदम फिट बैठती है। तो अगर आपके पास एक दो दिन का समय है और आप एयरकोट घूमने जा रहे हैं तो यहां जरूर जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो एयरकोट में पेगोड़ा पॉइंट एक प्लेस है। पेगोड़ा पॉइंट जो है वो एयरकोट में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है और ये भरपूर पहाड़ियों से घिरी है और बहुत खूबसूरत जगह है। सबसे खूबसूरत नजारे आपको यहां देखने के लिए मिल सकते हैं। एयरकोट बस स्टैंड से सिर्फ करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह पिरामिड पॉइंट के नाम से भी यहां फेमस है क्योंकि यहां शिंगलों के 4 ढेर पिरामिड की तरह लगे हुए हैं और बेहतरीन नजारों के लिए यहां पर लोग जरूर पहुंचते हैं कुछ समय बिताने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, जरूर बताऊंगी, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाती हूं लता जी की आवाज में।

0: जा सकते हैं और ये एयरपोर्ट से 5 मील की दूरी पर है। यहाँ कार या साइकिल से पहुंचना बहुत आसान है और इजीली आप जा सकते हैं यहाँ किसी भी तरीके से। साइकिल से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ के प्राकृतिक नजारों का मजा भी ले सकते हैं। एयरपोर्ट, तलाई, चौलाई, सेलम, ये सभी आसपास है तो इन जगहों पर आप आराम से घूम सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो यहाँ पर पगोड़ा पॉइंट में, वो है सबसे अद्भुत नजारे देखने के लिए सूर्य और सूर्यास्त का समय, जब आप यहां पर जा सकते हैं और आपको अलग अलग खूबसूरत नजारे देखने का मौका मिल सकता है। शानदार नजारों की तस्वीर अगर आप लेना चाहें तो अपने साथ कैमरा जरूर रखिएगा। सुबह के समय भीड़ कम होती है और आप इस टाइम पर जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं और यादगार तस्वीरें अपने साथ लेकर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं रेशम फार्म की और गुलाब उद्यान की तो आप यहां भी जाइएगा जरूर। ये यात्रा ज्ञान और मनोरंजन के लिए बेस्ट होगी। बगीचे में खिले रंग बिरंगे गुलाब आपको अलग अलग तरह की प्रजातियों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो गुलाब के उगने से जुड़ी होती हैं, गुलाब के पैदा होने से जुड़ी होती हैं, वो आपको पता चलेंगी। और इसी तरह आपको रेशम के कीड़ों के पालन पोषण और उनके खोल से रेशम बनाने की उपयोगिता के बारे में भी बहुत सी जानकारी यहां पर मिलेगी। भालू की गुफा है जो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में, बहुत ही रोमांचक प्लेस है ये। एयरपोर्ट में आप इस जगह पर भी जा सकते हैं। नाटन बंगले के पास स्थित भालू की गुफा को भगवान गुरुगन का निवास स्थान माना जाता है और ये शिरवरोयन मंदिर के रास्ते में पड़ता है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो ये जगह आपका सचमुच मन जीत लेगी। आपको एक बार यहां भी जरूर जाना चाहिए। कोटा चेडू सागौन वन है, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत निर्मल वन है ये। यहाँ प्रकृति की गोद में शांत और लंबी सैर करना आपको सचमुच बहुत ही सुखद लगेगा और आप एयरपोर्ट के अलग अलग वन्य जीवों के नजारे भी, दर्शन भी कर सकेंगे। चींटी, खाने वाले जानवर, बाइसन, लोमड़ी, पैराडाइज्ड फ्लाई कैचर और इसके अलावा अवाबील पक्षी, ऐसे बहुत से पक्षी भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। चुपचाप अपने कैमरे में आप इनकी तस्वीरें यहाँ पर ले सकते हैं और अपने कलेक्शन में इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। वानियर नदी और उससे सटे बांध के पास कुछ पल आप रुक जाइए, सचमुच आपका दिन बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं किलियूर वाटरफॉल की तो क्या आपको नहीं लगता कि गर्मियों के मौसम में झरने जो हैं वो सचमुच पर्यटकों की एक मेन अट्रैक्शन होते हैं। जहां पर भी आपको पता चल जाए कि वाटरफॉल है आप पहुंच जाते हैं बिना कुछ सोचे, तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी एक किलियूर वाटरफॉल है जो कि एयरपोर्ट झील के बहते पानी से बनता है। 300 किलियूर वाटरफॉल भी इसे कहा जाता है और अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। झरने बहुत ही खूबसूरत नजारे पेश करते हैं और आप झरने तक जाने वाले 2 किलोमीटर लंबे रास्ते पर पैदल चल सकते हैं। सिर्फ एक दिन का अगर समय मिल जाए आपको तो फिर आप दिन के समय से जाइए यहाँ पर और इस जगह का आनंद जरूर लीजिए। डियर पार्क है एक जगह, यहाँ भी आप जा सकते हैं, बेस्ट प्लेस है, आपको जरूर यहाँ घूमना चाहिए। पार्क में आजाद रूप से घूमते हुए हिरण, बतख और मोरों की आप संगति कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और सचमुच ये आपकी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। ये पार्क एयरपोर्ट झील के किनारे पर है और इसलिए यहाँ की हरियाली जो है वो सचमुच मन को जीत लेती है। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं एयरपोर्ट में घूमने के लिए, लेकिन गीतों के साथ साथ बढ़ेंगे आगे आगे, बस हमें साथ लिए चलते रहिए।
1: उस

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ब्रेक के बाद वापस तो मिलना ही होता है। आप सोचते होंगे ना कहाँ चले गए भाई, छोटा छोटा ब्रेक तो लेना बनता है ना। 11:37:41 हो चुके हैं और मैं याद दिला दूं कि आपको तमिलनाडु की एयरकोट घुमा रही हूँ आज मैं। तो भाई एयरकोट में और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर आप जा सकते हैं, तो बता दूं कि एयरकोट में लेडीज सीट एक जगह है और एक तरह का ये अवलोकन मंच है जहां से पूर्वी घाट की घुमावदार सड़क का नजारा दिखता है। यहां से मेटूर बांध और सलेम शहर का शानदार नजारा आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ एक टावर भी है जिसमें दूरबीन लगी है ताकि आप मनमोहक नजारों का आनंद ले सकें। ये टावर पर्यटकों के लिए सिर्फ दिन के समय ही खुला रहता है, तो अगर आप यहाँ जाएं तो दिन

यहाँ जाइएगा और दूरबीन से यहाँ के आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा यरकोड में शिवरॉय हिल्स है जो कि आपके लिए बहुत खूबसूरत प्लेस हो सकता है। शिवरॉय हिल्स यरकोड की सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है और ये पहाड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और लोग यहाँ खास तौर से प्रकृति का आनंद लेने और सुकून पाने के लिए आते हैं। इस पहाड़ी इलाके में कुछ पुराने कॉटेज और होम स्टेज भी हैं। लोग वीकेंड में यहाँ दो दिन बिता सकते हैं और उनका सचमुच सफर जो है वो लाजवाब हो जाता है। अगर मैं बात करूं यरकोड घूमने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, तो भाई यरकोड घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान आप यहां जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग यरकोड में वीकेंड ट्रिप को प्लान करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए यरकोड घूमने की सलाह मैं आपको दूंगी। अगर आपको वक्त मिले तो करीब एक हफ्ते यहां रहिएगा और ये वक्त तो आपको शायद छुट्टियों में ही मिल पाएगा। ज्यादातर पर्यटन के तौर पर जो लोग यहां पहुंचते हैं मई महीने में यरकोड जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दौरान कई गतिविधियां होती हैं जिनमें 7 दिनों तक चलने वाला ग्रीष्म उत्सव भी शामिल है। यरकोड में अलग अलग मौसमों में यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है यहाँ, जो कि छुट्टियों और मौसम के लिए सबसे बेस्ट है। मानसून की अगर बात करूं तो हरे भरे नजारे लेकिन फिसलन भरी सड़कें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। सर्दियों में ठंडा मौसम और कम भीड़ होती है। मई का महीना ग्रीष्मोत्सव की वजह से खास होता है, तो आप इस सब को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। पहुंचना कैसे है यरकोड जरूर बताऊंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए इस गीत के बाद।

0: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: चलिए अब आपको बता देती हूँ कि एयरकोट पहुंचना कैसे है। एयरकोट के सबसे नजदीक स्टेशन दानिशपेट रेलवे स्टेशन है। हालांकि एयरकोट से 22 किलोमीटर दूर स्थित तो मुख्य टर्मिनस सलेम रेलवे स्टेशन है। सलेम हवाई अड्डा एयरकोट से 38 किलोमीटर की दूरी पर है और इसलिए ये पड़ोसी हवाई अड्डा भी है। आप तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ऑप्शन भी चुन सकते हैं जो एयरकोट से 168 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरकोट के अधिकांश पड़ोसी कस्बों और शहरों से बसें उपलब्ध हैं। अगर आप 32 किलोमीटर के लूप रोड पर खुद ड्राइव करने की इच्छा रखते हैं तो ये मजेदार अनुभव भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप जैसे चाहें यहां पहुंच सकते हैं। हाँ, एक और जगह के बारे में बताऊं अगर मैं आपको, कनादी और व्यू प्वाइंट है जो ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। पेगोड़ा प्वाइंट की तुलना में कम भीड़भाड़ वाला शांत सूर्यास्त के लिए बेस्ट है ये प्लेस, आपको यहां पर जरूर जाना चाहिए। यात्रियों के लिए अगर मैं बात करूं तो एयरकोट जो है वो भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों जैसा नहीं है। यहां का शांत वातावरण, ठंडी हवा और कम यातायात इसे बेहद सुकून भरा बनाते हैं। शाम को एयरकोट झील के किनारे बैठना मन को शांति देता है। पेगोड़ा प्वाइंट से सूर्यास्त का नजारा ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा इसे याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। सचमुच बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप शहर की व्यस्त जिंदगी से कुछ समय के लिए राहत पाना चाहते हैं तो भी ये एक बेस्ट प्लेस है। तो कुछ सामान पैक कर लीजिए और पहुंच जाइए यहां पर, क्योंकि आपकी यात्रा यहां के लिए अगर आप एक बार कर लें तो यादगार होगी। समुद्र तल से 1515 मीटर के लगभग की ऊंचाई पर स्थित 7 जंगलों की भूमि एयरकोट गर्मियों में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एयरकोट में छुट्टियां बिताने की योजना अक्टूबर से जून के बीच बनाने की सलाह मैं आपको दूंगी। वैसे ये जो मौसम है अभी, ये भी बहुत सही है यहां जाने के लिए। मई में 7 दिवसीय ग्रीष्म उत्सव का आयोजन होता है जिसमें फूलों की प्रदर्शनी, डॉग शो, नाव दौड़ और कई गांव के मेले भी शामिल होते हैं। अगर आप मई के मौसम में अगली बार वक्त मिले जाना चाहें तो तब जाइएगा जरूर। और गर्मियों में ये एयरकोट की पर्यटन स्थलों की यात्रा अगर आप करते हैं तो ये अनुभव भी बहुत ही बेस्ट होने वाला है आपके लिए। अगर मैं बात करूं तो बहुत सी चीजें हैं यहां पर देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, पेगोड़ा प्वाइंट, बोटानिकल गार्डन, कावेरी पीक, लूप रोड, बहुत सी चीजें हैं और कई गतिविधियां भी आप यहां कर सकते हैं, जैसे कि कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एडवेंचरस एक्टिविटीज का आप यहां आनंद ले सकते हैं। और संस्कृति की अगर मैं यहां की बात करूं तो तमिलनाडु की शिवरॉय पहाड़ियों में बसा एयरकोट एक शांत और आकर्षक हिल स्टेशन है। इसे गरीबों का ऊटी भी कहा जाता है। एयरकोट की संस्कृति खासतौर से प्राचीन तमिल द्रविड़ संस्कृति और औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रभाव का एक अनूठा मिश्रण है। गरीबों की ऊटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप कम बजट में यहां पर जाना चाहते हैं तो भी आप इस जगह पर जा सकते हैं, मतलब सस्ते में बेस्ट प्लेस, और क्या चाहिए। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत सुनाती हूँ, उसके बाद यहाँ की संस्कृति से जुड़ी कुछ और बातें भी आपको जरूर बताऊंगी।

दोस्तों, येरकोड जो नाम है वो तमिल के दो शब्दों से मिलकर बना है, येरी यानी झील और काडू यानी जंगल, जिसकी वजह से इसका शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो झील का जंगल कहा जा सकता है। ये जो जगह है सदियों से मलयली और आदिवासी समुदाय का निवास स्थान रहा है। मलयली आदिवासी समुदाय जो है वो यहाँ सदियों से रहता आया है और आज भी यहाँ के मूल निवासी अपनी पारंपरिक जीवन शैली, कृषि जैसे बाजरा, रागी और फल उगाना और सांस्कृतिक अनुष्ठानों को संजोए हुए हैं, संभाले हुए हैं। मई के महीने में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक उत्सव जो है यहाँ का वो है फूलों की प्रदर्शनी, जब पारंपरिक नृत्य और हस्तशिल्प मेले यहाँ लगते हैं। त्योहारों में पोंगल, कार्तिकाई दीपम और तमिल नववर्ष बहुत उत्साह के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। अगर बात करूं खान पान की तो येरकोड अपने ताजे कॉफी बागानों और संतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति में मसालों जैसे काली मिर्च और इलायची, शहद और घर की बनी चॉकलेट का बड़ा महत्व है। और अगर मैं बात करूं तो स्कॉटिश कलेक्टर डेविड कॉक बर्न द्वारा कॉफी की खेती शुरू करने के बाद करीब 19वीं सदी में यहां ब्रिटिश शैली के बंगले, कॉटेज और चर्च बनाए गए। आज ये औपनिवेशिक विरासतें प्राचीन शेवाराय मंदिर और पगोडा पॉइंट के साथ मिलकर यहां की अनूठी वास्तुकला को दर्शाती हैं। और येरकोड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ शानदार स्थानीय उत्पादों के लिए जाना जाता है। यहां आप जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कॉफी, ताजा मसाले, होममेड चॉकलेट, हर्बल एसेंशियल ऑयल्स, ये सब कुछ खरीदकर अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप इन चीजों को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए ताकि जब भी आप यहां पर जाएं तो आपको ये सब चीजें खरीद कर घर लाना याद रहे। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो बहुत सारी और भी चीजें हैं येरकोड में आप जो खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहां मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है, सिमन की वेरल एक तरह का ड्राई चिकन होता है, स्थानीय बाम्बू चिकन आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। पारंपरिक शाकाहारी खाने की बात करूं तो केले के पत्ते पर पोंगल, इडली डोसा और नारियल वाली सांबर चटनी का आप आनंद ले सकते हैं। ताजी फिल्टर कॉफी आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं, इंडियन फिल्टर कॉफी और हॉट चॉकलेट का मजा आप ले सकते हैं। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म तली हुई बटरफिश और आग पर भुना हुआ भुट्टा आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं। तो भाई इतना सब टेस्ट करने का मौका मिले तो कहां रुका जाता है। मैं तो अभी उड़ चली हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप तक एक गीत पहुंचा देती हूं। ये रहा एक और खूबसूरत गीत लता जी की आवाज में।

तो भाई अब तस्वीर के सफर में तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी, मैं रेखा आज रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आपसे आज के लिए विदा। 11:57 मिनट 53 सेकंड मिलेंगे फिर किसी रोज, ये वादा रहा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता

अधिवक्ता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चंदन।
1: कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं वही आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। हमारी जिंदगी की जड़ें भी हमारे बुजुर्ग ही हैं। उनके अनुभव, उनकी सीख, उनकी दुआएं और उनका स्नेह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में आपकी हम सफर हूं मैं, आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बढ़ाएंगे एक ऐसा कदम जो सम्मान का भी है, संवाद का भी और अपनत्व का भी। आइए दिल से जोड़ते हैं उन हाथों से जिन्होंने हमें चलना सिखाया और उन आंखों से जिनमें आज भी हमारे लिए ढेरों दुआएं बसी हैं। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों के लिए में। कहते हैं बस उन्हीं की आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और अब हम करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे सी गीत के साथ।

रुना लैला को आप सुन रहे थे फिल्म घरांदा में। और देखिए प्यार हमें आपसे है और बेशुमार है। अब कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से जरूर हुई है, लेकिन आपका और हमारा प्यार तो इतना ज्यादा है कि उसका तो खैर कोई सानी ही नहीं है। तो आपका प्यार हम तक पहुंचता कैसे है? जी हाँ, पहुंचता है आपकी ईमेल के माध्यम से। तो हमारी ईमेल आईडी आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ आपको, वो है fmgoldga@gmail.com। तो इंतजार है आपकी बातों का, आपकी कमेंट्स का और आपकी प्रतिक्रियाओं का। दोस्तों आज शुक्रवार है, आप सभी जानते हैं, और ये दिन है समर्पित किनको? जी हाँ, हमारे बुजुर्गों को। लेकिन ना, आज की तारीख है 12 जून, और आपको पता है आज हम एक और विशेष दिवस है आज के दिन, और वो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बचपन हाथों में मेहनत का बोझ नहीं सपनों की उड़ान मांगता है ना? और इस वर्ष की जो थीम है ना, वो है रेड कार टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। यह थीम इस बात पर जोर देती है दोस्तों कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन मिले, और परिवारों को ऐसा सम्मानजनक रोजगार मिले कि बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो आइए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और मुस्कुराने का अधिकार मिले।

जी हाँ दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। कभी उम्र को केवल जीवन की संध्या माना जाता था, लेकिन आज बदलते समय के साथ ना ये धारणा भी बदल रही है। वरिष्ठ नागरिक अब केवल अनुभव के धनी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी देखे जा रहे हैं। और इसी सोच से जुड़ा है एक बेहद नया शब्द, और वो है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का संबंध ना उन सेवाओं, सुविधाओं और उत्पादों से है जो विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। इसमें ना स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पर्यटन, डिजिटल सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, सहायक उपकरण और देखभाल से जुड़ी उनकी अनेक गतिविधियां शामिल हैं। भारत में ना वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह जो क्षेत्र है ना, यह तेजी से बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त कर रहा है। आज ना अनेक ऐसी संस्थाएं हैं और ऐसे उद्योग हैं जो ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों को और अधिक सुरक्षित, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता प्रदान कर सकें। दरअसल उम्र केवल ना वर्षों की गिनती नहीं होती, ये होती है अनुभव, ज्ञान और जीवन की समझ का खजाना। इसीलिए ना बहुत जरूरी है कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही हमारे वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं को समान महत्व दें। अब ना जो सिल्वर इकोनॉमी है, इसी दिशा में एक बहुत पॉजिटिव पहल है, और यह जो संदेश देती है कि बढ़ती उम्र केवल देखभाल का विषय नहीं है बल्कि अवसरों और संभावनाओं का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है ना। और जब हमारी सोच और हमारे बुजुर्गों की इच्छाएं और उनकी जरूरतें एक साथ मिल जाती हैं तो उनका मेल ऐसे हो जाता है जैसे फूल के साथ खुशबू, है ना।

फिल्म प्रेम गीत में आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौंडवाल की आवाज में ये गीत। दोस्तों, जीवन के हर पड़ाव की अपनी गति और अपनी जरूरतें होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ हम ये समझने लगते हैं कि जीवन में हर बात उपलब्धि या प्रदर्शन से नहीं बल्कि संतुलन और सहजता से भी जुड़ी होती है। शायद योग हमें भी यही सिखाता है। अक्सर योग का नाम आते ही ना कठिन आसनों की तस्वीर मन में उभरती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग का अर्थ कुछ और है। ये शरीर को उसकी क्षमता के अनुसार सक्रिय बनाए रखने, श्वास पर ध्यान देने और मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। योग हमें ना अपने शरीर की सुनना सिखाता है। जी हाँ, ये हमें ये बताता है कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। आइए हम ये सुने। ये बताता है कि हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना जीवन भर दूसरों के लिए समय देना। बढ़ती उम्र में योग लचीलेपन की प्रतियोगिता नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये शरीर और मन के साथ एक सहज संवाद का माध्यम है दोस्तों, और ना कुछ सरल अभ्यास, नियमितता और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बना सकते हैं। आखिरकार योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं होता बल्कि स्वयं के साथ ना एक सामंजस्य स्थापित करने की एक बहुत सुंदर सी प्रक्रिया है। इसीलिए बढ़ती उम्र में योग का अर्थ लचीलापन नहीं बल्कि सहजता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत योग अपने जीवन में जरूर उसको स्थान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारे शरीर का दर्पण है। और हमारा जो हमारी आत्मा अगर स्वस्थ होगी तो हमें अपने आप उस परमपिता के दर्शन हो जाएंगे, है ना।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये सुमधुर गीत। दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक बहुत ही नियमित श्रोता जुड़ चुके हैं और वो बहुत खूबसूरत शब्दों में हमें एक संदेश देते हैं। वो लिख रहे हैं, वरदान, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई बुजुर्ग निशब्द तुम्हारे सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर दे। बस क्या बात है। नमस्कार, आप हमें नमस्कार लिख रहे हैं और ये कौन है? ये है, जी हाँ, नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ हर दिन बने रहने के लिए। और हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, ये हैं गौरी शंकर जी नांगलोई से। लिखते हैं, सोनाली बेटा राम राम, आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, अगर इस पर अमल करें तो जिंदगी सफल हो जाती है, लेकिन आज के समय में फर्क है। मैं तो यही कहूंगा, अपने साथियों को, बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उन पर कोई दबाव मत दो, तभी आपकी जिंदगी खुशी से गुजर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप सभी जानते हैं हम सुन रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आज हमारे आसपास इसके कई सुंदर उदाहरण दिखाई देते हैं। एक समय था ना जब चिट्ठियों का इंतजार हुआ करता था, फिर टेलीफोन आए और अब मोबाइल ने दुनिया को अपनी हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है। आज बहुत से बुजुर्ग इस नई दुनिया के साथ कदम मिला रहे हैं। कोई वीडियो कॉल पर दूर बैठे बच्चे से बात कर रहा है तो कोई ना मोबाइल से बिल जमा कर रहा है, तो कोई नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा है और ये बदलाव बहुत खुशी देता है ना। लेकिन हर नई राह की तरह इस राह पर भी थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। कई बार फोन संदेश या लिंक के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, OTP या बैंक से जुड़ी बातें साझा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर कोई बात समझ में ना आए ना तो आप बस झिझकिए मत, अपने बच्चों, परिवार या बैंक से पूछ लीजिए। देखिए, एक सवाल पूछ लेना बाद में परेशान होने से कहीं बेहतर है। नई तकनीक से डरने की नहीं, उसे दोस्ती करने की जरूरत है ना। और बस इतनी सी बात याद रखिए कि समझदारी और सावधानी दोनों साथ रहें। दुनिया बदल रही है और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बुजुर्ग भी उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि सीखने, समझने और आगे बढ़ने का सफर कभी रुकता नहीं है। और जब इस सफर में आपके साथ हम सफर हो FM गोल्ड, तो क्या बात है, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए सदाबहार गीत। तो आइए अब सुनते हैं एक और बहुत ही सदाबहार गीत।

फिल्म लव इन टोक्यो में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर, और आज आपके साथ मैं हूँ, जी हाँ, आपकी रेडियो हम सफर सुनाली। कहते हैं

घूमने फिरने का शौक उम्र नहीं देखता, बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा फुर्सत मिलने के बाद ही उन्हें घूमने का असली मौका मिलता है। नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना और नए अनुभव हासिल करना हर उम्र में अच्छा लगता है। हाँ, बढ़ती उम्र में सफर पर निकलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर जरूरी है ना। घर से निकलते समय अपनी दवाइयां साथ रख लें और मौसम के हिसाब से तैयारी जरूर कर लें। अगर किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो घर वालों को अपनी इस यात्रा की जानकारी देकर ही जाएं। सफर के दौरान बहुत ज्यादा सामान उठाने से बचें, मोबाइल साथ जरूर रखें और हाँ, जरूरी नंबर उसमें सेव हो तो और अच्छी बात है। अगर थकान जरा सी भी महसूस होना तो कहीं पर भी ना रुक कर थोड़ा सा आराम जरूर करें। सफर का मजा तभी है जब हम उसे आराम से जिए, है ना। मतलब भागा दौड़ी ना करें, अपने शरीर का जरूर ख्याल रखें और जहां भी थोड़ी सी भी आपको लगे कि कुछ उलझन सी हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप वहीं रुक जाइए और थोड़ा सा सांस ले लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। घूमना फिरना सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं है, ये तो आप मानेंगे ना। यह रोजमर्रा की दिनचर्या से ना थोड़ा बाहर निकलने, नई ऊर्जा महसूस करने और अच्छी यादें बनाने का भी एक जरिया है। इसीलिए उम्र चाहे जो भी हो, अगर सफर का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। बस थोड़ी तैयारी और थोड़ी सावधानी के साथ निकल पड़िए एक नई मंजिल की ओर, क्योंकि आपको क्या पता जीवन के किस मोड़ पर कौन कहां आपसे मिल रहा है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म झूठा कहीं का। इस फिल्म में किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज में ये गीत। हमारे साथ हमारे ना एक और दोस्त जुड़े हुए हैं, वो है सुदर्शन मुखी जी, उनके साथ है अनिता मुखी और सिमरन मुखी, और ये हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और इन्हें सारी बातें अच्छी लग रही हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। सुदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं। ये आज के समय की एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार ना इस दूरी के साथ एक खालीपन भी महसूस होने लगता है। ऐसे में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि दूरियां हमें रिश्तों को कमजोर नहीं करती। जी हाँ, दूरियां हमारे रिश्तों को कभी कमजोर नहीं करती। आज का फोन, वीडियो कॉल और संदेशों के जरिए अपनों से जुड़े रहना पहले से कहीं आसान हो गया है ना। और कई बार ना दिन भर की बहुत अगर हम बहुत ज्यादा व्यस्त भी रहते हैं तो इसके बीच में कुछ मिनट अपने दोस्तों से या अपने लोगों से, अपने बच्चों से बातचीत करके ना दिल में एक बहुत अलग सी शांति और सुकून हमें मिलता है। बढ़ती उम्र में ना दोस्तों, पड़ोसियों और अपने शौकों से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है, ये आप हमेशा याद रखिए। जीवन केवल बच्चों के इर्द गिर्द नहीं घूमता, हाँ उसमें अपने लिए भी एक जगह होनी बहुत जरूरी है। अकेलापन तब ज्यादा महसूस होता है जब हम खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। इसीलिए लोगों से मिलते रहिए, अपनी पसंद की गतिविधियों में हिस्सा लीजिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए। बच्चे भले दूर हों लेकिन रिश्तों की गर्माहट दूरी से कम नहीं होती। कभी एक फोन कॉल, कभी एक मैसेज और कभी छोटी सी मुलाकात भी दिलों को करीब बनाए रख सकती है ना। तो बस यही आप हमेशा सोचते रहिए, देखते रहिए, लोगों के साथ मिलते रहिए और अपनी जिंदगी में प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि इस समय में आपका हम सफर अगर आपके साथ है तो इससे ज्यादा भली बात और कोई हो ही नहीं सकती। अपने उस जीवन साथी का साथ हमेशा निभाते रहिए, उसके साथ समय बिताइए और जीवन के इस पड़ाव को उतने ही प्यार और खूबसूरती के साथ जिए जिस तरह अपना आप पूरा जीवन जीते आए हैं।
1: क्या कहा?

फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, इसमें आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, कभी संगीत सुनने का शौक था, कभी बागवानी का था, कभी डायरी लिखने का या कुछ नया पढ़ने का शौक था। था क्यों? है होना चाहिए ना। जी हाँ, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच ना ये शौक कहीं आपके पीछे रह गए ना, लेकिन अब तो समय है, आप इन्हें फिर से अपना सकते हैं। संगीत मानेंगे ना, मन को सुकून देता है। बागवानी जो होती है वो हमें हमारी प्रकृति के बहुत करीब ले जाती है, और अगर आप लिखने के शौकीन हो तो क्या बात है, अपने मन की बात कहने का ये एक सुंदर जरिया बन सकता है। ऐसे शौक न केवल समय को हमारे सार्थक बनाते हैं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी भरते हैं। जरूरी नहीं कि आपका शौक बहुत बड़ा हो, कभी किसी पुराने गीत को सुन लेना, और अगर पुराने गीत सुनना है तो आपको कहाँ बने रहना है, हाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। तो किसी पौधे की देखभाल कर लेना या फिर दिन भर के अनुभवों को कुछ पंक्तियों में लिख लेना भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जीवन की खूबसूरती यही है कि सीखने और नए अनुभवों के लिए कभी देर नहीं होती। इसलिए अगर कोई पुराना शौक आज भी दिल के किसी कोने में दस्तक देता है ना, तो उसे फिर से अपनाने में संकोच कैसा। कभी कभी वही पुराने शौक जीवन में नई खुशियां लेकर आते हैं, है ना।

फिल्म ममता में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हम आपके साथ एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहते हैं और वो है, जी हाँ, जीवन प्रमाण यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुविधा। अब क्या हो रहा है ना कि समय के साथ बहुत से काम आसान होते जा रहे हैं और तकनीक का लाभ अब हमारे बुजुर्ग लोगों तक भी पहुंच रहा है। ऐसी एक सुविधा है जीवन प्रमाण, जो पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। अब क्या होता है, पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को हर साल ये प्रमाण देना होता है कि वे जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। पहले इसके लिए बैंक या हमें संबंधित कार्यालय में जाकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था, लेकिन अब ना जीवन प्रमाण की डिजिटल सुविधा ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जिसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इससे हमारे बुजुर्गों को बार बार बैंक या कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है और ये सुविधा ना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें किसी स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण बाहर जाने में कठिनाई होती है। तो आप जीवन प्रमाण से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है ना, जी हाँ, jeevanpraman.gov.in पर भी जा सकते हैं। वहाँ इस सुविधा से संबंधित बहुत सारी आपको जानकारियां बहुत विस्तृत रूप में मिल जाएंगी। और नई चीजें सीखने और अपनाने की कोई उम्र नहीं होती, हम बार बार आपसे यही कहेंगे। और जब तकनीक जीवन को सरल बनाने में मदद करे तो उससे दोस्ती कर लेना ही सबसे बेहतर है

जी हाँ, आप ही के जादू के साथ इस कार्यक्रम को हमने पूरा पूरा किया और अब देखिए घड़ी हमें इशारा नहीं करती कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो बस आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सुंदर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री

नमस्कार, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। फिलहाल वक्त हो चला है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री श्यामा की। अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अदाओं वाली अभिनेत्री श्यामा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें बरसात की रात, आर पार सावन भादो और दिल दिया दर्द लिया जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेरा अभिनेत्री श्यामा ने। 50 और 60 के दशक में हिंदी और पंजाबी सिनेमा की बेहतरीन हीरोइनों में शुमार श्यामा की आज हम बात करेंगे कलाकार बेमिसाल के जरिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं रुचिका आपके साथ, और चलिए इस प्रोग्राम की इस घंटे की शुरुआत करते हैं फिल्म भाई भाई से इस सुपरहिट गीत के साथ। और ये चुलबुला गीत पिक्चराइज्ड है, जाहिर सी बात है, अभिनेत्री श्यामा पर। सुनते रहिए FM गोल्ड

जी हाँ, ये गीत आपने सुना गीता दत्त की आवाज में, और फिल्म थी भाई भाई। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा श्यामा की। श्यामा का असली नाम खुर्शीद अख्तर था। निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें श्यामा नाम दिया था। श्यामा ने 45 साल की उम्र तक करीब 175 फिल्मों में काम किया। 7 जून 1935 को लाहौर में वे पैदा हुई थी। 1938 में उनका परिवार बंबई आ गया। श्यामा की उम्र करीब 10 साल की थी। आपको बता दें कि उनका जो फिल्मी करियर था वो किस तरह से शुरू हुआ था, और बचपन से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी उम्र जब करीब 10 साल की थी तब उनके स्कूल के पास फिल्म जीनत की शूटिंग हुई। नूरजहां उस फिल्म की हीरोइन थी। वहां फिल्म में एक कवाली का सीन था जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कलाकारों की जरूरत थी, और स्कूल की वो कुछ लड़कियां फिल्म की शूटिंग देखने उस जगह पहुंच चुकी थी, और फिल्म के डायरेक्टर शौकत हुसैन रिज़वी ने देखा कि सेट पर कुछ स्कूली लड़कियां मौजूद हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि फिल्म में तुम में से कौन काम करेगा। तो सारी लड़कियां शर्मा गई, लेकिन खुर्शीद ने बड़ी बेबाकी से कहा कि मैं फिल्मों में काम करूंगी। बस तभी से श्यामा बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में एक्स्ट्रा और कोरस गर्ल के रूप में काम करने लगी, और बेबी खुर्शीद के नाम से उन्हें पहचाना गया। और उसके बाद उन्होंने तराना, सजा, पतंगा, गृहस्थी, शायर, शबनम, नाच सहित कई बड़ी फिल्मों में एक सहायक कलाकार के तौर पर काम किया, और इस तरीके से बस उनका जो फिल्मी सफर था वो बचपन से ही शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके उन्हें बड़ी फिल्में भी मिलने लगी। तो चलिए फिलहाल हम पहुंचाते हैं आप तक फिल्म छोटी बहन से ये सुपरहिट गीत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये गीत आपने सुना फिल्म शर्त से और आवाज थी लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। आपको बता दें कि कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्यामा की। श्यामा कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहीं, जिनमें बरसात की रात, आर पार, सावन भादो, दिल दिया दर्द लिया जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। वहीं एक सहायक कलाकार के तौर पर भी वे कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहीं, जिनमें तराना, सजा, पतंगा, गृहस्थी, शायर, शबनम, नाच, शर्त, सबाक, मिलन जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें, जब श्यामा थोड़ी बड़ी हुई तो आईएस जौहर ने उन्हें अपनी फिल्म श्रीमती जी, जो 1952 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में बतौर हीरोइन उन्हें पेश किया और इसमें हीरो थे नासिर खान। उसके बाद अगले साल 1953 में फिल्म आई लहरें और इस फिल्म में वे किशोर कुमार की नायिका बनी थी। बिमल रॉय की फिल्म मां में काम करने के बाद तो श्यामा एक स्टार बन गई थी। उस साल उन्होंने लगभग 19 फिल्में साइन की थी। 1954 में रिलीज फिल्म आर पार में वे गुरुदत्त के साथ दिखाई दी थी, गुरुदत्त की हीरोइन में बनी थी और ये फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई और इसके बाद तो श्यामा ने ये मानिए कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए, जब हमने बात की है फिल्म आर पार की तो इस फिल्म से एक गीत आप सभी तक पहुंच जाते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

जी हाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं। और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्यामा की। अभिनेत्री श्यामा कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही और उनका जो करियर था वो भी अच्छा खासा कई सालों तक चलता रहा। और सबसे खास बात ये थी कि श्यामा के करियर में जो मील का पत्थर मानी जाती है वो फिल्म थी आर पार। और इस फिल्म के बाद तो श्यामा का जादू ऐसा चला कि 17 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके दीवानों की अच्छी खासी तादाद हो गई थी। और बस उसी दौरान की बात है कि कैमरामैन फली मिस्त्री और अभिनेत्री श्यामा एक दूसरे को चाहने लगे और फिर श्यामा ने उनसे शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए वे एक दूसरे के हो गए। लेकिन खास बात यह रही कि श्यामा की शादी का उनके फिल्मी करियर पर कोई भी असर नहीं पड़ा और शादी के बाद भी श्यामा फिल्में करती रही। एक अभिनेत्री के रूप में सिक्का जमाने के बावजूद उन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रोल भी किए। बहुत सी ऐसी फिल्में थीं जिनमें वे नजर आई। लेकिन चलिए पहले सुनते हैं एक गीत और गीत के बाद हमारा कलाकार बेमिसाल का सफर जारी रहेगा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ये गीत आपने सुना फिल्म शारदा से और आवाज थी आशा भोसले की। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्यामा की, और फिल्म शारदा के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने बहुत सी चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा, जिनमें बहुत सारी फिल्में शामिल हैं, छोटी बहन, भाभी, माँ बाप, भाई भाई, हम लोग जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं जिनमें वे एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। और इसके अलावा आपको बता दें कि श्यामा ने खलनायिका के रूप में भी पर्दे पर अवतार लिया था। उनकी आंखों से झलकती कुटिलता और मोहक सौंदर्य का फिल्मों में भरपूर इस्तेमाल किया गया। वहीं दिलीप कुमार अभिनीत दिल दिया दर्द लिया और सुनील दत्त की फिल्म मिलन उनकी कुछ आखिरी फिल्मों में शामिल थी।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में खवातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वजीर दाखिला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत की मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है और फीफा आलमी कप 2025 में टोरंटो में ग्रुप बी मैच में कनाडा का मुकाबला बोस्निया व हर्जेगोविना से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक खवातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में खवातीन की बढ़ती हुई शराकत से नए मौके पैदा हो रहे हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे बदल रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने खवातीन की कयादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिशें वकार, मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें खवातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कौल को दोहराते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संगे बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के जायजे के लिए एक आला सतह मीटिंग कर रहे हैं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल्स इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने तालीमी, सनती और तिजारती सारिफीन पर खुर्दा पेट्रोल पंप से मोटर स्प्रिट और तेज रफ्तार गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है और उनसे कहा है कि वो अपने ही सारिफ पंप से अपनी जरूरियात पूरी करें। यह फैसला मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से आलमी सप्लाई चेन में रूकावटों के दौरान मकामी किल्लत से निमटने के मकसद से किया गया है। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि ये बंदिशें 90 दिन तक जारी रहेंगी। खुर्दा पंप्स को भी हिदायत दी गई है कि वो तेज रफ्तार वाला डीजल रोजाना महज 200 लीटर तक फरोख्त करे ताकि इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी को रोका जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने खुराक और तकसीम आम्मा के महकमे के अफसरान के

0: साथ कल एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद प्याज की सरकारी खरीद को मुस्तहकम और किसानों के लिए बेहतर मुनाफे को यकीनी बनाना था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि सरकारी खरीद की कम से कम यकीनी कीमत को बढ़ाकर 1650 फी क्विंटल कर दिया गया है, जो मंडी की मौजूदा कीमतों और स्टोरेज दर्जे की प्याज के लिए दरकार क्वालिटी पर मबनी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कीमतें तय करने के तरीके को भी बेहतर बनाया गया है, ताकि सरकारी खरीद को मार्केट के हालात के मजीद मुताबिक बनाया जा सके। इत्तिलात और नशरियात की वजारत ने टेलीविजन, रेडियो और मुतालिका खिदमात के बारे में टेली मवासलात के 2026 के जाब्तों का मुसव्वदा अवाम की राय मालूम करने के लिए जारी कर दिया है। ये उसूल पिछले टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत टेलीविजन और रेडियो खिदमात के लिए जारी मुख्तलिफ रहनुमा खतूत को जामे बनाने के लिए वजा किया गया है। ये उसूल हाल ही में नाफिज किए गए टेली मवासलात कानून 2023 के दायरे में वजह किए गए हैं। इन उसूलों का मकसद बहुत से मौजूदा रहनुमा खतूत की जगह एक वाहिद जाब्ता जाति फ्रेमवर्क तजवीज करना है। उसूलों का ये मुसव्वदा इत्तिलात और नशरियात की वजारत की वेबसाइट पर शाये कर दिया गया है और लोग इस सिलसिले में अपनी राय और मशवरे 27 जुलाई तक भेज सकते हैं। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नजरसानी शुदा इम्तिहानी वक्त में लाजमी इम्तिहानी जाब्तों जैसे हाजिरी की शीट पर दस्तखत और दीगर निगरानी के तरीकेकार के लिए दरकार वक्त भी शामिल है। एक बयान में एजेंसी ने बताया कि ये तब्दीलियां गुज़श्ता बरसों के दौरान उम्मीदवारों से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर की गई हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगोज ने ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफेनी दुजैरिक ने कहा कि जनाब गुतेरस को खित्ते में मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हर हाल में मल्लाहों, शहरी जहाजरानी और इसकी आजादी के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया है। भारत के मारूफ निशानेबाज और कोच एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाले साबिक खिलाड़ी जसपाल राणा का इंतकाल हो गया है। वो 49 बरस के थे। भारत की कौमी राइफल एसोसिएशन के सदर कालीकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक जसपाल राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में ISSF आलमी कप से भारतीय टीम की वापसी के दौरान बीमार हो गए थे। उन्होंने 2026 के पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी तौर पर कांसे के 2 तमगे जीतने में मनु भाकर की रहनुमाई की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मेक्सिको के जेपोपन में ग्रुप ए के एक मैच में जनूबी कोरिया ने चेक जमहूरिया को 2-1 से हरा दिया। जनूबी कोरिया का अगला मुकाबला मेक्सिको से, जबकि चेक जमहूरिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले कल रात मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में खवातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है, ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वजीर दाखिला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News.

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया

जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है

0: कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24 लाख रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

गीगाहर्ट्ज पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का, तो आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा आपके साथ और कार्यक्रम में सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और मेरे साथ साथ मेरे साथी भी हैं, उनका भी परिचय।
1: मैं विनोद कुमार और हर बार की तरह हम कोई न कोई नई चीजें अपने किसान साथियों के लिए लेके आते हैं और आज उसी पे बात करेंगे।
0: बिल्कुल विनोद, उसी पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हमारे किसानों के लिए, चाहे वो नई नई जानकारी हो, खेती की बात हो, नई नई मशीनों की बात हो या फिर खाद की भी बात हो।
1: बिल्कुल।
0: और खाद, आजकल असली खाद पर भी हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि नकली खाद बाजार में बहुत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल, उसमें हमें ध्यान ये देना है। और दूसरा एक चीज और भी है, मतलब हम समय समय पर बात करते हैं अपने किसान साथियों को, जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा बदले, ऑर्गेनिक चीजें जो है हम उस पे आए, जैविक खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पे हम आए। और ये जो टाइम है जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, सबसे बढ़िया है जैविक खाद का, किसान साथियों ने किया भी है। जैसे जंतर है, जट्रोफा जिसको बोलते हैं, वो खेत में लगाया है। हरी खाद की अगर हम बात करें, मूंग है। अब मूंग में क्या होता है, किसान साथी खेत में लगा देते हैं, दो तीन जो तुड़ाई है उस पर कर लेते हैं, घर में पूरा साल के लिए दाल भी होगी और खेत में जो हमारी आने वाली फसल है उनके लिए हमें खाद भी मिल जाता है।
0: खाद भी मिल जाता है और पोषक तत्व भी हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं, प्रोटीन जैसी चीजें।
1: उनकी जो जड़ें हैं उसमें वो गांठें होती हैं जो फास्फोरस हमारे खेत को पूरा साल देती रहती है।
0: तो इस तरह की चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैविक खाद है। और हमारे पशुओं से जो हमें वो जो मलमूत्र त्यागते हैं उसकी जो खाद बनती है, गोबर की अगर हम बात करें तो वो भी हमारी, क्योंकि ज्यादातर जो किसान, हमारे जो किसान होते हैं पशुपालक होते हैं।
1: देखिए, खेती और किसानी दोनों एक ऐसी चीज है, इसके साथ साथ मतलब जो पशुधन है हमारा, पूरक है एक दूसरे के। जैसे बड़े बूढ़े हैं हमारे, कहते थे कि भाई खेती अगर करनी है और आपके पास अगर पशुधन नहीं है तो उसमें आपको खेत में फायदा नहीं मिल सकता, आपको लॉस ही लॉस होगा। तो इसीलिए उन लोगों का ये होता है, घर में चार पशु हैं जी, उन चार पशु मुझे रखने हैं खेत में अपना काम करने के लिए। उनमें उनका जो मलमूत्र है वो हम खेत, एक पहले गड्ढा बनाते थे, गड्ढे में डालते थे। आज के टाइम तो क्या है, कच्चा अपना जो भी गोबर है वो निकला है उसको एक ऊंचे स्थान पर डाल दें या फिर थोड़ा सा जब वो गल सड़ जाए खेत में इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हमारी उर्वरा शक्ति है जमीन की उसको तो खराब वो कर रहे हैं। और जब तक वो खाद जो हमारा है बिल्कुल पका हुआ तैयार नहीं होगा तो तब तक फिर वो खेत में देने के लायक ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो इसीलिए ध्यान रखें कि भाई हो सके तो अपना गड्ढा खोद के ना उसमें डाल दें, एक साल छह महीने कम से कम लग जाते हैं उसको तैयार होने में।
0: देखिए कितनी जरूरी बात हम लोग अपने किसानों से साझा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम एक और चीज अपने किसानों को बताना चाहते हैं विनोद, वो ये कि अभी आने वाले जून यानी 14 जून, और किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि 14 जून सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश में विदिशा के खेरखेड़ी बेरखेड़ी जट्टू में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जाएंगी, जैसे कि खेत बचाओ कार्यक्रम होगा, मशीनों का प्रदर्शन, कौन कौन सी नई मशीनें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर भी बातचीत होगी और बहुत कुछ होगा किसानों के लिए। और साथ ही साथ खेत बचाओ वाले कार्यक्रम में भी शामिल हो, और किसान भाइयों से यही आग्रह करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में 14 जून सुबह 10 बजे बेरखेड़ी जट्टू में जरूर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए ताकि उसका लाभ ले सके जो भी कार्यक्रम उस दिन होगा।
1: और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज के टाइम जितने भी हमारे किसान साथी हैं जो बल्कि हमारे श्रोता हैं जो खेती कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल, और इसी कार्यक्रम की आधारशिला, जैसा कि मैंने बताया कि माननीय हमारे जो मंत्री हैं वो इसकी आधारशिला रखेंगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा उसके कुछ अंश सुनते हैं उनके जरिए।
2: प्रिय किसान बहनों और भाइयों, 14 जून विदिशा संसदीय क्षेत्र की खेती और किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। 14 जून को सवेरे 10 बजे बेरखेड़ी जेतू में, विदिशा के पास है, कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया

0: जाएगा। यह कृषि विज्ञान केंद्र भारत का एक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र होगा, लेकिन कार्यक्रम केवल कृषि विज्ञान केंद्र का नहीं होगा। हमने विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास, खातेगांव, कन्नौज का जो कृषि रोड मैप बनाया है, वैज्ञानिक कृषि रोड मैप, उसको क्रियान्वित करना भी हम प्रारंभ करेंगे। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भी किसानों को अनेकों महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। नकली खाद को कैसे पहचाने, कैसे बचें, आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से फसलों की बुआई, आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन, मशीनों का प्रदर्शन, प्रदर्शनी, स्टॉल, सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी खेती को समयानुकूल बनाने के लिए आप 14 जून को इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। धन्यवाद।
1: बिल्कुल धन्यवाद, और जरूर पधारेंगे हमारे किसान भाई बहन 14 जून सुबह 10 बजे, और ज्यादा संख्या में आएंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी, ज्यादातर जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और विनोद, जैसा कि हमने बताया कि एक मॉडल के रूप में उभरेगा हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि बहुत नई नई चीजें आने वाली हैं, और मशीनों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, नकली खाद से आप कैसे बच सकते हैं, बहुत सारी जानकारी दी जाएगी।
2: डिजिटलाइजेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तकनीक नई नई, आपको जैसे हमारे केवीके होते हैं नॉर्मली, तो उसके मुकाबले मतलब एक आपको मॉडल देखने को मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए इस पर तो बातचीत हो गई। अब हम अपने जो गेस्ट हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं, पहले विषय से अवगत करा दें अपने किसानों को कि प्याज का समुचित भंडारण और खरीफ प्याज की तैयारी कैसे की जाए, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार।
3: थैंक यू मैम, नमस्कार आपको भी।
1: जी सर, निदेशक हैं NHRDF यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन नई दिल्ली में। सर, प्याज के समुचित भंडारण की बात करें तो ये जो समय है, भंडारण की विधियां क्या हैं ये भी हम जानेंगे, कैसे करें इस पर आप पहले बताइए सर।
3: हम अपने प्याज उत्पादक किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि प्याज भंडारण काफी लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोग करने जा रहे होंगे।
1: जी,
3: प्याज को भंडारण के पहले ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। ग्रेडिंग करेंगे तो उससे जो क्वालिटी है काफी इम्प्रूव होगा, कुछ बीमारियां लगी रहेंगी उसको हम बाहर कर देंगे उन कंदों को। कुछ जो आपके कंद होते हैं उसमें कटिंग हो जाती है, कुछ बीमारी लग जाती है, छिलके उतर जाते हैं, तो उनको हमें भंडारण में नहीं रखना चाहिए। और भंडारण में रखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भंडारण की कैपेसिटी बने उसका 75% भाग ही भरा जाए, ऊपर का भाग ना भरा जाए। उससे फायदा क्या होगा कि एरेशन के लिए उनको, एरेशन के लिए जो टेम्परेचर वगैरह आता है उसको मेंटेन करने के लिए बेटर रहेगा। इवन हमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग भी बीच में करना पड़ता है, उसके लिए काफी जरूरी है। और हमें ध्यान ये रखना है कि जब बारिश हो, इस समय तापक्रम काफी अधिक जा रहा है, तो हमारे प्याज को क्यूरिंग करके रखना जरूरी है। अगर आपने रख दिया है तो उस पर टेम्परेचर नहीं लगना चाहिए, और बारिश की पानी से चाहे किसी भी प्रकार के पानी से हमें बचाना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसमें सड़ा होगा, हम रोक नहीं सकते हैं। चौथा चीज ये कि हमारे किसान भाइयों को, अगर जिन लोगों को भंडारण बना रखा है, वहां नीचे भंडारण के आसपास में पानी लगने के लिए बिल्कुल बचाव होना चाहिए। अगर पानी लगता है तो वहां से गैस निकलेगा, ठंडे पानी निकलेंगे, ठंडे गर्म पानी निकलेगा, तो उससे प्याज को नुकसान हो सकता है। छठा चीज हमें किसान भाई को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपने प्याज रख दिया उसमें, जैसे अभी तो जून महीना चल रहा, लोगों ने मई तक रख लिया है, अगर आपको भंडारण गृह के पास जाते हैं अगर स्मेल आती है कि प्याज सड़ रहा है, तो उसकी इमीडिएट आपको सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाना चाहिए, अन्यथा जो भी प्याज आपका अच्छा उसमें सड़ने गड़ने की संभावना बढ़ जाती है। सातवां बात उसमें हमें ध्यान यह हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए कि जो प्याज आपने रखा है वह ग्रेडिंग करके रखा हुआ है आपने, उसमें एरेशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर एरेशन नहीं होता है तो आपका नुकसान हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह कि जो बारिश होती है तो बारिश के समय आपका जो भंडार गृह है, तिरपाल या टट्टी या कुछ जूट का लगा करके, ताकि पानी की बौछार हमारे वहां तक न पहुंचने चाहे, क्योंकि इस समय टेम्परेचर, बारिश भी आ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उसमें तो प्याज में सड़ाव काफी होगा। इसलिए होगा कि माइक्रोब्स को काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जो फंगस वगैरह होते हैं। तो इन सब कारणों से अगर हमारे किसान भाई इस बातों को ध्यान में रखते हैं तो अपने भंडार गृह में जो प्याज रखा है उसको बचा सकते हैं। भंडार गृह में प्याज रखने के पहले सॉर्टिंग ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। छोटे कंद वाले, बड़े कंद वाले, किसी को मार्केट में बेचना है, किसी को सीड प्रोडक्शन रखना है, तो भंडार गृह में अगर इस तरह सब रखेंगे तो कम पैसे में हम अच्छा से अच्छा अनुभव कमा सकते हैं। और किसान भाई इन बातों का ध्यान रखते हैं, स्पेशली दिल्ली में हो गया, कुंदेवाड़ी।

0: हो गया, लोग काफी किसान वहां पर रखते हैं, इवन सोनीपत पानीपत करनाल वगैरह में लोग काफी रखते हैं नॉर्थ इंडिया में। बाकी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान इसके लिए काफी माना जाता है, वहां पे अच्छे अच्छे भंडार गृह हैं। और एक चीज ये बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि एनएचआरडीएफ ने एक नए भंडार गृह का इन्वेस्ट किया है, उसमें जो लॉसेज है 10 से 12% तक आता है, जबकि समान रूप से जो किसान भाई रखते हैं वह 30 से 35% तक लॉसेज जाता है, और उनको जो न्यू भंडार गृह जो एनएचआरडीएफ ने निकाला उसको स्टोरेज कर सकते हैं और वो 6 महीने के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, लॉसेज भी काफी कम आता है। तो हमारे किसान भाइयों को जो नजदीक के सेंटर है वहां पर उसको जाकर बात करना चाहिए और उसको लगाना चाहिए, लागत कम है फायदा आधा है अधिक है, और आपका कोई भी फिक्स जो स्टोरेज है कोई भी घर है आपका वो हमेशा 24 आवर्स के लिए तो रहेगा लेकिन साल भर के लिए वो बेस्ट नहीं रहेगा।
1: और सर एक चीज और भी है, जैसे अभी जो हमारे किसान साथी है जो अभी टाटी लगा देते हैं, हम कहते हैं कि भाई बाहर इनको लगाओ जितना लू उसमें लगती है वो ठीक रहेगा, फिर जब उसका छिलका विलका उनको बीच बीच में उतारना है तो निकाल के उसी में डाल देते हैं, तो अभी जैसे बारिश का टाइम आ रहा है तो उसमें क्या मतलब उसमें तिरपाल वगैरह लगाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी?
0: नहीं, तिरपाल हमें उस समय लगाना है जब आपको लगता है कि बारिश होने वाली है और बारिश की पानी के बूंदे कभी हवा के बौछार जाता है उससे नुकसान होता है, इस समय तिरपाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। बट बारिश होता है, बारिश के पानी से हमारे प्याज को बचाना बहुत जरूरी है किसी भी प्रकार के पानी से, अन्यथा मॉइस्चर उसमें जाएगा, ह्यूमिडिटी क्रिएट होगा, फिर फंगस उसमें एक्टिव होंगे और उसमें सड़ाव काफी जल्दी से होगा।
2: ये तो हमारे भंडारण से पहले सर क्या प्याज को ड्राई करना या सुखाना या धूप में कैसे उसकी सॉर्टिंग करें? अच्छा, जो विधि है वो आप बता
0: वो हम विधि बता रहे हैं आपको मैम। जब हम क्रॉप की हार्वेस्ट करते हैं, प्याज की जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसको खेत में हम जो प्याज का कंद होता है प्याज के पत्तियों से उसको ढक देते हैं। ढकने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो प्याज की पत्तियां होती है पूरी तरीके से सूख जाएं और जो प्याज की पत्तियों में जो न्यूट्रिशन होता है उस बल्ब में आ जाए, उस समय कलर जो होता है कलर भी काफी अच्छा डेवलप हो जाता है, प्याज की कंदे जो होती है जो उसकी उस शाखा जिसको सिल्क बोलते हैं हम लोग वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है ताकि रबरिंग से उसको छिलकों काटने की संभावना नहीं रहती जिसको हम लोग क्यूरिंग बोलते हैं। क्यूरिंग होने के बाद में हम नेक कटिंग बोलते हैं, गर्दन काटना बोलते हैं, तो गर्दन काटने का मतलब जैसे आपने प्याज देखा होगा प्याज का जो बल्ब होता है उससे 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के पत्ती को हम काट देते हैं, उसको बोलते हैं गर्दन काटना नेक कटिंग। उसका फायदा यह है कि धीरे धीरे पत्तियां सूख के ऑटोमेटिक गिर जाती है जो अक्टूबर नवंबर में देखते होंगे
1: जी,
0: और उसमें किसी प्रकार का फंगस का अटैक होने की संभावना नहीं रहती है क्योंकि ढका रहता है। अगर आप उसके गर्दन के पास से काट देंगे खुला रहेगा, फंगस जाएगा मॉइस्चर जाएगा उसमें खराब होने की संभावना रहती है, एक ब्लैक मोल्ड बीमारी आती है, कभी कभी प्याज को आप काटते हैं तो काला काला सा दिखता है। चौथा चीज, कभी कभी हम लोग प्याज को काटते भी हैं तो 2-3 प्याज एक में दिखता है, तो उस तरह के प्याज को हमें भंडारण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका मार्केट में डिमांड कम है, सड़ाव भी अधिक होता है और बीमारियां भी उसमें अधिक लगती हैं।
1: और सर कुछ प्याज इस तरीके से जैसे बीच में हम देखते हैं तो सूखी एक डंडी सी अंदर से निकलती है
0: जी
2: आजकल, जो
1: वो
2: बहुत
1: क्या समस्या है और उसको कैसे बचाने, मतलब लोकल भाषा में तो उसको दड़ू बोल देते हैं।
0: दड़ू बोल देते अच्छी बात है, सिंपल सही है कि आपने प्याज का खेत कभी देखने का मौका मिला होगा या मिलेगा,
1: देखते हैं सर
0: देखते हैं तो उसमें जब प्याज में जो ऊपर कभी फूल बन जाता है तो जो फूल बन जाता है, फूल तो आपके प्याज में आता नहीं है, तो जो प्याज आप काटते हैं जो लकड़ियां से दिखती है उसी का स्टॉक का होता है,
1: मतलब जो जिसके ऊपर फूल आ गया है,
0: फूल आ गया, तो यही हमने बोला कि इस तरह के बल्ब को हमें अलग कर देना चाहिए जिसमें फूल बनता है। कभी कभी आपने देखा एक प्याज कभी कभी फट जाता है, कभी कभी बाहर से भी दिखाई नहीं देता, हम लोग तो पकड़ लेते हैं कि इसमें 2 फलका है 3 फलका है, मतलब डबल बल्ब है ट्रिपल बल्ब है, वो भी स्टोरेज के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि बीमारियां लगती हैं, मार्केट का प्रेफरेंस भी नहीं होता है और सड़न गलन उसमें अधिक होता है।
1: और सर अभी जैसे आपने बताया कि भाई फूल आ जाता है, मान लो खेत में इस तरीके के 10-15 या 20-25 पौधे आ गए जिनके ऊपर फ्लावरिंग ऊपर आ गई है, तो क्या उनको हम बीज के लिए छोड़ सकते हैं आगे उन्हीं कंदों को?
0: बीज के लिए आप छोड़ सकते हैं लेकिन जो बीज का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा। आप जान सकते हैं किसान बीज निकाल कर रख सकता है लेकिन नेक्स्ट ईयर प्रोडक्टिविटी में आपको इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई फायदा विशेष नहीं होगा।
1: अगर बनाएंगे तो वो उस तरीके से
0: नहीं आएगा, पता हम जब किसान देखिए बीज तो आप अपना बना लेंगे, खाद पानी सब मेहनत करना आपको, अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा सर्टिफाइड बीज भी यूज करना चाहिए, क्वालिटी का बीज यूज करना चाहिए।
2: बिल्कुल सर, और कई बार सर प्याज जब सूखी हुई प्याज होती है भंडारण की अगर हम बात करें तो काले रंग की जैसे ऊपर की उसकी लेयर हटी और अंदर पूरा काली काली प्याज हो रही है, तो वो भी पहचानना बहुत जरूरी होता है उसका, अगर ऐसे में बिना चेक किए भंडारण हो गया तो क्या वो सभी प्याज को खराब कर सकती है?
0: उस वो एक प्रकार का फंगस है जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक मॉल्ड बोलते हैं।

0: बोलते हैं, काला धब्बा बोलते हैं उसको, ये फंगस के कारण होता है। वो उस स्थिति में होता है जब आपने प्याज का हार्वेस्ट किया है, हार्वेस्ट करते समय आपके खेत में मॉइस्चर अधिक हो, नमी अधिक हो, या प्याज को आपने भी कटिंग किया और पानी उसमें बारिश हो जाता है और बारिश से भींग जाता है, तो इस तरह की बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। अभी क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्रालय के लेवल से प्याज की एनालिसिस की जा रही है। एनालिसिस करने में यह है कि खरीफ की जो प्याज है, बारिश कम होने की संभावना है, उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, ताकि अगर खरीफ का उत्पादन कम भी होता है तो हम स्टोरेज अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो आपको पता होगा मैम, 60 से 70% जो प्याज हम खाते हैं, अभी तक तो रबी का प्याज हार्वेस्ट किया हमने, ये प्याज हमको अक्टूबर नवंबर तक खाने को मिलेगा। अगर किसी कारण से खरीफ का प्याज का उत्पादन सही नहीं होता, जो कि 20 से 25% तक होता है, तो अक्टूबर नवंबर में जाकर के प्याज हमारे पॉकेट पे काफी चोट करता है।
1: जो बार बार हम सुनते हैं, कई बार उस टाइम पे बहुत
0: महंगी हो जाती है। जब महंगी हो जाती है, हमारे किसान भाई को तो अच्छा पैसा मिलता है, पर उपभोक्ताओं को पे करना पड़ता है।
2: बिल्कुल।
0: तो इस समय भारत सरकार ये सोच रही है कि जो इन लीनो के इफेक्ट से बारिश कम होने वाली है, प्याज की उपलब्धता को कैसे बरकरार रखा जाए, ताकि देश में हमारे उपभोक्ताओं को प्याज बराबर मिलता रहे, किसान भाइयों को भी अच्छा पैसा मिलता रहे। तो इस पे भी भारत सरकार काम कर रही है। हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, भारत सरकार को, कृषि मंत्रालय को दे रहे हैं टाइम टू टाइम।
2: बिल्कुल, इन्फ्लेशन तो सर आ ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंट्रोल पहले से ही करें तो बहुत फर्क पड़ जाता है हमारे किसान। तो खरीफ की जो प्याज की तैयारी करेंगे तो उस पर भी आपसे जानना चाह रहे थे कि कैसे तैयारी की जाए।
0: मैम देखिए, खरीफ की प्याज तैयार करने के लिए सबसे पाल ये चीज है कि प्रजाति का चुनाव।
2: हाँ, किसमें,
1: कौन सी किस्म हमने
0: और कहाँ से लेना है प्रजातियां। जैसे आपने बोला कि हम खेत में अपने बीज बना लेते हैं, हमने बिल्कुल बोला कि नहीं बनाना चाहिए। तो प्रजातियां खरीफ के लिए बहुत कम प्रजातियां हैं, और आपको इंडिया में जितना भी प्याज उगता है उसका 25 से 30% खरीफ सीजन में होता है, क्योंकि खरीफ सीजन में प्याज उगाना बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तरी भारत में तो होते हैं क्योंकि बारिश होती है, नर्सरी नहीं बन पाता है, जब लगाएंगे बारिश हो जाती है, नर्सरी बह जाता है, प्याज क्रॉप होता था पानी भर जाता था, तो आपका बल्ब ब्रीड नहीं हो पाता, तो काफी चैलेंजेस है। तो सबसे पहले हमें किसान को खरीफ प्याज उत्पादन के लिए प्याज की प्रजाति चुनना है, जिसमें एग्रीफाउंड डार्क कट प्रजाति है, NSRDF K883 जिसको 883 के नाम से प्रसिद्ध है, काफी अच्छी प्रजाति है, जो कि 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है। यह सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड NSRDF के सभी काउंटर पे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सभी स्टेट पे अवेलेबल है। आप हमारे किसान भाई जहां भी सुन रहे हैं, आप इंदौर में जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में, अगर राजस्थान में है तो आप कोटा से संपर्क कर सकते हैं, दिल्ली में है तो आप KVK उज्जवा वहां से संपर्क कर सकते हैं, अगर आप हरियाणा में तो करनाल से संपर्क कर सकते हैं, अगर आप पंजाब में तो भटिंडा से संपर्क कर सकते हैं, बिहार में तो पटना से संपर्क कर सकते हैं, यूपी में तो देवरिया से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूसा केंद्र है, यहां पर भी प्याज की अच्छी प्रजाति मिल जाती है, पूसा रेड है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में वहां भी मिल जाती है। तो अच्छी प्रजातियों का अगर हम चुनाव करेंगे तो निश्चित ही आपका उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि प्रमाणीकरण तकनीक से, जो उत्पादन की प्रौद्योगिकी की तकनीक है, उस तरह से हम लोगों को प्याज का बीज उत्पादन करते हैं। दूसरा चीज, खेत का चुनाव करना, नर्सरी कहाँ पे उगाना है। हमेशा बारिश के समय में खेत का चुनाव करना बहुत जरूरी है। खेत हमेशा ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जहां पे पानी का लगाव ना हो,
1: पानी ना भराव,
0: पानी
1: ना भराव भी ना, और वो जो पानी अगर बारिश हो भी गई है तो थोड़े टाइम के बाद वो पानी उतर के दूसरी जगह।
0: समान रूप से जो धरती होता है या जिसको समतल बोलते हैं, वहां से 6 से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए, खेत बराबर करके उसमें प्याज लाइन में प्याज के बीज को डालना चाहिए। डालने के बाद आपके पास बर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, सूखी हुई उसको भुरभुरा करके उसको ढक देना चाहिए। और इस समय तो ठीक है, आपको लगता है कि बारिश आने की संभावना है तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर कुछ खर पतवार रख दिया आपने, या कोई आपने वो रख दिया, कोई पॉलिथीन रख दिया, तो उस तरह से आप उनके बीज
1: मल्चिंग कर देनी है,
0: मल्चिंग कर देंगे तो प्याज का जो बीज है वो अपने स्थान पर रहेगा, बारिश के समय चाहे अधिक धूप के समय खराब नहीं होगा। और ये आपको 15 से 20 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है, और खरीफ मौसम में जब 45 से 50 दिन का पौधा तैयार हो जाए आपका, तो आपको मुख्य खेत में स्थानांतरण के लिए करना चाहिए।
1: तो कौन सा समय उचित है डॉक्टर साहब तैयारी करने का, कि भाई प्योद की तैयारी हम अभी कर दें, रोपाई कब करें?
0: बहुत ही उचित समय है, बहुत ही अच्छा अपना समय टॉपिक आज का चुना है। जून का फर्स्ट पखवाड़ा, प्रथम पखवाड़ा से लेकर के जून के सेकेंड पखवाड़ा तक प्याज नर्सरी लगाने का उचित समय है। इसमें लगाते हैं तो उसके 45 दिन बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब अगर आपने 1 जून को लगा रखा है तो उसको आप 15 जुलाई के बाद ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, मतलब 45 से 50 दिन का देना है। अगर अधिक होता है तो उत्पादन कम मिलेगा, अगर कम होता है 40 दिन पर करते हैं आप ट्रांसप्लांटिंग तो हमें

0: उसको मुख्य खेत में आप लगाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस जो दूरी रखना है, पौध से पौध रखना 10 से 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी रखना 15 से 15 सेंटीमीटर। और हमेशा हम लोग बोलते हैं उसको रेज बेड पे लगाना, मतलब उठी हुई क्यारी पे लगाएंगे तो प्याज आपका बच जाता है, क्योंकि बारिश के समय में प्याज में अगर पानी लग जाता है तो क्रॉप खराब हो जाता है, क्योंकि मेजर चुनौती है हमारे स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया को। जब पौधा आपका 25 से 30 दिन का हो जाता है
1: रोपाई के बाद
0: तो आप एक छोटा सा वीडिंग कर दें, वीडिंग करने के बाद उसमें खाद लगा दें। और हम खाद के बारे में बता दें आपको
1: जी,
0: नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सल्फर इसके लिए मुख्य खाद के रूप में देते हैं। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम हमें सल्फर देना होता है।
1: ये अभी डॉक्टर साहब जैसे बताया आपने 100 किलोग्राम अगर हमें नाइट्रोजन देना है, ये कितने क्षेत्र के लिए?
0: हम एक हेक्टेयर की बात कर रहे हैं सिफारिश,
1: मतलब ढाई किले के लिए, ढाई एकड़ के लिए,
0: ढाई एकड़ के लिए 2.47 बोलते हैं लेकिन ढाई एकड़ होगा,
1: ढाई एकड़।
0: तो इसमें जो नाइट्रोजन की जो 100 किलोग्राम मात्रा बोला हमने उसका 50% ले लीजिए, फास्फोरस पोटास की पूरी पूरी मात्रा, सल्फर की पूरी पूरी मात्रा खेत में पौध लगाने के पहले आप उसको डाल दीजिए। डालने के बाद पौध को रोप कर दीजिए, जो 50% आपके पास नाइट्रोजन बचा है उसको 30 दिन पर निकाई गुडाई करने के बाद डाल दीजिए। फिर उसके बाद 45 से 50 दिन पे आप उसको डाल देंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छा रहेगा। हमें किसान भाइयों को यह ध्यान रखना है कि 50 मैक्सिमम 55 दिन बाद खरीफ के फसल में किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक नहीं देना है।
2: बिल्कुल सर। सर ये कॉलर हैं, हालांकि नंबर पता ही है, हमने अनाउंस किए या ना किए हो लेकिन हमारे कॉलर्स आ जाते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो, काफी देर होल्ड हो गया, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उनका जो प्रश्न था सर वो ये कह रहे हैं कि क्या हम अपने घर में जो गमले लगा रखे हैं इस समय प्याज लगा सकते हैं उसमें, और अगर लगानी है तो क्या तरीका है, विधि बता दीजिए सर। हालांकि सब बता ही रहे हैं आप, फिर
0: देखिए ये जो घर में लगाने की जो प्रथा है हम इसको काफी प्रमोट करना चाहते हैं और हाँ। उनको प्रशंसा भी करना चाहते हैं
2: जी।
0: कि किचन गार्डन के गृह वाटिका की बात करते हैं
1: जी।
0: अब ये कि घर में लहसुन उसका बीज उगाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आपको कहीं से पौध मिल जाता है, अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली का आप हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र में पौध लग सकते हैं, हमारा जनकपुरी ऑफिस में आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पौध दिलवा सकते हैं। घर के गमलों में हम भी अपने घर पे करते हैं, आप भी कर सकते हैं, और कोई विशेष नहीं। जैसे आप गेंदा का फूल अपने पौधों में लगाते हैं इस तरह से इसको भी लगा दीजिए, बस ये रखना कि पानी उसमें न लगे, तो घर पे आप इसको उगा सकते हैं। और जो गमले का जो परिक्षेत्र होता है, हम लोग बोलते हैं 8 से 10 इंच का जो व्यास होता है, उसमें अत्यधिक 4 से 5 आप पौध लगा सकते हैं ताकि डिस्टेंस पूरा मेंटेन हो जाए और इस तरह से आपको घर पे उगाया हुआ प्याज भी मिल जाए और प्याज की पत्ती के पकौड़े भी बना के खा सके।
1: बिल्कुल सर। थोड़ा सा अगर बिल्कुल सघन प्याज भी लगाए तो हरी प्याज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें बल्ब ज्यादा नहीं चाहिए तो।
0: देखिए हम कर सकते हैं लेकिन डिस्टेंस 10 से 12 कोई विशेष डिस्टेंस नहीं है, घना करेंगे, घना उससे उगाते हैं। आपको पता होगा कि एक बल्ब टेक्नोलॉजी है, ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है, अलवर राजस्थान में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो खरीफ प्रजातियां हैं उसके प्याज घना नर्सरी में लगाकर उगाते हैं और उसका जो कंद बनाते हैं 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है, जहां पर नर्सरी नहीं बन पाती उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग बल्बलेट टेक्नोलॉजी। अपने अच्छा याद दिलाया, तो नर्सरी उगाने में जो प्रॉब्लम आती है वह नहीं आएगा। और स्पेशली जो किचन गार्डन किट लोग करना चाहता है उनके लिए एक समझिए रामबाण है, कहीं से पौध लेके आया, बल्ब लेके आया, आपने उसको लगा दिया और वो आपको 30 से 40 दिन में पकौड़े के लिए तैयार हो जाता है।
2: बिल्कुल सर, पकौड़े की ही बात करिए और पकौड़े से याद आया कि बस मानसून आने ही वाला है, कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी इस समय गर्मी बहुत है तो क्यों ना विनोद हम एक गीत सुने जिसमें, क्योंकि गर्मी में मेरा भी मन घबराता है और हमारे जो कलाकार है उनका भी घबरा रहा है।
3: गर्मी से

0: बिल्कुल गर्मी में जिया घबराए रे, ये गीत जो लोकगीत है अशोक कुमार कलाकार। और इसी के साथ हम सर से आखिर में जानना चाहते हैं कि सर इम्पोर्टेंट चीज जो आप चाहते हैं कि किसानों को जाने से पहले बता सके।
1: देखिए किसान भाइयों को काफी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, समान रूप से बताना चाहूंगा कि बरसात के समय में खरपतवार का प्रकोप काफी होता है, नर्सरी उगाने में भी होता है, आपको मुख्य फसल में भी होता है।
2: बिल्कुल,
1: तो हमें यह ध्यान रखना है कि नर्सरी में या जो मुख्य फसल में प्याज लगाना है वह खरपतवार से रहित हो, मतलब खरपतवार नहीं हो। अगर बायचांस खरपतवार उसमें आ भी जाता है तो 30 दिन पे जो मुख्य फसल की बात है ऑक्जी फ्लोरोफोन एक आता है उसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के मिला के अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो जो खरपतवार हैं वो काफी कम हो जाएंगे और 40 से 45 दिन पे एक आप हाथ से वीडिंग करवा दें, खरपतवार निकलवा दें तो प्याज की फसल में खरपतवार काफी कम हो जाएगा और आपका बल्ब का उत्पादन आपके बनने के अनुसार हो जाएगा।
2: और डॉक्टर साहब एक चीज और भी है, अब इतना अगर हम टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं और दूरी का भी अगर हमने ध्यान रखा कि भाई 10 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर का हमें यहाँ ध्यान रखना है, तो क्या कोई ऐसे यंत्र हैं किसान साथी?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, यंत्र बहुत हैं, काफी रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन यंत्र हमें वह चाहिए जो कि किसानों के लिए हितकर हो।
2: हितकर हो, इसीलिए
1: हितकर हो मतलब व्यवसायी को कम पैसे में, अगर लेबर लगाने में अगर 10,000 रुपए लग रहा है तो मशीन से 5,000 में काम हो जाए और पौधों का उत्पादन अच्छा हो तो हम किसान भाई को प्रीफर करेंगे। आज के तारीख में ऐसा कोई नहीं है क्योंकि हमारे भारत में जो जोत है काफी छोटा सा है और जितना मशीनीकरण है सब बहुत बड़े बड़े फील्ड के लिए तो उतना उपयोगी नहीं हो पा रहा, बट एज ए वैज्ञानिक हम लोग काम करें और जल्दी ही हम लोग किसान भाइयों को यंत्र देने का प्रयास करें।
0: जी बिल्कुल सर, आज के टॉपिक पर सर डॉक्टर पीके गुप्ता जी हमारे साथ थे, मौजूद निदेशक NHRDF से, और बहुत अच्छी से जानकारी दी प्याज के बारे में। सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।
1: धन्यवाद मैं आपको भी, अपने कृषक बंधु को जिन्होंने हम लोग की चर्चाएं सुनी और लाभ उठाएंगे।
0: जी सर, और इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पाराशर और संयोजन किया शिवनंदन लाल जी ने, साथ ही मैं सुषमा
2: और मेरे विनोद।
0: लेते हैं इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति कल मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ उन्होंने ये याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के झंडे वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि समय हो चला है 3:11 और ठीक 15 सेकंड, और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम मन भावन का, जिसे लेकर आई हूं मैं आपकी रेडियो सखी रेणुका। जी हां, आपकी पसंदीदार गाने तो मैं जरूर चलाऊंगी आपकी फरमाइश पर उससे पहले जो है पहला गाना आपको मेरी पसंद का सुनना पड़ेगा। और आपको फरमाइश करने के लिए क्या करना है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे लिसनर्स ने पहले ही हमें बहुत सारे संदेश भेजती हैं, जिन्हें मैं एक एक करके अभी पढ़ूंगी। और अगर आपको अपनी पसंद का गाना सुनना है या हमें संदेश भेजना है तो आपको बस करना इतना है कि व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज भेज दीजिए, आपका नाम और आपके शहर का नाम और जो गाना आप सुनना चाहेंगे, और नंबर है 9868868753। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9868868753। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि मैसेजेस तो अभी से आने लग गए हैं, तो फटाफट से जो है हम गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी फरमाइश भी सुना देंगे। तो पहला गाना आशा ताई की आवाज में और फिल्म है मेरे जीवन साथी।

गले तो हम लगाएंगे जी आपको, आप हमारे प्रिय जो ठहरे। और मैं जैसा कि देख रही हूँ कि कई सारे श्रोताओं ने हमें कई सारे मैसेजेस भेजे हैं, और जिनमें से जो पहला मैसेज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है राजस्थान से। हमें नाम नहीं लिखा है पर बोला है कि किसी भी गीत में शामिल कर दीजिएगा। चलिए जी, नाम के बिना ही शामिल कर दिया है आपको। और हमें लिखा है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये लिखते हैं छत्तीसगढ़ से। और हमें अगला मैसेज भेजा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार जी, इन्होंने भी हमें भेजा है। और मोहल्ला हलवियान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरा रानी, हीना वारसी, इन सब ने हमें मैसेज भेजा है। और अगला मैसेज जो है वो आया है जी हमें ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद मराठवाड़ा से, और ये मैसेज लिखा है सुधाकर राजे जादव, प्रशांत, संचित, प्रदमेश और कुमारी प्रणाली, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना, इन सभी ने हमें मैसेज भेजा है। और ये जो मैसेज मैं पढ़ रही हूँ ये हमें भेजा है जिला खारगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, शेख मूसा भाईजा, भाईजा राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ने। आप सभी के प्यार भरे इन मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमें भाई थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है और मैं सारे मैसेजेस तो नहीं पढ़ सकती और सभी का नाम नहीं ले सकती, पर हाँ मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के मैसेजेस पढ़ूं और आपकी सभी की फरमाइश जो है वो मैं पूरी करूं। तो अगली जो फरमाइश है वो हमें भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमल रानी, गीतिका और भानु ने, और ये सुनना चाहते हैं हाफ टिकट फिल्म का गाना जिसे गाया है किशोर दा ने। तो चलिए फटाफट से सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बैना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे।

0: गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ
2: यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन रेडियो सखी रेणुका के साथ। और जैसा कि मैं देख सकती हूं और जैसा कि मैंने कहा भी कि हमारे श्रोता लगातार हमें अपना प्यार अपने मैसेजेस के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो अगला जो मैसेज है वो हमें भेजा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना। और अगला मैसेज जो है ये आया है हमें, आदाब कह रहे हैं प्रोग्राम मनभावन फिल्म, और ये जो है हमें लिखा है बिलराम से इरशाद अहमद, मरियम जैनब इन्होंने। और अगला जो मैसेज है वो हमें आया है, कहां से आया है जरा, हाँ ये रहा, मुझे मिल गया, ये लिखते हैं जी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। बड़ी दूर दूर से हमें जो है अपना प्यार भेजा जा रहा है और इसी प्यार के लिए तो हम तरसते रहते हैं, तो अपना प्यार बरसाते रहिए, मैसेजेस भेजते रहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो है सभी श्रोताओं के मैसेजेस जो हैं शामिल करें, उनका नाम शामिल करें, उनकी फरमाइश जो है हम बजाएं। अगला जो मैसेज है वो आया है रघुनाथपुरा जिलाश्री गंगानगर राजस्थान से, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी ये हमें लिखते हैं। और ये मैसेज है जी गुन्नौर से आदल कमर तस्दीक, और ये शुक्रिया लिखते हैं गानों के लिए, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। और ये जो मैसेज है ये हमें भेजा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद चाहत, और ये कह रहे हैं कि हमें कोई भी गीत सुना दीजिए। जी हाँ जरूर, हम आपको गीत सुनाने के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पर। ये हमें लिखा है अगला मैसेज हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपी भाटिया, और ये लिखते हैं हमें जमशेदपुर से, थैंक यू सो मच। एक बार मैं फिर से आपको नंबर बता देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ना, तो जो भी श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको भी तो पता होना चाहिए। तो नंबर है हमारा व्हाट्सएप का 9868867 53, जिस पर आप हमें जो है मैसेज भेज सकते हैं और अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी फरमाइश या मैसेज हमें जरूर भेजिएगा। अगला जो गीत है वो है जी वो फिल्म है, फिल्म का नाम अभी मैं आपको बता

देती हूँ मैं, तब तक आपको सिंगर बता देती हूँ कौन है, तो शायद आप समझ ही जाएं कि कौन है। सिंगर जो है वो है मोहम्मद रफी साहब, और इनकी आवाज की तो क्या ही मैं तारीफ करूं। फिल्म है हमारा झुक गया आसमान, और इसकी फरमाइश हमें महाराष्ट्र से आई थी। ये थे जी विजय जी और आरती ओमकार, इन्होंने जो है इसकी फरमाइश की थी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
6: हर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है मन भावन आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। और कार्यक्रम में हमें कई सारे श्रोताओं ने कई सारे ढेर सारे मैसेजेस भेजे हैं, जैसे कि जो अगला मैसेज है वो है छोटी बलिया मुंबई करजत से, अहमद भाई फूलवाले, दुखना सफद, इमरान अहमद कापसेड़ा बाड नई दिल्ली से, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया और आशु अहमद ये हमें भेजते हैं। मेरठ से हमें मैसेज भेजा है, नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, बस फरमाइश भेज दी। अपना तो नाम लिखते तभी तो पता चलता कि आप ये जो प्यार इतना भेज रहे हैं वो कहाँ से भेज रहे हैं और कौन भेज रहा है। ये जो अगला मैसेज है ये है जी गणेशपुर उत्तर प्रदेश से, फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, फराज शेख, गुल फराज शेख, बेबी मुस्कान ये हमें भेजते हैं मैसेज अपना प्यार। और अगला जो मैसेज है ये है प्रकाश गोगिया दिल्ली से, ये हमें नमस्कार भेज रहे हैं अपना, नमस्कार जी आपको भी। और अगला जो मैसेज है ये है न्यू दिल्ली से गरिमा शकुंतला यादव और

और ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं अपने मैसेजेस के द्वारा, और आप भी जो है अपना प्यार भेजते रहिए। नंबर मैंने आपको बता ही दिया था, 9868868753, इस पर आप अपनी फरमाइश अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं। और निधि कपूर सेक्टर 7 गुरुग्राम से हमें मैसेज भेज रही हैं, और ये है नशरीन खान, वसीम खान और मुबीरा खान तावर गली खांडवा से ये हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये हमें आया है गुड़गांव से, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान ये हमें अपना प्यार मैसेजेस के थ्रू भेज रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार जो है पूरा ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। ये है इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा, तो खैर मैंने आपका नाम तो ले ही दिया है। और होली चौक उत्तम नगर से भी हमें सुना जा रहा है जयराम खारेवाल, सचिन खारेवाल, अमन खारेवाल, दीपांशु खारेवाल ये हमें जो है सुन रहे हैं अभी। और इन्हीं के साथ साथ जो है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ये हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। और अगली जो फरमाइश मैं पूरी करने जा रही हूं ये है यूपी से जो हमें मैसेज भेजा था फारूक फैजी, फरिया और फरहीन ने, इनकी फरमाइश थी फिल्म हाथी मेरे साथी से का गाना, तो लीजिए जी पेश है आपके लिए ये गीत।

मौसम का रुख तो आज काफी अच्छा है और इसीलिए ये गीत भी हमने आपके लिए जो है बजाया। और अगला जो मैसेज हमें भेजा है वो है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। और अगला जो मैसेज है ये हमें आया है, ये लिखते हैं आदाब आपको और एफएम गोल्ड परिवार को हमारा प्यार भरा आदाब। आदाब जी आपको भी छत्तीसगढ़ से चूड़ी लाइन से। ये लिखते हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, इनका मैसेज मैंने पहले भी पढ़ा था, आपको शामिल किया था। ये हैं जी मोहम्मद यूनस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री। ये हमें लिखते हैं छिपा कॉलोनी खांडवा से। और ये है अगला मैसेज हमें भेजा है जेजी कॉलोनी मदनपुर खादर दिल्ली से सहाना बेगम, इरशाद अहमद और अजहर ने। संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब को आदाब भेज रहे हैं। और ये हैं जी कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां। और अगला जो हमें मैसेज आया है ये है संदीप मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार जो है हम भेज रहे हैं गाने के थ्रू। जी हाँ, आप जानते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समय की थोड़ी सी पाबंदी है, वरना हम तो चाहते हैं

ये है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यंश मसूरी का। ये हमें अपना प्यार भेजते हैं मैसेज के थ्रू। अगला जो मैसेज है ये है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, ये हमें मुजफ्फरपुर बिहार से जो है अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये है ये कहाँ से आया है, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत पे हमें शामिल कर दीजिएगा। जरूर जी, मैंने कर दिया आपने कहा, और ये हो गया है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें लिख रहे हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, शुक्रिया आपका भी, और इतने सारे जो मैसेजेस आप भेज रहे हैं उसके लिए भी। और अगला जो हमें संदेश भेजा है ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ ने, ये हमें लिखते हैं गोराया जालंधर से। आपके इन मैसेजेस के लिए फिर से एक बार मैं बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर हमारा वही है 9868868753, जिस पर आप हमें भेज सकते हैं अपने मैसेज, जैसे अभी इन लोगों ने हमें भेजा। अगला जो मैसेज वो है सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूं ये है फरमाइश मोहम्मद खतीजा अशफाक आफरीन और मोहम्मद अल्ताफ की, जो रहते हैं छत्तीसगढ़ में। इन्होंने पत्थर के सनम फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नहीं, हमारा दिल पत्थर का नहीं है और आप ये काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे दिल में तो बस प्यार ही प्यार है और हमें भी पता है कि आपके दिल में भी हमारे लिए बस प्यार ही प्यार है और वही प्यार जो है आप हमें मैसेजेस के द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं। हमें चंडीगढ़ सिटी से बिमला और सतीश जी ने मैसेज भेजा है और हमें अल्तमाश समीना मुदस्सर फिरदो जमानगर खांडवा के बच्चे, इन्होंने भेजा है हमें अपना मैसेज। और कस्बा बलराम उत्तर प्रदेश से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब, ये भी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। और आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, मैं बात कर रही हूं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशाना और निमित आहूजा का, जो हमें मैसेज भेज रहे हैं। और मुझे पता है कि आप थोड़ा सा नाराज भी होंगे कि भाई हमारा मैसेज क्यों नहीं शामिल किया है, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि वक्त की जो पाबंदी है उसके सामने हम क्या ही करें। मधुबनी बिहार से हमें मोहम्मद मजहर

अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये हमें भेजा है बागपत से संजय ढिगिया, नमन ढिगिया इन्होंने। और जी हाँ, हमें आपके मैसेजेस मिल रहे हैं और मेरी जो कोशिश, जैसा कि मैंने कहा, सबको शामिल करने की है। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, ये हमें मैसेज कर रहे हैं अम्बाला हरियाणा से। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू दिल्ली से हमें मैसेज आया है कमलेश, मुकुल, सचिन

फारूक अली खान और मिस अब्बासी बुलंदशहर से जो है अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं और आपके इस प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विजय महोबिया, कविता महोबिया और पिंटू बाबू जो है हमें खंडवा से मैसेज भेज रहे हैं और अगला जो मैसेज है ये है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का और अगला जो मैसेज है ये है शास्त्री नगर वीर शहर से किसन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल साईराज सपकाल विशाल सपकाल और ये भी हमें जो है अपना प्यार भेज रहे हैं और आपके इस प्यार के लिए तो शुक्रिया मैं तहे दिल से कह ही चुकी हूं और जितनी बार कहूं उतना कम है। हमें अगला मैसेज लखनऊ उत्तर प्रदेश से भेजा है मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज राधा नामदेव ने और ये जो हमें मैसेज आया है ये नाम तो नहीं लिखा ये है शायद सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन मुखी ये हमें सोनीपत से जो है मैसेज कर रहे हैं। आपके इन मैसेजेस और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन ने मैसेज किया है कौशल्या देवांगन ने भी मैसेज भेजा है और हेमलता डिम्पल ये भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं अपना। और हमारा अगला जो मैसेज है ये है भोपालगढ़ राजस्थान से आया है धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार ने और कार्यक्रम का जो आखिरी गीत है वो है फिल्म कालीचरण से और इसकी फरमाइश हमें नांगलोई से आई थी जो थे राहुल ऋतिका और जगदीश। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ जो है हम अपना कार्यक्रम खत्म करने जा रहे हैं। और मुझे पता है कि मैं कई सारे श्रोताओं का मैसेजेस नहीं पढ़ पाई, उनका नाम नहीं शामिल कर पाई, उनकी फरमाइश नहीं चला पाई, और उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूंगी। पर क्या करूं, हमारे पास वक्त की पाबंदी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्यार तो हमारा वैसा ही रहता है, और आप भी हमें उतना ही प्यार करते रहेंगे, मुझे इस बात की पूरी गारंटी है। और मेरी बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें सुनते रहिए और अपने मैसेजेस भेजते रहिए, और ऐसे ही जो है प्यार बांटते रहिए।

दोस्तों कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और समाचार के बाद भी ढेर सारे कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं, वही नंबर तो सेम रहेगा 9868868753। जी हाँ, आप इस पे हमें बता सकते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। तो मुझे रहेगा आपके मैसेजेस का इंतजार और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का विरोध दर्ज कराने के लिए आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। कल एक और जहाज पर हमला किया गया जिस पर चालक दल के 22 सदस्य भारतीय थे। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पहले इन्हें लापता माना जा रहा था। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित की गई। इसने सीमा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और सीमा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री

आप सुन रहे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अगला गीत जो है ये हम सुनाने जा रहे हैं आपको फिल्म सीआईडी से, और इस गीत को गाया है आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी ने।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: along with 5 years of relevant post-qualification experience. The maximum age limit is 40 years. NCRTC, the implementing agency for the Regional Rapid Transit System, RRTS, is seeking professionals with expertise in marketing, branding, public relations, and corporate communications. Detailed eligibility conditions, application format, and important dates are available under the career section of the NCRTC website. Do refer to www.ncrtc.in. I repeat the website, it is www.ncrtc.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक सीधी भर्ती अभियान के तहत आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए आवेदन उप प्रबंधक सूचना सुरक्षा 4 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु मानव संसाधन प्रबंधन 3 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु प्रशासन 2 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.eximbankindia.in/careers। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक शैक्षणिक 1 पद, उपनिदेशक शैक्षणिक 1 पद, कार्यकारी शैक्षणिक 3 पद। तीनों पदों का नियुक्ति स्थान मुंबई रहेगा। अधिक जानकारी जैसे योग्यता, अनुभव, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आदि के लिए देखिए वेबसाइट www.icsi.edu/careers। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जून 2026। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत कॉलेज के विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in। वेबसाइट पर जाकर क्लिक कीजिए वर्क विद डीयू, उसके बाद जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ही कॉलेज की वेबसाइट www.ucms.ac.in पर करियर्स का अनुभाग देखें, इसमें आपको तमाम जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये विज्ञापन रोजगार समाचार के 6 से 12 जून 2026 के अंक में प्रकाशित हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबीनगर हैदराबाद आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, वित्तीय सलाहकार, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता विद्युत, नर्सिंग अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यकारी सहायक, निजी सहायक, तकनीशियन प्रयोगशाला और अपर श्रेणी लिपिक। तकनीशियन प्रयोगशाला के लिए 5 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जबकि अपर श्रेणी लिपिक के लिए 3 तथा सहायक लेखा अधिकारी और नर्सिंग अधीक्षक के लिए 2-2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। अन्य सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति ही उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता, आयु और पात्रता मानदंड आदि सभी शर्तों और नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबीनगर की वेबसाइट aims.bbnagar.edu.in। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में अध्यक्ष के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन फॉर्मेट, योग्यता शर्तें, अपेक्षित अर्हताएं, सेवा के लिए निबंधन और शर्तों जैसे अन्य ब्यौरों के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in अथवा www.mca.gov.in। ibbi.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आमंत्रित कर रहा है एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों के लिए आवेदन। पद संबंधी विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रारूप देखने के लिए देखिए वेबसाइट nidm.gov.in। आवेदन की अंतिम तिथि है 13 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज डेटलाइन में हम बात करेंगे बाल श्रम के विरुद्ध, जो विश्व दिवस मनाया जा रहा है उस पर। तो शुरुआत कार्यक्रम की करेंगे चार पंक्तियों के साथ, बचपन निश्चल मन कोमल तन, नटखट प्यारा सा बचपन, कभी होती मीठी शरारत, कभी रूट कर छिप जाना, कभी जिद पर अड़ जाना, कभी गले का हार बन जाना, कभी अपना प्यार दिखाना, कभी होती हंसी ठिठोली, बचपन की है हमजोली। और ये बचपन हर किसी को एक जैसा नसीब नहीं होता है। जो बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं उन्हें शिक्षा की ओर और उनके अल्हड़ बचपन की ओर लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें समर्पित है आज का दिन। तो डेडलाइन में विस्तार से बात करेंगे। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार जागृति, एंड टू आर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रम ऑन 100.1 FM एंड वी आर स्टार्टिंग ऑन सच अ ब्यूटिफुल नोट। वेल चिल्ड्रन, देयर इनोसेंस एंड दे डिजर्व ऑल ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। एंड with this hope we are beginning our program today, and as Jagriti told us in our dateline segment we'll talk about it, and we have all of the other stuff also lined up for you. We have reports, capsules, tributes, they will be there at the end of the program, and this is our way of telling you that stay with us till the next roughly 30 minutes. There is so much that we are gonna unfold. First we are beginning with the headlines.
1: Ji, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया है जिससे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और राष्ट्र निर्माण में और अधिक मजबूती से अपना योगदान दे सकें।
2: होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्स हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू प्रिपेयरनेस ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा इन न्यू दिल्ली।
1: सरकार ने उद्योगों को पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगाई।
2: United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman.
1: भारतीय निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन।
2: And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. So this is our segment Dateline India. Well, we told you today it's World Day Against Child Labour, and we welcome you to this special segment of our program as we commemorate the World Day Against Child Labour. This is observed globally every year on June 12th. And Jagriti, this international observance, sanctioned by the United Nations and coordinated by International Labour Organization, this actually serves as a powerful reminder, which we should get every year, that millions of children worldwide, they are still being denied one of their most basic rights, which is the right to enjoy a safe childhood. Also, second one, receive an education. Third, to pursue their dreams. So important. So listeners, join us as we examine the realities of child labor. We celebrate the progress that has already been made, and we'll confront the challenges that still remain. And we'll also discover how governments, communities, businesses and other individuals worldwide, they can work together to end this injustice once and for all. We will bring you facts, reflections, expert perspectives as well. There is so much, and practical actions that can help build a better future where every child has the opportunity to learn, grow and thereby thrive.
1: Bilkul.

0: बाल श्रम, जब बाल श्रम की हम बात करते हैं शगुन, तो बाल श्रम कई बार हमें ऐसा भी लग सकता है कि घर में जब छोटे बच्चे से हम कोई काम करवा रहे हैं तो क्या ये बाल श्रम है? तो श्रोता आपको बता दें कि ये बाल श्रम नहीं है। जब हम कहीं पर जाते हैं किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे या जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर जो छोटे बच्चे अक्सर जिन्हें छोटू करके बुला लिया जाता है, जिनकी उम्र है स्कूल जाने की, एजुकेशन लेने की, और उन्हें श्रम में लगा दिया जाता है, असल में वो होता है बाल श्रम। बच्चों के लिए किया गया हर जो बच्चा काम कर रहा है वो बाल श्रम नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बात की कि घर के हल्के फुल्के कामों में मदद करना, सुरक्षित माहौल में, पारिवारिक कारोबार में हाथ बटाना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिनसे पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए, बच्चे के विकास में उसका पॉजिटिव रोल अगर वो अदा कर रहा है तो वो बाल श्रम नहीं है।
1: राइट,
0: बाल श्रम का मतलब है ऐसा काम जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से उन्हें वंचित कर दे। ये ऐसा काम है जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और नुकसानदेह होता है। ये उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा डालता है, चाहे उन्हें स्कूल जाने से रोककर, बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर करके, या फिर स्कूल जाने के साथ साथ बहुत ज्यादा देर तक भारी काम करने के लिए बाध्य करके।
1: Well, yes, Jagriti told us about the whole of this. She made it clear to us what actually child labour is and the worst forms of child labour. Let's reflect upon that. Slavery, trafficking, also forced labour, commercial sexual exploitation, recruitment into armed conflict also is included in it, and hazardous work that threatens children's health and safety. For example, in a firecracker factory. Right? And imagine a child working in dangerous mines, handling harmful chemicals on farms as well, or carrying heavy loads at construction sites, spending endless hours selling goods on the street instead of sitting in a classroom. For millions of children, this is not imagination. It is their everyday reality. They face it every day.
0: बिल्कुल, और बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी जिससे कि बाल श्रम को हर तरह से खत्म करने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके, क्योंकि जब समस्या का ध्यान खींचा जाता है उसी के बाद उसका समाधान सामने आता है।
1: सॉल्यूशंस कैन बी पुट
0: फॉरवर्ड। और ये दिन सरकारों, मजदूर संगठनों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज के समूहों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों और आम नागरिकों को एक साथ आने और बच्चों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने का मौका देता है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल श्रम सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है।
1: And elaborating upon that point, it is a human rights issue, it is an education issue, it is a development issue, and above all, it is a moral issue. It's a great way to put it actually. Children belong in schools, playgrounds, not at all in factories, in fields or mines or hazardous workplaces. And despite years of determined efforts, child labour, it still remains a significant global challenge. It's a sad reality. And according to current estimates, let's bring you some numbers, nearly 138 million children worldwide, they remain trapped in child labour. That's a huge number, Jagriti. And even more alarming is the fact that more than 54 million children, they are engaged in hazardous work, like in mines or firecracker factories, as we told you. This threatens their safety, health and their overall well-being and their development.
0: और शगुन, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर नंबर के पीछे एक बच्चा है जो आंकड़ा बन जाता है।

0: पास होती हैं उम्मीदें, हुनर और सपने। एक ऐसा बच्चा जिसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक ऐसा बच्चा जिसे मौके मिलने चाहिए, एक ऐसा बच्चा जिसका भविष्य बेहतर होना चाहिए। वर्ष 2026 बाल मजदूरी के खिलाफ चल रहे ग्लोबल कैंपेन में एक अहम मोड़ है।
1: एंड दिस चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे, इट हैज कम एट अ डिसाइसिव मोमेंट where the 6th Global Conference on the Elimination of Child Labour held in Marrakesh. It brought together governments and it's a Moroccan place actually, international organizations, employers, workers, representatives and civil society leaders and participants. They reaffirmed the urgent need to accelerate efforts and then transform promises into actual practical action. And one of the major outcomes of the conference, the Global Conference on the Elimination of Child Labour, was the Marrakesh Global Framework for Action Against Child Labour. This framework, it provides a concrete map for governments and stakeholders, and this outlines measurable indicators, integrated responses aimed at tackling the root cause of child labour. And this also protects the rights of every child. The message from Marrakesh was unmistakable. The time for action is Now.
0: और 2026 में अभियान एक दमदार नारे के साथ चलाया जा रहा है और इसका नारा है बाल मजदूरी को रेड अलर्ट, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। और रेड अलर्ट का मतलब जो खेल के बारे में जानते हैं या अलग अलग खेलों के बारे में जानते होंगे, बिल्कुल, तो रेड कार्ड का वो महत्व भी समझते हैं। रेड कार्ड का मतलब है कि गलत व्यवहार हुआ है और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। इस साल का अभियान दुनिया से बाल मजदूरी को रेड कार्ड दिखाने का आग्रह करता है। ये उन नीतियों पर मजबूत कार्रवाई की मांग करता है जो बाल मजदूरी को रोकती है, उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें शोषण वाली स्थितियों से निकाला गया है। इन नीतियों में शामिल हैं कुछ बिंदु: सभी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का विस्तार करना, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम और पर्याप्त आजीविका को बढ़ावा देना, कानूनों को मजबूत करना और उन्हें लागू करने के तरीकों में सुधार करना, बेहतर निगरानी और डेटा इकट्ठा करने की प्रणालियां विकसित करना और कृषि प्रणालियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार तौर तरीकों को बढ़ावा देना।
1: And Jagriti, the challenge, it is enormous, but there is also a reason for hope. To accelerate progress, UNICEF and the International Labour Organization have identified several priority actions, which include investing in social protection, strengthening child protection systems, guaranteeing universal access to quality education, schools must be accessible, affordable for all, and safe and inclusive, particularly in rural communities and crisis-affected areas. And also, Promote decent work opportunities for both adults and youth. When adults have access to fair wages and secure employment, children are less likely to be forced into labour. And also enforcing laws and ensuring business accountability. Strong legislation, effective inspections and responsible business practices, they are essential for protecting children throughout supply chains. And these the steps that we mentioned, they have been there to accelerate progress.
0: और श्रोताओं, बाल मजदूरी को खत्म करना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी निभानी होगी। माता पिता शिक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं, शिक्षक कमजोर बच्चों की पहचान करके उन्हें मदद दे सकते हैं, समुदाय के जो लीडर्स होते हैं वो जागरूकता बढ़ा सकते हैं, कारोबार सही और नैतिक तरीके से अपना सकते हैं, युवा बदलाव लाने के लिए आवाज उठा सकते हैं, ग्राहक सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, सरकारें बच्चों की सुरक्षा के लिए नीतियां बना सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं। हम में से हर किसी के पास ऐसी दुनिया बनाने में योगदान की ताकत है जहां बच्चों की अहमियत उनकी काबिलियत से हो, ना कि उनसे मजदूरी करवा के उनका शोषण किया जाए।
1: वेल, इट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट जागृति, सो लेट अस रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड लेट अस शो द वर्ल्ड दैट चाइल्ड लेबर हैज नो प्लेस इन आवर सोसाइटीज एंड वी स्टैंड फॉर अ फ्यूचर वेयर एवरी चाइल्ड कैन एन्जॉय द चाइल्डहुड दे डिजर्व। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, रिमेम्बर लिसनर्स, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ चाइल्डहुड, टुगेदर वी कैन मेक इट हैपन।
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है।
1: सो जागृति, लेट्स टेक आवर लिसनर्स फर्स्ट टू कोड़िकोड। द युवा संगम, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईएम कोड़िकोड इन केरला, इन

0: Today, listeners, we are also remembering the eminent Hindustani classical musician, writer, humorist P.L. Deshpande on his death anniversary. Well, he's also he has been a writer, humorist from Maharashtra, and he's actually an accomplished film and stage actor as well.
1: बिल्कुल दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही वे जुड़े रहे और पीएल देशपांडे को पुल देशपांडे के नाम से भी जाना जाता था. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था. उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, महाराष्ट्र भूषण सम्मान, कालिदास सम्मान ऐसे कई अलंकारों से सम्मानित किया गया था.

0: Today, we are also remembering Hollywood legend Gregory Peck. Well, from his very first year in Hollywood through 5 decades of making motion pictures, Gregory Peck has been to audiences around the world the quintessential Hollywood leading man, tall, dark and handsome looks, complemented by an overwhelming sense of moral, physical strength as well. He received 4 Oscar nominations within 6 years and finally winning his masterpiece film To Kill a Mockingbird in 1962.
1: आज ही संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज ने अलविदा कह दिया था। वे योग और तंत्र के प्रकांड विद्वान थे। उन्हें पद्म विभूषण, महामहोपाध्याय और साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया था। और आज जयंती है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोकगीत भरतरी गायिका सुरुजबाई खांडे की। 1986-1987 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव का हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला। छत्तीसगढ़ सरकार से उन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख और देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार भी मिला। आइए उनकी गायकी का एक अंश हम यहां पर सुनते हैं।

0: आप जिस जहां पर भी रहते हैं मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो मेट्रो आपकी लाइफ का अहम हिस्सा होगी। और वही मेट्रो देने वाले भारत के मेट्रोमैन ई श्रीधरन का जन्मदिन है। कोंकण रेलवे और दिल्ली में मेट्रो रेल का श्रेय इन्हीं को जाता है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है। ये हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है।
1: Well, today we're also remembering Peter Granville Farndon, the English bassist and founding member of the rock band The Pretenders.

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जागृति और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में यह बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के

0: ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
2: Aaj Bharat women-led development ki raah par chal pada.
3: Hamari sarkar ne mahilaon ke liye sare raaste khol diye.
2: Humne karodon mahilaon ke liye shauchalay banwakar unka samman badhaya. हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of US Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal

आप ही की आवाज मंजू। शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आज मैं सुनाने जा रही हूं अपने ही कलम से सजी कहानी, अपनी ही जुबानी पानी पर लिखी कहानी आवाजों के साए। प्रस्तुति है रश्मि कुकरीती की। कहानी की शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ।

स्टेज पर पलक की तस्वीर की बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। ऑडियंस उसके सम्मान में तालियां बजा रही थी। पलक को आज बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलने वाला है। पलक खुश है, उदास है या फिर भावहीन, इसका अंदाजा वह खुद भी नहीं लगा पा रही थी। अपने जिस गीत के लिए उसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलना था, वो उसे स्टेज पर परफॉर्म भी करना है। पर्पल कलर का गाउन, हाथ में चमकदार ब्रेसलेट और गले में मोतियों का हार, स्टेज पर खड़ी पलक किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बहुत ही मीठी आवाज में पलक ने गाना शुरू किया।

पलक की आवाज लोगों के दिल में उतरती जा रही थी। कोई इंसान अपनी आवाज में इतनी खनक और पीड़ा कैसे भर देता है कि वो रूह में उतर जाता है। लोगों की वाहवाही के बीच पलक सिर्फ शब्दों और संगीत को महसूस कर रही थी। जैसे ही पलक ने गाना बंद किया, कई फ्लैश उस पर चमक उठे। मैम सामने देखिए, स्माइल प्लीज। पलक स्टेज के नीचे अपने सहयोगियों को देख रही थी, जिसमें गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म के हीरो हीरोइन सभी उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। ऑडियंस में एक चेहरे पर पलक की पलकें ठहर गई। विनीत? नहीं नहीं, ये विनीत नहीं हो सकता, ये विनीत ही था। विनीत को देखकर उसका दिल धक सा रह गया।

पलक अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद आ रहा था कॉलेज का वो पहला दिन, कितनी डरी और सहमी हुई थी वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। सारे प्रोग्राम में उसे एक लड़के द्वारा पढ़ा हुआ गीत सबसे ज्यादा पसंद आया था और वो मन ही मन सोच रही थी कि काश इस गीत को गाकर पेश किया जाता तो उसके भाव और भी उभर सकते थे। पलक ने जैसे तैसे करके विनीत के बारे में जानकारी जुटाई। विनीत हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है और उसे गीत और कविताएं लिखने का शौक है। पलक ने एक दिन रिक्वेस्ट करके विनीत से उसका गीत मांगा और शर्माते हुए पूछा, क्या आप मुझे अपना गीत कॉलेज फेस्ट में गाने की इजाजत देंगे? और विनीत ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी।

कॉलेज फेस्ट में पलक की आवाज ने धूम मचा दी। कॉलेज में सभी पलक को जानने लगे थे। धीरे धीरे पलक और विनीत एक दूसरे के नजदीक आने लगे और ये नजदीकी गहरी दोस्ती में बदल गई। पलक को कल्पना की दुनिया में रहना अच्छा लगता था। वह खुद को और विनीत को लेकर बड़े बड़े ख्वाब बुनती थी कि विनीत बहुत बड़ा गीतकार बनेगा और वो एक बेहतरीन सिंगर, जबकि विनीत को यथार्थ की दुनिया ही अच्छी लगती थी। वह अपने लेखन को शौक से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसका सपना था कि वह जल्द से जल्द यूपीएससी क्रैक करके एक बेहतरीन और बड़ा अफसर बने। पलक विनीत का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने सारे जहां भर की खुशियां अपनी झोली में समेट ली है।

कॉलेज का आखिरी दिन था, सभी बिछड़ रहे थे। पलक और विनीत भी उदास थे। विनीत अपने होम टाउन कानपुर अपनी माँ के पास जा रहा था। उसने कहा था कि हम टच में रहेंगे और फोन करते रहेंगे, पर कानपुर जाने के बाद विनीत के बिहेवियर में एक अलग सा बदलाव आने लगा था। विनीत न जाने क्यों अब पलक से बचने लगा था। उसके फोन कॉल्स और मैसेजेस के जवाब भी कम ही देने लगा। पलक सोच रही थी कि जिस फोन का इंतजार विनीत को हमेशा रहता, जिस फोन से विनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती थी, जिस फोन को विनीत अपनी कमाई कहा करता था, वह फोन अब सबसे आखिरी जरूरत क्यों बनता जा रहा था। पलक का दिमाग सैकड़ों सवाल बुनने लगा। वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसकी सुबह सवालों के बवंडर से शुरू होती, जिसे वे रात तक आते आते इंतजार जैसे बोझिल शब्द पर लाकर खत्म कर देती।

101 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। कागज पर लिखी कहानी में आज मैं सुना रही हूं अपनी ही कलम से सजी कहानी आवाजों के साए, जिसमें मैंने अब तक आपको बताया सुनाया कि पलक को आज बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलने वाला है। पलक एक ऐसी लड़की है जो बहुत भावुक है और जिसे कल्पना की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। स्टेज पर खड़ी पलक ऑडियंस में विनीत का चेहरा देखकर अतीत की स्मृतियों में चली जाती है, जब वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। अपने होम टाउन कानपुर जाने के बाद विनीत का बिहेवियर बदलने लगता है और कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, आप हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। नंबर एक बार फिर से 9868868753 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldair@gmail.com पर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पलक को भी लग रहा था कि उसका इंतजार सलामत रहेगा, पर ऐसा न हो सका। विनीत का नंबर अब नॉट रीचेबल आने लगा। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीतते गए, पर विनीत की कहीं से कोई खबर नहीं आई। पलक का दर्द बर्फ की तरह जमने लगा था। अपने दोस्तों और परिवार वालों के बहुत समझाने पर पलक एक सिंगर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई चली गई और संघर्ष करने लगी। धीरे धीरे पलक की जिंदगी ट्रैक पर आने लगी। एक दिन रिकॉर्डिंग के बाद पलक घर लौट रही थी। उसने फेसबुक पर विनीत के शादी के फोटोग्राफ देखे। उसे लगा कि शायद उसकी सांसें थम गई हैं, उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। आवाज से मानो शब्द छीन लिए हैं, संगीत से मानो सुर छीन लिए हों, और पलक को अपना अस्तित्व ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी जिंदगी की गूंज छीन ली हो। एक अनंत सन्नाटा उसकी आंखों के आगे पसर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।

उसने लैपटॉप को तो शटडाउन कर दिया, मगर अपने दिमाग को शटडाउन कैसे करती। कांपते हाथों से पलक ने विनीत का नंबर मिला दिया। विनीत का मोबाइल रिंग कर रहा था। पलक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर से आवाज आई, हेलो कौन? हेलो विनीत, मैं पलक। हाय पलक, कैसी हो? अच्छी हूं, शादी के लिए बधाई विनीत। थैंक यू पलक, मुझे मालूम था कि तुम मुझे फोन जरूर करोगी। चलो एक बार फिर मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरी उतरी। पलक ने गहरी सांस भरते हुए विनीत, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी थी मेरे प्यार में? ओहो पलक, तुम अभी भी उस प्यार में उलझी हुई हो? वो टीन एज थी बाबा, तुम अपने कल्पनाओं की दुनिया से बाहर क्यों नहीं आती? तुम आज भी फैंटेसी में जीती हो। मुझे लगता है कि तुमसे ब्रेकअप करके मैंने बहुत अच्छा किया। जिंदगी कल्पनाओं के सहारे नहीं चलती, उसके यथार्थ को स्वीकारना जरूरी होता है। मेरी भी अपनी इच्छाएं थी, मैं भी ऐशोआराम की जिंदगी जीना चाहता था, मुझे भी समाज में रुतबा चाहिए था, और फिर तुम जैसी स्टेज पर गाने वाली को मेरी माँ भी तो स्वीकार नहीं करती। माधवी मूव ऑन करो, एक सलाह दूं, बी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। कहते हुए विनीत ने फोन काट दिया।

पलक पत्थर हो गई थी। वह विनीत से बहुत से सवाल पूछना चाहती थी, पर विनीत की अभिमानी से भरी बातों ने उसके सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। पलक अब कुछ भी नहीं पूछना चाहती थी, वह सिर्फ प्रैक्टिकल होना चाहती थी। एक दिन ब्रेकफास्ट के दौरान पलक अपना मेल बॉक्स चेक कर रही थी। उसने देखा कि उसमें एक मेल रवि जोशी की एडवर्टाइजिंग एजेंसी का है और उन्होंने उसे दो एड जिंगल गाने के लिए इनविटेशन भेजा है। ये वही रवि जोशी हैं जिनका एड की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और जो फिल्मों में गीत भी लिखते हैं। पलक को एड जिंगल गाने के ऑफर पहले भी मिलते रहे थे, पर वो ऐसे ऑफर ठुकराती रही है क्योंकि पलक सिर्फ बॉलीवुड में सिंगर बनना चाहती थी, पर इस वक्त उसके

के कानों में सिर्फ विनीत के शब्द गूंज रहे थे, बी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। पलक ने यह ठान लिया था कि वो अब दिखा देगी और वो अब अपनी आवाज के सहारे ही अपनी आवाज को एक नई पहचान देगी।

म्यूजिक डायरेक्टर ने स्टूडियो में एड जिंगल की रिकॉर्डिंग शुरू की। पलक जी, फील इट, महसूस करिए, बहुत फ्लैट गा रही हैं आप। एक बार फिर कोशिश करते हैं, पर सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। मैम, आपसे नहीं होगा, झल्लाता हुआ म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल आया। स्टूडियो के बाहर रवि जोशी अपने किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, वो मैडम तो कुछ गा ही नहीं पा रही है। आप तो कह रहे थे कि वो शब्दों की को बहुत गहराई से महसूस करके गाती हैं, मुझे तो कोई बात नजर नहीं आती। सर, अब आप ही कुछ कीजिए। रवि जोशी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं देखता हूं, और वो सीधे रिकॉर्डिंग रूम में चले गए, जहां पलक डरी और सहमी हुई बैठी थी। पलक जी, रिलैक्स। रवि जी, क्या मैं बेसुरा गा रही हूं? नहीं। क्या स्केल में नहीं गा रही मैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या कमी है? भाव। भाव नहीं है आपकी आवाज में। ऐसा लगा मानो किसी ने पलक को बहुत भीतर तक झिंझोड़ दिया। पलक के भीतर कुछ पिघल रहा था, शायद भाव की वही नदी जिसकी इस एड जिंगल को जरूरत थी। पलक एड जिंगल के साथ साथ रवि जोशी द्वारा लिखे गीत भी गाने लगी थी।

पलक, एक प्यारी सी परिचित आवाज ने उसकी स्मृतियों के पुल को तोड़ दिया। बाबा वोट तो ले लिया, कुछ बोलूंगी भी, न जाने क्या सोच रही हो। ओ, ये तो रवि की आवाज है, ये रवि की आवाज है। ये वो रवि ही था जिसने पलक की आवाज के सैंपल को बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचाया था, बल्कि उसको मिलवाया भी था। आज जिस गीत के लिए पलक को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल रहा था, उसका गीतकार कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। पलक ने ऑडियंस को थैंक यू कहा और जल्दी जल्दी स्टेज से नीचे उतरने लगी। किसी चीखती आवाज ने पलक के कदमों को रोक लिया। पलक मैम, आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके कई लाइव कॉन्सर्ट देखे हैं, सोशल मीडिया पर आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं। मैंने कई बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर कभी आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। मैम, ये विनीत शर्मा हैं, मेरे हस्बैंड, इन्हें भी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैम, ये भी बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, क्या आप इनके गीतों को आवाज दोगे? पलक ने विनीत की तरफ देखा और विनीत ने जमीन की तरफ, मानो किसी पाताल में उतर जाना चाहता हो। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। पलक ने डर के मारे रवि का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी आंखें भर आई थी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, पलक, मिसिस विनीत ने तुम्हारी आवाज को मांगा है बाबा, तुम्हें नहीं। दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। पलक अपने दुख के आगे बेबस होती जा रही थी। रवि ने उसे गले लगा लिया। वो रोते जा रही थी, वो कह रही थी, रवि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती और ना ही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। रवि मन ही मन सोच रहा था कि पलक के मन की ये कौन सी परत है जिसे उसकी कलम भी नहीं छू पाई है। रवि सवालों के खंडहरों में उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि खंडहर हमें अतीत तो बताते हैं पर उसमें कभी घर नहीं बसाया जा सकता। रवि एक घर बनाना चाहता था जो आबाद रहे। कार का गेट खोलते हुए रवि ने कहा, मैडम, मैंने कितनी बार कहा है, सिर्फ तुम्हारे आंसू मुझे शायर बना देते हैं, पर मैं आज कोई गजल नहीं लिखना चाहता। ये कहकर रवि ने अपना हाथ पलक की ओर बढ़ा दिया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इस सुहानी शाम को और भी सुहाना बनाने के लिए मैं लाई हूं आपके लिए कुछ बेहतरीन गीत। तो चलिए पहला गीत सुन लेते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की आवाज में और फिल्म है आराधना।

आपका और हमारा साथ जब होता है तो खिलना तो होता ही है गुलों को, अब गली गली खिलें या कली कली। अगला गीत खुशबू मूवी से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगी अलविदा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश

0: राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. This is the second time the U.S. envoy has been summoned by the ministry. 3 Indian seafarers who were initially reported missing have been confirmed dead in one of the attacks. India's retail inflation accelerated to 3.93% in May this year on an annual basis, rising

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हुआ है 6:10 15 सेकंड। महफिल है सदाबहार गीतों की। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री और शुरुआत करते हैं फिल्म अभिमान के एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जिसमें आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra karyakram mein aapka swagat hai. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अमित।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी हेडलाइन के साथ निश्चित।
0: The benchmark domestic indices end higher. Sensex jumps nearly 1700 points. Nifty settles above 23,600. India's retail inflation accelerates to 3.93% in May this year. And global crude oil prices decline around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांक बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 1700 अंक कुचला। निफ्टी 23600 के स्तर से ऊपर दर्ज। मई के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93% हुई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 4% की गिरावट। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालेंगे शेयर बाजार पर, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर।
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त से बंद हुए। पश्चिम एशिया संकट के हल होने की उम्मीदों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण महंगाई दर में नरमी के संकेतों से निवेशकों का उत्साह बना रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.3% की बढ़त से 1695 अंक उछलकर 75528 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2% की तेजी से 461 अंक बढ़कर 23623 के स्तर पर रहा। एनएसए मिडकैप सूचकांक में 2.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.8% की मजबूत बढ़त

0: दर्ज हुई।
1: The benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The Sensex surged 1,695 points to close at 75,528, while the Nifty jumped 461 points to settle at 23,623. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index climbed 2.4% and the small-cap 100 index soared 2.8%. Investor sentiment was further boosted by a decline in oil prices, with Brent crude falling below the $90 per barrel mark, helping ease concerns over inflationary pressures.
0: सेंसेक्स पैक की 28 कंपनियों में आज मजबूती रही। बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में बजाज फाइनेंस 5.6%, L&T 5% और इंडिगो 4.6% के उछाल से बंद हुए। हालांकि टेक महिंद्रा में 2.2% और पावर ग्रिड में 0.6% की गिरावट भी नजर आई।
1: And among the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, all 25 sectors ended in the green. Realty advanced 3.55%. Mid-small private banks quality tilt index rose 3.5% and industrials gained 3.45%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 3,222 companies advanced, 1,046 declined and 154 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 65 पैसे की मजबूत बढ़त से 95.11 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.74 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, किस तरह से देखेंगे? एक खबर आती है अच्छी सी, उम्मीदों के आसमान शायद जग जाते हैं और शेयर बाजार पर इसका साफ असर नजर आता है। क्या यह माना जाए कि जो आज लगभग 1700 अंकों का उछाल है, ये अगले जो सोमवार से कारोबार की शुरुआत होगी वो इस धारा से और आगे बढ़ेगा, या इसमें अभी कुछ संशय है?
2: अमित, देखिए, अभी जो बाजार जिस दौर से गुजर रहा है वो बहुत ही वोलेटाइल एक माहौल है, और हर रोज जो नया एक खबर आती है, सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है ये, क्योंकि और ये सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है तेल की कच्चे तेल की कीमतों से। ये सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है जो यूएस ईरान वॉर को लेकर, कि क्या वहां उम्मीदें हैं, क्या वो वॉर कम होगी या आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अभी कुछ भी हम लॉन्ग टर्म में हम अभी फोरकास्ट नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में बाजार जाएगा, लेकिन मुझे कुल मिलाकर ऐसा लगता है जो बाजार के इंटरनल्स हम देखते हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशोज हैं, जो जिस प्रकार से बाजार का रुख रहा है पिछले दिनों, मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में बाजार को बेहतर स्तर पर देखेंगे। मुझे लगता है जो बॉटम बन चुके हैं मार्केट के, नीचे लेवल्स पर कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, और आने वाले समय में मुझे यहां से बेहतर लेवल्स की उम्मीद है।
1: Yeah, Puneet, if we talk of the broader markets here, you know, the mid cap up by 2.4%, small cap as well up by 2.8%. All of us know that the broader market, especially the small caps, they bleed and bleed like how when markets go down. Now, here on, as Amit was also mentioning, coming week from Monday onwards, if we can see this momentum kind of carrying on into the next week as well, can we say that the small cap, as well to some extent the mid cap as well, which had bled like anything over the past 6 months or so, especially over the past 3-4 months, can actually pick up and kind of give that rocket boost which actually everyone is looking forward to?
2: So Nishit, you are right. See, mostly small investors or retail investors are invested in mid cap and small caps stocks. Large investors, institutional players, they dominate large caps. And mostly if retail is participating in large caps, it is mostly through mutual fund route. So where it is a diversified holding. So retail sentiment is usually very closely linked to the performance of the mid cap and small cap stocks. You're right, in the last few months, particularly from December till March, we saw a very significant fall in small cap and mid cap stocks, and consequently, in retail investors, they were very negative about the market going forward. Fortunately, in the last 1.5 months, we have seen a strong rebound in mid-cap and small-cap stocks. And if you really look at why that has happened, is because FIIs, which have been very large sellers in Indian market, they were largely selling large-cap stocks. And retail was participating in mid-cap, small-caps. So there we saw some kind of outperformance in the last few weeks. My own expectation is that in the next 6 months, we will see markets doing better? Because I think all this crisis will reduce going forward, first of all. Secondly, retail participation in the mid-cap, small-cap will grow. And I think FIA money will also come back to the markets. So my guess is, while we will see indices do better, we will see much stronger maybe pullback, like you said. It's very volatile. Usually it goes up a lot and goes down a lot. Volatile mid cap and small
1: true
2: cap.
1: True to its nature.
2: So particularly there are low small cap companies.
1: Right.
2: So my expectation is that it will outperform. Small cap and mid cap indices will outperform.
1: Now, coming to primary markets, Puneet, you know, I would say the daddy of all the big IPOs that's opening tonight, but also, you know, the Indian IPO market has been quite kind of TP'd, if we may say so, over the past few months, especially, you know, post-February now. Now, can this, the big IPO which is opening, you know, tonight, can also kind of give that turbocharge to the Indian primary market?
2: So you're right. I mean, tonight is one of those, though, I would say, historic nights in the history of capital markets, where one of the world's largest IPOs ever, SpaceX, almost $75 billion IPO in the US markets. So Indians, of course, are not, we can't, as Indian investors, we can't access the market.
1: True.
2: But globally, I think for the capital markets, a very big event, the world's largest IPO is opening. And I think the markets are primed for it, in the sense that we've seen a very strong rebound in the US markets, and the technology stocks, of course, have been at the forefront. The AI stocks have been at the forefront of this entire rally. So I think once this IPO is behind us in terms of capital raise, in terms of news flow which is happening, it will definitely have a rub-off effect on other IPOs which are waiting. Usually what happens is when such a large IPO happens, most of the global liquidity flows to that market. So you will see all FIIs, big institutional investors, they'll flock to the US markets, they'll be investing there. Once this IPO is behind us, I think in the next few days, then I think some capital will flow back to emerging markets. And therefore, I expect as the secondary markets, they pick up in the next few months, IPO market in India should start picking up, but I think towards later half of the year.
0: पुनीत, आपने जैसा भी बताया कि अगर तो जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है, तो क्या उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहीं ना कहीं हम भारतीय बाजार या एशिया महाद्वीप के जो बाजार हैं उन पे पड़ता हुआ नजर आएगा? और अगर ऐसा है तो क्या अगला जो सप्ताह है उसकी सुस्त शुरुआत की उम्मीद करें या आशंका करें?
2: अभी देखिए, बड़ा इस वक्त बहुत सारे बड़े फैक्टर्स, जैसे दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, करीब करीब रुपए टर्म्स में बात करें तो 7 लाख करोड़ रुपए का ये आईपीओ पब्लिक से रेज करने का आईपीओ है अमेरिका में, उसका असर बाजार पे पड़ता है, सेंटिमेंटली भी पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या आएगी उसका पड़ता है. साथ में हम देख रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो वहां पर भी बहुत बड़ी न्यूज, दुनिया हिलाने वाली न्यूज मैं कहूंगा, कि एग्रीमेंट होगा नहीं होगा वो भी हम देख रहे हैं. साथ में हमने देखा है कि जो एआई ड्रिवन जो एक रैली थी, हिस्टोरिक रैली थी, अगर हम कोरिया एक बाजार की बात करें तो वहां पर पिछले एक वर्ष में करीब करीब 2.5 गुना इंडेक्स हो गया है कोरिया में, ताइवान में उससे ज्यादा परफॉर्मेंस हुई है, जापान में. तो जो टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन स्टॉक्स थे वहां पर बहुत ज्यादा पैसा गया है पिछले दिनों. तो ये काफी फैक्टर्स हैं जिनसे बाजार के सेंटिमेंट को असर पड़ रहा है. भारत इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहा है. इंडिया की मार्केट जो है वो एक्चुअली थोड़ी पिछड़ी है, क्योंकि हम इन सभी फैक्टर्स से दूर थे. मुझे लगता है कि जैसे ये चीजें रिजॉल्व होंगी, जैसे ये चीजें थोड़ी बदलेंगी वहां, इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि भारत में हम कुछ नया निवेश देखेंगे. और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल पिछले कई वर्षों से बहुत बड़ा पैमाने पे सेलिंग कर रहे हैं भारत में, मुझे उम्मीद है कि इस साल इन सब फैक्टर्स का जब टर्न अराउंड होंगे तो भारत में एफआई बाइंग शायद दोबारा से देखें टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर.
0: पुनीत, आप काफी वित्तीय बाजार के एक बहुत गहरे विशेषज्ञ हैं. अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये जो एआई का बबल है, वो मैं बबल इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द का, तो एआई का ये जो दौर है वो अगर बबल में वो फटे ना भी सही, लेकिन अगर वो थोड़ा सा संकुचित होता है, छोटा होता है, तो क्या इमर्जिंग मार्केट जैसे जिसमें भारत भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्या इस बाजार को सीधे तौर पे उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आता है? क्योंकि एआई पे उम्मीदें ज्यादा हैं, परफॉर्मेंस कितना होगा ये कोई नहीं कह सकता.
2: नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल सीधी बात कही. मैं भी, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है, ये एआई बबल एक वैल्यूएशन बबल है पूरी दुनिया में. और देखिए, ताइवान में एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज भारत की पूरी बाजार से मिलाकर कुछ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। उसकी अर्निंग इतनी नहीं है, पी मल्टीपल 400 टाइम्स 500 टाइम्स हो गए हैं। कोरिया में दो कंपनी ऐसी हैं जहां पर उनका वेटेज जो है इंडेक्स में वो 50% को क्रॉस

0: है। तो देखिए ये सब बबल्स है, ये सब एक डिस्टॉर्शंस है मार्केट की, लेकिन अभी फिलहाल इस इन डिस्टॉर्शंस में क्विक पैसा कमाने के लिए सारी दुनिया का जो कैपिटल है, रिस्क कैपिटल है, वहां अट्रैक्ट हुआ हुआ है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जैसे ही ये बबल इसका पंक्चर होगा तो हम देखेंगे कि ये कैपिटल कुछ सैनिटी वापस बाजारों में आएगी। अब भारत जैसे जो डाइवर्सिफाइड मार्केट्स है और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, हमारे पी मल्टीपल जो है वो बहुत अट्रैक्टिव आ गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कैपिटल वापस इंडिया में आना शुरू हो जाएगा सम टाइम इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर।
1: आपने वैल्यूएशन की बात करी, भारत में अभी कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पे इस बाजार में जिनकी वैल्यूएशन आपके हिसाब से बेहतर नजर आती है, जहां सीधे तौर पे निवेशक या हमारे जैसे एक आम जन सीधे सीधे तौर पे वहां पे निवेश करने की उम्मीदें जगा सकते हैं या देख सकते हैं?
0: अमित देखिए, मुझे वैसे ये एक प्रकार से मुझे खुशी भी होती है कि जो अच्छे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी अच्छे मौके हमारे बाजारों में आए हैं, क्योंकि एफआईआई ने इनडिस्क्रिमिनेटली शेयर्स बेचे हैं। तो आईटी क्षेत्र आप देखें, वहां पर पी मल्टीपल जो है वो 11-12 टाइम्स के रह गए हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं कि काफी गिरावट आई थी, हालांकि आज बैंकिंग क्षेत्र के शेयर्स काफी बड़े हैं पर अभी भी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। डिफेंस सेक्टर,
1: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ही तेजी रही है, निजी क्षेत्र के बैंक अभी भी दबाव में
0: और सरकारी क्षेत्र के बैंक्स भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। वहां पीपीई मल्टीपल आप देखें तो 6-7 से ज्यादा अभी नहीं है। इसी तरह से डिफेंस क्षेत्र है, हेल्थ केयर है, वहां आप देखेंगे कि काफी अच्छी वैल्यूएशन है। भारतीय बाजारों में कह सकता हूं कि काफी ज्यादा मौके हैं इन्वेस्टर्स के लिए।
2: पुनीत, इफ यू मे टेक फॉरवर्ड दिस डिस्कशन एंड टॉक अबाउट द आईटी स्टॉक्स इन इंडिया, you know, the IT, even the blue chips, you know, they have been kind of come down to some level wherein it's so mouth-watering for all of us. So how do you see that sector coming up?
0: So Nishad, I think right now it is a matter of faith. So whether you think AI will puncture Indian IT stocks further, but I find them very attractive. I think they are very good long-term investments, and Indian IT companies are very well equipped to deal with this so-called AI, you know, bubble.
1: खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं खुदरा मुद्रा स्फीति पर। मई के दौरान खुदरा मुद्रा स्फीति वार्षिक आधार पर बढ़कर 3.93% हो गई। अप्रैल के दौरान खुदरा मुद्रा स्फीति 3.48% थी। लगातार पांचवें महीने खुदरा मुद्रा स्फीति में बढ़त दर्ज हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर मामूली बढ़त से 4.25% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर बढ़कर 3.53% हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति 4.2% से बढ़कर 4.78% रही। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बावजूद घरेलू महंगाई दर रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा में ही है। महंगी होने वाली प्रमुख वस्तुओं में चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम, आभूषण, टमाटर, अदरक और किशमिश जैसे पदार्थ रहे, जबकि आलू, मोटर कार, जीरा, मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसी वस्तुओं के दामों में महंगाई की मार काफी सीमित नजर आई। पुनीत, इस खबर को कितना अच्छा मानते हैं, क्योंकि अगर हम 4% का रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा है कि 4% के भीतर ही इसको सीमित रखना है और उसमें इतनी सब कुछ, हालांकि मोटे तौर पे देखा जाए तो खाद्य मुद्रास्फीति में ही मोटे तौर पे बढ़त नजर आई है जिसकी वजह से ये असर हुआ है, क्या इस तरह की जो महंगाई अगर हम मामूली बढ़त भी देखते हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए कितना समायोजित करता हुआ नजर आता है?
0: अमित देखिए, मतलब मैं अगर ये कहूं कि इकोनॉमिस्ट एज अ लार्जर पिक्चर, तो मुझे लगता है ये इन्फ्लेशन, ये डेटा जो आया बहुत अच्छा डेटा है। खास कारण ये है कि एक तो अभी सारे फैक्टर्स नेगेटिव थे, पूरा आप डिसरप्शन देख रहे हैं, करीब करीब 3 महीने से डिसरप्शन चल रहा है, मार्च, अप्रैल और मई का डेटा है ये। तो आप देखें कि 3 महीने से आपको हर प्रकार के डिसरप्शन है, सप्लाई चेन्स में कच्चे तेल की कीमतों में भी इशू आया है, और अगर हम इसको देखें तो जो फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन डेटा ऊपर आया है, उसके बावजूद भी ये एक टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। आरबीआई का जो टारगेट रेट है इन्फ्लेशन का वो 4% है, ±2%, यानी 6% तक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता है कि कंफर्ट जोन में हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और तो उससे हम काफी दूर हैं। तो जिस प्रकार से मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन के सवाल को, मुद्दे को सरकार की नीतियों ने टैकल किया है और कंट्रोल में रखा है, और इसमें भी अगर हम कोर इन्फ्लेशन देखें यानी फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को बाहर निकाल करके इसको देखें, तो वो कंट्रोल में, बहुत अच्छे कंट्रोल में है वो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, अगर ये नंबर्स देखे जाए और अगर हम सस्ते, और सेकेंडली एक और बड़ा बात है, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत नीचे थे, अगर आप याद करें 1% से भी नीचे आ रहे थे। तो ये स्टैटिस्टिकली हम देखते हैं कि जब बेस लो होता है तो अगले साल का डेटा थोड़ा ऊपर दिखाता है. तो इन सब चीजों को देखते मुझे लगता है नंबर्स जो है बहुत इनकरेजिंग नंबर्स.
1: आपने चर्चा की सरकार ने बहुत अच्छी तरीके सभी चीजों का संतुलन बनाया. सरकार ने हाल ही में जो व्यापारिक क्षेत्र है उसके लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन जैसी स्कीमें भी लॉन्च करी. क्या आपको लगता है इस सब चीजों का वो जो एक बाजार में बहुत ज्यादा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा था, इस तरीके की जो स्कीम अगर सरकार लाती है तो पूरे बाजार में खासतौर पे जो मध्य व्यापारी वर्ग है, एमएसएमई की बात हम करें, वहां से जो जिस तरह से रोजगार के आंकड़े बढ़ते हैं, वहां से जो कंजम्पशन के आंकड़े बढ़ते हैं, उनसे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है.
0: बिल्कुल अमित, और इसका मैं आपको मोटा मोटा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब ये युद्ध शुरुआत हुई तो बहुत डर था कि तेल की कीमतें बहुत बढ़ेंगी, सप्लाई चेन्स नहीं आ रही थी, एक डर का माहौल था. और अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था की जो गति है, जो जीडीपी ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, प्रोजेक्शन आ रही है, वो अभी भी 6.5 से 6.6 6.7 का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है. यानी जो जिस गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी उसमें थोड़ी गिरावट है, लेकिन ज्यादा गिरावट हम नहीं देख रहे. ये आसान काम नहीं है. अगर हम अपने आसपास की अर्थव्यवस्थाएं देखें, जो अपने पड़ोस के देशों की भी अर्थव्यवस्थाएं देखें, तो करीब करीब वो अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई है इस पूरे डिसरप्शन से. और भारत में उसका हम आप देखिए सच, हम आज रोजमर्रा के जीवन में आसपास देखें इतना बड़ा डिसरप्शन नहीं है. थोड़ा डिस्कम्फर्ट है लेकिन डिसरप्शन नहीं है. मुझे लगता है ये काफी
1: बड़ी उपलब्धि है.
2: That talks about the fundamental and our robustness of our economy, Puneet. And moving on to some other stories now, the India's foreign exchange reserves declined marginally by $711 million to $681 billion during the week ended June 5th. According to Reserve Bank of India, foreign currency assets, the largest component of the reserves, decreased by $2.7 billion to $543 billion during the week. In contrast, gold reserves rose by $1.9 billion to $114 billion. Special drawing rights, SDRs, added $18 million to $18.76 billion. The country's reserve position with the International Monetary Fund remained largely unchanged at $4.82 billion.
1: नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर. एशियाई बाजारों में आज तेजी का दौर रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.6%, जापान का निक्केई 2.8%, ताइवान का टाइक्स 2.4%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.9%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.8% की बढ़त से बंद हुए. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती कारोबार में मजबूती रही. लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 1.1% से 1.8% तक की बढ़त के दायरे कारोबार करते नजर आए.
2: एंड इन द यूएस मार्केट्स, यूएस इक्विटीज एंडेड हायर यस्टरडे सपोर्टेड बाय ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ही हैड कैंसल्ड प्लान्ड मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान एंड इंडिकेटेड दैट अ पीस डील कुड बी साइन इन द नियर फ्यूचर. अमंग द मेजर इंडिसेस, द नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स सॉर्ड ओवर 2.5%, द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जंप नियरली 1.9% एंड द S&P 500 एडवांस मोर देन 1.7%. द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर ऑल्सो फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IPO लिस्टिंग एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस later tonight. On the economic front, the producer price index PPI stood at 1.1% in May, according to data released by the US Bureau of Labor Statistics. Puneet, some encouraging numbers, of course, you know, buoyed by the peace deal in the offing, which is it's yet to be seen how it shapes up, you know, how it pans out, but yet of course, you know, even, you know, the little bit of whatever news in trickling in is kind of buoying, you know, the markets. Now coming to the Fed meet, which is to happen, you know, in a few days' time from now, how do you see the Fed actually reacting? Because, of course, all of us know that the Fed meeting, the outcomes of it, would, of course, spill over to our markets as well.
0: Absolutely. So, of course, US Fed is the big daddy of the world monetary markets. So, clearly, whatever they do in US, even if they sneeze, other markets they catch cold.
2: True.
0: So, but however, I think, given the numbers that we have in front of us, I think that we won't see any major move from US Fed right now. Of course, President Trump always wanted a rate cut. So, he got his favorite person to come as a chairman or as a chairman of the US Fed. So mostly, if you had asked me 3-4 months back, I would have said the first move of this new chairman would have been to cut rates. But given the political situation right now, I don't think he has any headrooms, because in the US, the inflation rate in US has gone above 4%. So clearly, there is no headroom for him to cut rates. My guess is they will stand pat. They will keep monetary conditions easier. They don't want to rock the boat. And I think there's been a lot of talk about Fed raising

0: rates towards end of the year. But my guess is that we're not going to see any major move for next 3 to 6 months from US Fed on the interest rates.
1: पुनीत, अगर एशियाई बाजारों की बात करें, यूरोपीय बाजारों के भी रुझानों की अगर बात करें, आज वहां पे भी काफी उत्साहजनक माहौल रहा है. तो जिस तरह से अगर अमेरिका की जो फेड की मीटिंग है, उसी तरह से अगर हम बैंक ऑफ जापान की बात करें, वहां पे भी जो ब्याज दरों की बात चल रही है, उसमें क्या उम्मीदें नजर आती हैं और किस तरह से उनका व्यवहार आपको नजर आएगा? क्या वहां के बाजार इस आशंका

0: देखिए, बैंक ऑफ जापान की प्रॉब्लम अमेरिका से उल्टी थी. वहां पर अमेरिका जापान में बहुत लो इंटरेस्ट रेट से और उनकी करेंसी में काफी गिरावट आ रही थी, तो जापान ने पिछले एक वर्ष में थोड़ा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है अपना. वहां पर जो बॉन्ड यील्ड्स थी करीब करीब जीरो थी, वो बॉन्ड यील्ड्स वहां पर थोड़ी ऊपर आई है, और जिससे कि थोड़ा पैसा जो है वापस जापान में वो अट्रैक्ट कर सके. तो मुझे लगता यह है कि जापान में अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं. वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ है और नई सरकार है वहां पर, दे वांट टू स्टेबलाइज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो मुझे लगता है कि जापान, और वहां पर करेंसी भी स्टेबलाइज हो गई है, 160 येन टू द डॉलर अब करेंसी स्वैप रेट है. मुझे लगता है जापान में अब एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, और डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान, बट आई थिंक जापान इज नॉट एन इशू राइट नाउ फॉर ग्लोबल मार्केट. अमेरिका इज द मेजर इशू जहां पर मार्केट देख रही है.
1: मुद्रा की बात करिए, अगर मैं वापस से आपको घरेलू मुद्रा बाजार में लेके चलूं, रुपए ने भी बेहतर कुछ दिनों से प्रदर्शन किया है, रुपया काफी मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले, ये क्या वजह है और ये कितना स्थायी नजर आता है?
0: देखिए, इसमें हमें दो खास कारण है, उन्हीं पर हम अभी बारीकी से नजर रखे बैठे हैं. पहला तो सबसे बड़ा है जो क्रूड ऑयल का जो रेट है, बिकॉज भारत ज्यादातर क्रूड इंपोर्ट करता है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर बहुत भारी असर पड़ता है, एक्सपोर्ट्स सप्लाई चेन्स के ऊपर भी पड़ता है. तो वहां पर हमने देखा है थोड़ा क्रूड के जैसे दाम कम आए, थोड़ी वहां पर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, तो आज रुपए में काफी अच्छी बढ़त विजा विद द डॉलर, यानी रुपया एप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट द डॉलर. दूसरा एक अगेन यहां पर बहुत बड़ी मैं कहूंगा काबिले तारीफ बात है, वो कि सरकार ने जो प्रोएक्टिव कदम उठाए, रिजर्व बैंक की जो लास्ट पॉलिसी आई मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें उन्होंने काफी लिबरल कदम उठाए हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआईज, पर्टिकुलरली एफसीएनआरबी अकाउंट में जो छूट दी गई है, वहां पर जो लीवे दिया है बैंक्स को, ऐसी हमारी उम्मीद है. और कुछ कंसेशंस दिए गए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स खरीदने के लिए. उसका असर यह रहा है कि पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत में खरीदे हैं. ये निवेश भारत में आया है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी दैट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन. तो सरकार के जो प्रोएक्टिव कदम थे फॉरेन एक्सचेंज अट्रैक्ट करने के लिए, उसका नतीजा हम देख रहे हैं, और तभी आप देख रहे हैं कि रुपए में अच्छी बढ़त आई है वीजा विद डॉलर, और एक स्टेबल अब स्टेबिलिटी के आसार वहां दिख रहे हैं.
1: मतलब सरकार हर चीज पे बिल्कुल बारीकी से नजर रखी हुई है, तुरंत कदम उठाती हुई
0: तुरंत कदम. कई बार क्या होता है, सरकार थोड़ी सी अगर कदम बाद में उठाती है तो उसका सरकार कदम का फायदा नहीं होता. तो ये प्रोएक्टिव स्टेप्स बहुत फायदेमंद है.
2: एंड मूविंग ऑन टू क्रूड नाउ, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन टुडे. द ब्रेंट क्रूड फेल 3.7% टू $87.02 पर बैरल इन द इंट्राडे ट्रेड, वाइल द वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट WTI crude shed 4% to $84.20 per barrel at the time of the last report. Puneet, just a couple of months back or even a month back, you know, we saw how it heated up, you know, the crude price is now coming down to 87, talking about Brent and WTI, to $84, truly heartening. How do you see this, you know, panning out in the coming days? Of course,
0: so, it's a very volatile commodity because it depends so much more on US president's comments than on actually demand supply right now. It's a very sentimental commodity right now. It always doesn't happen. But so my guess is, however, if you look at, I think this will be a watershed year for crude supplies for India. India is diversifying its supplies. It is changing policies, encouraging alternative fuels. I think it will define the way India imports fuel for the next 10, 20, 30 years. And we have woken up to this fact. My guess is that crude oil prices will head lower going forward, and India will definitely be benefited.
2: Right. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.7% up at 1,50,520 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.9% higher at 2,43,550 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein agast ke vaida karobar mein sona 1% ki mazbooti se 1,50,359 rupay prati 10 gram ke stair pe raha. Chandi bhi 1.3% ki tezi se 2,42,850 rupay prati kilogram के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. पुनीत, सोने और चांदी में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सोने के प्रति जो ललक है उसको थोड़ा सीमित करिए, और उसके बाद उस पे आयात शुल्क भी बढ़ाया गया, काफी बढ़ाया गया, उसके बावजूद अगर सोने का ये स्तर है और चांदी का ये स्तर है तकरीबन 1.5 लाख और 2.5 लाख के अगर हम आसपास की बात करें, इसमें कितनी आपको मजबूती है, इसमें कितनी चाल अभी नजर आती है?
0: अमित, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब सरकार ने कदम उठाए और कर्ब किया इम्पोर्ट्स को गोल्ड और सिल्वर के, हमने काफी भारी गिरावट देखी है इम्पोर्ट में, यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन गोल्ड और सिल्वर की उसमें काफी कमी आई है, और पुराना गोल्ड भी रिसाइकल ज्यादा हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम था. इसी वजह से हम देखेंगे विश्व बाजारों में भी डिमांड कम हुई, क्योंकि भारत

0: इम्पोर्ट करना कम किया तो प्राइसेस में कमी देखी। मुझे लगता है कि एक मिक्स पैक है, जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो चाहते हैं थोड़ा दाम बढ़े, लेकिन जो नया गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहते हैं जो अपनी कंजम्पशन के लिए, मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा मौका है।
1: काफी तेज बढ़त हुई थी सोने और चांदी की, मतलब हाँ, अगर चांदी के बाद सोने में भी बहुत तेजी से दौड़ लगाई थी, हाँ, अब कहीं ना कहीं स्थिरता आ रही है।
0: मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में हम काफी स्टेबल नैरो रेंज में मूव देखेंगे, कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट मुझे उम्मीद नहीं है अगले कई, सर मुझसे पूछे अगले 2-3 वर्षों
1: जी। चलिए पुनीत, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: थैंक यू पुनीत। बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड हायर, सेंसेक्स जंप्स नियरली 1700 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 3,600. India's retail inflation accelerates to 3.93% in May this year, and global crude oil prices decline around 4%. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिये, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
2: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग

0: इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसके लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है, जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आ

0: आज का विश्व जान सकेगा। आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मेनुस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोलू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था,

0: उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया, जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश

0: भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा, आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, भाव जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है, और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है, वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के तौर पर पहचाना जा रहा है।
4: प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण।
3: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है।
4: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है।
3: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्रों में

0: सड़कें बनी हैं और आज एक भी गांव नहीं है जो हाईवे से न जुड़ा हो।
1: 12 वर्षों को देखें तो भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है। 2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब जला। आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है।
0: दिल्ली नगर निगम ने आज से अपने सभी 12 जोन में विशेष स्वच्छता और साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया। अभियान 20 जून तक जारी रहेगा। ये अभियान मोदी सरकार के 12 वर्ष के राष्ट्रव्यापी उत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को और सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में आयोजित विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज जल बोर्ड मुख्यालय में पानी के टैंकर का कमांड और कंट्रोल सेंटर और SCADA प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी में टैंकर ऑपरेशंस की निगरानी प्रणाली का जायजा भी लिया। श्री सिंह ने 1916 हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की प्रणाली की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के समय में और सुधार करने तथा समस्याओं का समाधान और भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खां की ओर स्थित दूसरे प्रवेश द्वार के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। नमो भारत फुटओवर ब्रिज को रेलवे फुटओवर ब्रिज के साथ जोड़ने और एक अस्थायी बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है, जिसे मई 2026 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया। श्री उपाध्याय ने बताया कि यात्री सुरक्षा के हित में और कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए सराय काले खां की ओर स्थित रेलवे स्टेशन का मौजूदा प्रवेश और निकास द्वार दोबारा बंद कर दिया गया है। राजधानी के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग इमारत के भूतल स्थित पार्किंग क्षेत्र में लगी, जहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें और स्कूटर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई।
2: दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सुबह 2:25 पर घटना की सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां भेजी गई। राहत और बचाव अभियान के दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि तुगलकाबाद में आग लगने की घटना और इससे हुई जान माल की हानि बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और सभी संबंधित विभाग समय पर मदद और सहायता पहुंचाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलजाब में आग की घटनाओं में लोगों की जान बचाने वाले बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन बहादुर नागरिकों ने संकट के समय कई लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस, सूझबूझ और संवेदना का परिचय दिया। उन्होंने इन दुर्घटनाओं में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने राजधानी में सार्वजनिक यातायात की पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में DTC ने एक नया रूट 806A का शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के द्वारका मोड़

0: 79 को द्वारका सेक्टर 23 पोचनपुर से आगे बढ़ाकर द्वारका सेक्टर 23 बी महादेव अपार्टमेंट्स तक कर दिया है। इस अवसर पर दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों और बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवागमन की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों को जोड़ने और विस्तार करने की योजना बनाई गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी, किफायती और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ पूरी दिल्ली में सतत और ग्रीन मोबिलिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सरकार की लगातार कोशिश को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए डेवलप रिस्पॉन्सिबल आउटलुक फॉर प्लास्टिक परियोजना DROP का शुभारंभ किया। ये पहल प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज डॉ बीआर अंबेडकर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री ने सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर प्रगति पथ यात्रा के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी, जनोन्मुखी तथा व्यापक बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अब अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नाम पट्टिका का अनावरण किया। दिवंगत अश्विनी चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और करनाल से पूर्व सांसद थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस चौक का नाम बदलना बहुत ही सुखद पल है।
2: आज एक खुशी का मौका है कि इस चौक को दिल्ली सरकार ने मिन्ना चौक के नाम से निमंत्रण किया है और इस चौक को हम सबका फर्ज है, सरकार का भी है, लेकिन आप सबका है कि ये दिल्ली का सबसे साफ सुथरा और अच्छा चौक कहलाया जाए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत अश्विनी चोपड़ा का जीवन जनसेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा।
3: समाज के उन प्रबुद्ध नागरिकों को जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, ऐसे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए किसी चौक चौराहे का नाम रखते रहे हैं। आज ये चौक जो पूर्व में ब्रिटानिया चौक कहलाता था, पुण्यतिथि जो अश्विनी चोपड़ा जी की है, हमने ये तय किया कि इस चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा मिन्ना रखा जाए, ताकि एक ऐसे निर्भीक पत्रकार जिन्होंने हमेशा समाज और देश की आवाज बन करके काम किया, उनको सरकार की ओर से सम्मानित किया जाए।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों को सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय निशानेबाजी को नई पहचान दिलाने और अनेक खिलाड़ियों का मार्गदर्शन देने में जसपाल राणा का योगदान सदैव याद किया जाएगा। राजधानी में आज दिनभर उमस भरी गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस

दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने तथा दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रांस के नीस में इस आयोजन के दौरान भारत की नई पीढ़ी के नव प्रवर्तकों, कारोबार जगत और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाले अनुसंधान समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनः परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेगा। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान

पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकानी यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर रात का वक्त हो गया है, ठीक 8:11, और ये वक्त कह रहा है कि आप जुड़ जाइए उस महफिल के साथ जिसका नाम है मधुरिमा। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री। मधुरिमा की महफिल में हम बात करते हैं शास्त्रीय रागों और उन पर आधारित गीतों की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग मधुमाद सारंग का एक विशेष स्थान है, जिसे मध्यम सारंग या मध्यमादि सारंग भी कहते हैं। इसका वृंदावनी सारंग के समान चंचल और वर्षा ऋतु से जुड़े हुए एक मधुर राग के रूप में इसकी पहचान है। इसका थार जो है काफी है वृंदावनी सारंग अंग, और स्वर इसका ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम और धैवत शुद्ध होते हैं। निषाद कोमल का प्रयोग होता है और आरोह अवरोह में दोनों मध्यम का उपयोग किया जाता है।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

राग मधुमाद सारंगी हम बात कर रहे हैं, इसमें वादी स्वर पंचमपा और संवादी स्वर ऋषभ रे होता है और गाने का समय इसका दोपहर का समय है यानी दिन का दूसरा प्रहर और इसकी जो प्रकृति है वर्षा ऋतु और श्रृंगार रस से परिपूर्ण होती है।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर,

0: गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के।
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं मधुरिमा। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री। राग पहाड़ी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर और लोक उन्मुख राग है। ये अपनी चंचलता, सरलता और सुकून भरे सुरों के लिए जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इसी पर आधारित ये गीत।

फिल्म राम और श्याम का ये गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत के साथ ही मधुरिमा की महफिल यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए संजीव को। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर अपडेट के साथ और हर मैच के ताजा हाल के साथ, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के दिन भर के मुख्य समाचारों पर। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 मेक्सिको में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। पहले मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। पहले मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के मेगा कार्निवल फीफा विश्व कप के साथ, जिसका आगाज कल मेक्सिको में शानदार रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया है। विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपने अभियान का विजयी आगाज किया। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से जीत दर्ज की।
1: विश्व के सबसे बड़े खेल फुटबॉल के सबसे बड़े कार्निवल फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस पहले ही दिन इस विश्व कप के मोस्ट अवेटेड टूर्नामेंट के लिए उत्साहित नजर आए। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में बीती रात मेक्सिको में मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का धमाकेदार अंदाज में आगाज किया है। एस्टेका स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के सामने मेक्सिको का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला। मुकाबले की शुरुआत से ही मेक्सिको ने गेंद पर नियंत्रण रखा और लगातार दक्षिण अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव बनाया। फीफा विश्व कप 2026 और मैच का पहला गोल गिव नो नेस ने किया। हाफ टाइम तक मेक्सिको 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ की शुरुआत में साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। टीम के खिलाड़ी याया सिथोल ने गोल की तरफ बढ़ रहे मेक्सिको के ब्रायन गुटिरेज को रोकने के चक्कर में उन्हें गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने तुरंत उन्हें रेड कार्ड थमा दिया। गुटिरेज को रेड कार्ड मिलने के बाद अफ्रीका को दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसका फायदा उठाते हुए अनुभवी स्ट्राइकर राहुल जिमेनेज ने शानदार गोल दाग कर मेजबान टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया और टीम की जीत लगभग तय कर दी। मेहमान टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। टीम के खिलाड़ी थेम्बा जवाने को हिंसक व्यवहार के कारण रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। मैच के अंतिम क्षणों में मेक्सिको को भी झटका लगा जब डिफेंडर सीजर मोंटेस को एक लापरवाही चुनौती के लिए रेड कार्ड दिया गया। हालांकि इस फैसले का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और मेक्सिको की टीम मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से रोमांचक जीत दर्ज की। रोमांच से भरपूर मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने दूसरे हाफ में 1-0 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से कोरिया और चेकिया की टीम को गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन दोनों ही टीमें इसे बुनाने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ की शुरुआत से ही चेकिया ने आक्रामक खेल दिखाया और टीम को मैच के 59वें मिनट में लाडिस्लाव क्रेजकी ने

0: हेडर के जरिए शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 67वें मिनट में हांग इन ब्योम के गोल की मदद से स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। ओ ह्योन ग्यू ने 80वें मिनट में गोल करके दक्षिण कोरिया को मुकाबले में बढ़त दिला दी। इसके बाद कोरिया ने चेकिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और टीम विश्व कप 2026 का आगाज जीत के साथ करने में सफल रही। विश्व कप में आज सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो फुटबॉल के सबसे बड़े मेगा कार्निवल का आगाज हो चुका है और ऐसा ही एक मंच सजने को तैयार है क्रिकेट का, इंग्लैंड और वेल्स में, जहां आज से आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। इस बार T20 विश्व कप में 12 टीमें भाग लेंगी, जो इस खिताब के लिए अगले 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी और 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर यह फाइनल होगा कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का नया चैंपियन कौन बनने जा रहा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। सुनिए विश्व कप पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबले के साथ ही आज से T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो जाएगा। पहली बार महिला T20 विश्व कप में सबसे अधिक 12 टीम भाग ले रही है। 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका है। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज को रखा गया है। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट के इतिहास की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने 6 बार ये खिताब जीता है। इंग्लैंड 2009 में, वेस्टइंडीज 2016 में और मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम 2024 में 1-1 बार ट्रॉफी उठा चुकी है। 2025 में अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम इस T20 विश्व कप के प्रबल दावेदारों में शामिल है। अगर भारत को ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो टीम अनुभवी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही है, जबकि स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान है। इनके अलावा शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, रुचा घोष, श्रीचरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव भी टीम का हिस्सा है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को एजबिस्टेन में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और इस मैच को लेकर जितना उत्साह दर्शकों में है उतना ही उत्साह टीमों में भी है। इसके बारे में खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है ना, हमने कभी किसी और मैच में एक्सपीरियंस नहीं करा। इवन दो चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हो और सेमीज भी खेले हो, नेवर फेल्ट दैट। बट आई थिंक क्योंकि शायद बचपन से वो एक एक्सपीरियंस के साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, बट एट द सेम टाइम वो उतना ही स्पेशल मैच होता है, उसको जीतने के बाद उतना ही अच्छा फील होता है, उतना ही रिलैक्स फील होता है।
2: उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इस मैच को लेकर क्या कहा, ये भी सुनते हैं।
3: आई हैवंट रियली फॉलोड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या अगेन टू किक स्टार्ट योर वर्ल्ड कप कैंपेन विद द पाकिस्तान गेम इज ऑलवेज गुड, क्राउड फर्स्ट हैंड इन द फर्स्ट गेम, सो दैट विल मोर देन ऑफ योर बैक, आई जस्ट फील इट विल जस्ट गेट मेक एवरीवन यूज्ड टू द क्राउड।
2: इसके बाद भारत 17 जून को नीदरलैंड, 21 जून को दक्षिण अफ्रीका, 25 जून को बांग्लादेश और अंतिम ग्रुप मैच में 28 जून को ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से शुरू होने जा रही है। जानते हैं 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत माने जाने वाली सीरीज से भारत को क्या उम्मीदें हैं।
4: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी में टीम अब नीली जर्सी में भी अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। 2027 विश्व कप की तैयारी का आगाज मानी जा रही यह सीरीज भारत को कई युवा खिलाड़ियों को आजमाने के नजरिए से बेहद अहम है। भारतीय टीम की बात की जाए तो कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में हैं, जिनको हिटमैन रोहित शर्मा का बखूबी साथ मिल सकता है। विराट कोहली के चोटिल होने के बाद टीम में आए यशस्वी जायसवाल के पास भी खुद को साबित करने का अच्छा मौका है।

0: विकेट कीपर के रूप में टीम के पास केएल राहुल और ईशान किशन का विकल्प है। निचले मध्य क्रम में नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर टीम को बल्लेबाजी में गहराई देंगे। गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम के पास स्पिन अटैक में कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे का विकल्प है, जबकि टीम की पेस बैटरी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्ण प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार जैसे युवा नाम है। तो ये दोनों टीमों में अब तक 4 बार आमने सामने हुई है। इनमें 3 बार भारत ने बाजी मारी है और 1 मुकाबला टाई रहा है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाना है। यहां से शुभमन गिल की मेंस इन ब्लू की नजर इस घरेलू श्रृंखला में जीत दर्ज कर अपनी तैयारियों को एक सकारात्मक शुरुआत देने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
2: It's been special and I've loved it. It's a team that I love and it's so dear to my heart. Well, you know, it's been such a massive part of my life and team sports are pretty special thing, you know, you get a bond with these people around you for such a long period of time and have some really amazing experiences, so they're the sorts of thoughts that come back. The achievements, the good days, the tough days that toughen you up and make you a bit stronger. That's the highlight for me.
3: 35 साल के विलियमसन ने 2010 में टेस्ट और वनडे में और 2011 में T20 में डेब्यू किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर 378 मैचों की 452 पारियों में 48 शतक और 103 अर्धशतक की मदद से विलियमसन ने 19,346 रन बनाए। विलियमसन ने 110 टेस्ट की 195 पारियों में 33 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 9,515 रन बनाए। 175 वनडे की 167 पारियों में 15 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 7,256 रन बनाए। इसके अलावा 93 T20 की 90 पारियों में 18 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 2,575 रन बनाए हैं। फॉर्मेट के हिसाब से विलियमसन टेस्ट में पहले, T20 में दूसरे और वनडे में न्यूजीलैंड के चौथे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। वो 2015 में ICC के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और 2019 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर रहे। विलियमसन न्यूजीलैंड के सफलतम कप्तान भी रहे हैं। दाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने 40 टेस्ट, 91 वनडे और 75 T20 में न्यूजीलैंड की कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में कीवी टीम ने 2019 वनडे विश्व कप का फाइनल खेला था। विलियमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। कीवी टीम उनकी कप्तानी में 2021 T20 विश्व कप का फाइनल भी खेल चुकी है। वहीं विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर 2021 टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 2025 में T20 क्रिकेट से संन्यास के बाद आज पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की विलियमसन की घोषणा के साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। सुनते हैं निशानेबाजी के इस गोल्डन बॉय पर हमारी ये रिपोर्ट।
4: 28 जून 1976 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मे जसपाल राणा को बचपन से ही निशानेबाजी में रुचि थी। पिता नारायण राणा सेना के पूर्व अधिकारी थे और वे ही जसपाल के पहले कोच बने। 1988 में महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इसके बाद 1994 में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में राणा के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पहचान दिलाई। जसपाल ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया और कुल 15 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण पदक शामिल है। 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 6 पदक अपने नाम किए थे। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 590 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। खिलाड़ी के रूप में सफलता हासिल करने के बाद जसपाल राणा ने कोच के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने अनेक युवा निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया और भारतीय निशानेबाजी की नई पीढ़ी को निखारा। उनकी देखरेख में मनु भाकर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने ओलंपिक पदक जीतने के बाद अपने कोच को लेकर क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
5: So I was in the team, I was doing good, but I was not happy with my sport, I was not happy in shooting. So I think

0: was the one to make me have faith in myself again. I would say that he makes me really happy in my sport, and I really enjoy shooting again after like 2 years or so.
1: जसपाल राणा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और कोचिंग में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत सरकार तथा खेल जगत की तमाम हस्तियों ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका निधन खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है और भारतीय निशानेबाजी में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें sportscan@aiar.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूट नीति का एक बड़ा उदाहरण।

0: पहले। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार

0: इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष

0: पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिग्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीकी राजनयिक को बताई गई। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकानो यामागुची से होगा। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अकानो यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराया। वहीं पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी आज हार करके बाहर हो गई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोसेनिया हर्जोगोविना से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारत इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में करेगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया

0: वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीका के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। अमरीकी प्रस्तावित समझौते पर ईरान के अंतिम निर्णय न लेने से पश्चिम एशिया में अनिश्चितता का कायम। ईरान ने कहा, प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे। उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और पद के दुरुपयोग पर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सजा सुनाई। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और 10वें आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आज रात एजबेस्टन में आगाज। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों के कारण हुई त्रासदी में 3 भारतीयों की जान बचाई जा सकती थी। अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने तलब किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीकी राजनयिक को बताई गई। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और मुश्किल की इस घड़ी में संवेदनशील क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालती है। श्री जेसन मीक्स से कहा गया कि भारत की यह गंभीर चिंता अमरीकी अधिकारियों तक पहुंचा दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में तैनात अमरीकी सेना सभी आवश्यक उपाय करे ताकि आम नागरिकों की जान न जाए। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया। उधर ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए इसे क्रूर बताया। ईरान ने अमरीका पर वैश्विक शांति और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। ईरान ने विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही की मांग की। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। अमरीकी सेना ने जल डमरू मध्य के पास 2 ईरानी ड्रोन को रोका है। लेबनान में सीमा पार झड़पें और सुरक्षा अभियान जारी है। इसराइल कई मोर्चों पर सैन्य दबाव बनाए हुए है। समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं। लाल सागर और खाड़ी के जल क्षेत्र में व्यवधान ऊर्जा बाजारों के लिए नई चिंताएं पैदा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और होर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल हैं। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर आशा व्यक्त करते हुए दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक समझौते पर सहमति बनाने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की सराहना करता है। मंत्रालय ने कहा कि मिस्र क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के समन्वय और सहयोग से तनाव को कम करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में

0: 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 350 थी। अब भारत में 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
1: विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह ही नहीं बल्कि ये यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। एक रिपोर्ट।
3: सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को दुश्मन को लाभ पहुंचाने और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी ठहराया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यूंग को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि यून ने अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया को उकसाने और मार्शल लॉ लागू करने का आधार तैयार करने के उद्देश्य से ड्रोन अभियानों को मंजूरी दी थी। पूर्व रक्षा खुफिया कमान प्रमुख यो इन ह्यूंग को 15 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। पूर्व ड्रोन संचालन कमान प्रमुख किम योंग डे को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच आज रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिकी दूतावास उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिका के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर ईरान के अंतिम निर्णय न लेने से पश्चिम एशिया में अनिश्चितता कायम। ईरान ने कहा प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे। उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और पद के दुरुपयोग पर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सजा सुनाई। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आज रात एजबेस्टन में आगाज। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I'm Juliet Arakel with the World News. The headlines. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. West Asia peace efforts remain fragile as Iran announces no final decision on proposed US agreement, says key issues still unresolved. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk Yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. In badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup to begin tonight at Edgbaston. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the U.S. Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. We have a report.
5: The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operate in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Suparna Saikia for World News.
4: While United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on Palau flag tanker off coast of Oman. Spokesman for the UN chief, Stephen Duharik, said Mr. Guterres is deeply concerned about the continuing escalation.
6: We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Citadel tanker that was hit and a number of Indian seafarers were killed, and that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization, and we fully support and second that language.
4: Iran has also condemned the U.S. attacks on commercial vessels, describing them as brutal and accusing Washington of engaging in lawless conduct that threatens global peace and maritime security. On the other hand, U.S. President Donald Trump today accused Iran of carrying out drone attacks on Indian ships, leaving the Strait of Hormuz. Iran today announced that it has not made any final decision on a proposed agreement with the United States. Iran insists major issues are still unresolved, especially its right to uranium enrichment and other strategic priorities. Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghai said talk of a finalized deal or a signing ceremony is premature, though he did confirm that much of the negotiating text has been drafted. The mixed messages follow President Trump's claim that he cancelled planned military strikes on Iran because discussions were progressing at the highest levels in Tehran. Mo from our West Asia correspondent.
7: The latest diplomatic push comes at a critical moment for West Asia. President Trump's announcement that planned strikes had been cancelled briefly raised hopes that a wider regional conflict could be avoided. However, Iranian officials insist that no final agreement has been approved and several major issues remain unresolved. Among the key sticking points are Iran's nuclear program, the release of frozen assets, and the future security arrangements surrounding the Strait of Hormuz. Even as negotiators walk behind the scenes, military activity continues across the region, highlighting the risk that any miscalculation could quickly derail diplomatic progress. This is Vinod Kumar for World News from Dubai.
4: The 13th BRICS Urbanization Forum concluded today in New Delhi after 2 days of substantive deliberations among BRICS member nations on building cities that are inclusive, resilient, sustainable and responsive to the needs of people. The forum was convened by the Ministry of Housing and Urban Affairs under India's BRICS chairship. Delegations from Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, South Africa, and the United Arab Emirates participated in the forum. India and Bangladesh have reaffirmed their commitment to maintaining peace, tranquility and stability along the India-Bangladesh border. The 57th Director General Level Border Coordination Conference between the Border Security Force and Border Guard Bangladesh was held at BSF

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। 12 जून की सुरमई रात, गर्म हवाओं की चादर में लिपटी हुई दिल्ली हर सिंगार की तरह महकती हुई, सर सर कर जिंदगी की मुट्ठी से फिसलती हुई, वक्त की शाखों से दरकते लम्हों से मानो कोई आवाज सी आती है। वो आवाज कहती है, जिंदगी की न टूटे लड़ी। फिल्म क्रांति का ये गीत आपके लिए।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी तो हर पल पुकार पुकार कर यही कह रही है, लेकिन ना जाने दिल को किस किनारे की तलाश है कि ख्वाहिशें उम्र भर बस दौड़ाए रखती हैं और इसी जद्दोजहद में इंसान जीना भूल जाता है। ऐसे में कोई साथी जब अपनी प्यार भरी निगाहों से मन को छूकर जीने का इशारा करता है तो यूं लगता है कि जैसे सब कुछ बदल गया और हम अनायास ही गुनगुना उठते हैं। फिल्म याराना का ये गीत।

उनके मन को छू लेने से मौसम तो बदल जाता है, लेकिन जिंदगी के मौसम में ना तो बहारें टिकती हैं और ना ही खिजाएं। हाँ, मगर जीने वाले दोनों को ही जी भर के जीते हैं। वो कहते हैं कि उठो कि जश्न खिजा हम मनाएं जी भर के, बहार आए गुलिस्ता में कब खुदा जाने। एक और गीत आपके लिए फिल्म आंधी से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

तुम आ गई हो, नूर आ गया है, वरना जिंदगी बेमायने थी। दरअसल वक्त की बहती धारों पर भागते दौड़ते हम कब आगे बढ़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, मगर हर सफर का जो बहाव होता है वो अपने साथ सब कुछ नहीं ले जाता। जिंदगी के कुछ लम्हे रास्ते में ही टूटकर कहीं गिर जाते हैं, और उन्हीं लम्हों के साथ कुछ अधूरी कहानियां, कुछ अनकहे जज्बात, कुछ अधूरे सवाल भी पीछे रह जाते हैं। वे वहीं किसी मोड़, किसी गली, किसी पुराने मौसम की तरह ठहरे रहते हैं, चुपचाप हमारा इंतजार करते हुए। और फिर किसी खुशबू में, कभी किसी अनजान चेहरे में, कभी किसी गीत की धुन में वे फिर हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और याद दिलाते हैं कि कुछ कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, वे बस हमारे लौट आने का इंतजार कर रही हैं इस गीत की तरह।

देखिए, इश्क की किताब का हर वर्क वफा की दास्तानों से ही नहीं भरा होता, उसमें कहीं शिकवों की स्याही भी होती है, कहीं इंतजार की लंबी रातें आहें भर रही होती हैं, तो कहीं बेवफाई के धुंधले निशान सिसक रहे होते हैं। मोहब्बत की दुनिया के कितने किरदार अपने महबूब की बेरुखी और जुदाई से ही जन्मे हैं। अजीब दस्तूर है ना इश्क का भी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

रूह में मन के दरीचे से कोई झांक गया, जुल्फे एहसास में खुशबू की किरण टांग गया, पाश पाश आंख में आईना हुआ किस लौ का, कौन अंधेरे में माहो कह कशां टांग गया। वो अजनबी जब भी मिलता है तो यूं लगता है जैसे जिंदगी की तस्वीर बदल गई, और फिर दिल राजेंद्र कुमार और साधना की तरह ये कह उठता है कि हाँ पाए बाहर आई।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों

0: के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain-raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Magdum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर

0: ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें, या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है, और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिये, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है, तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
0: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई

0: जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पांस आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा, किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल

0: भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की

0: अभी जब ऐसी थी तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, भाव जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत होकर के जब काम करने लगता है तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: ये गीत था फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म साजन से।
1: रेशम की डोरी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा

0: सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defense Research and Development Organization's DRDO, Defense Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said, the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Union Cabinet Secretary Dr. T.V. Somanathan has reviewed the preparedness for the NEET re-examination in a meeting yesterday with the Director General, National Testing Agency, Abhishek Singh. He said that the central government, state governments and district administration are working together in close coordination to ensure smooth conduct of the NEET re-examination. Meanwhile, the NTA has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UGC 2026, scheduled to be held on 21st of this month. Tripura Chief Minister Professor Manik Saha has presented the state's key development priorities and infrastructure requirements during a high-level Niti Aayog interactive session with northeastern states in New Delhi. The meeting, held in the presence of Niti Aayog Vice Chairman Ashok Kumar Lahiri and other members, focused on accelerating regional growth and governance reforms. A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk Oh to 30 years in prison after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. The opening match of the 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup is underway, with host England taking on Sri Lanka at Edgbaston in Birmingham. Put into bat first, England were 135 for 1 in 13.4 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आपने सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। मौसम सुहाना हो और वीकेंड साथ हो तो हर पल में एक अलग ही मिठास खुल जाती है। दिल बेवजह मुस्कुराने लगता है और जिंदगी कुछ और हसीन लगने लगती है।

ओ सनम, बस यही ख्वाहिश है कि हम दोनों का साथ यूं ही बना रहे। वक्त चाहे कितनी ही करवटें बदले, जिंदगी हमें कितने ही इम्तिहानों से गुजारे, मगर हमारे बीच का अपनापन कभी कम ना हो। हर सुबह तेरी मुस्कान से शुरू हो और हर

शाम तेरी बातों की मिठास मिठल जाए। आपने सुना त्रिशूल फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

छोटी छोटी तकरारें रिश्ते को कमजोर नहीं करती, बल्कि अगर उनमें अपनापन और समझ हो तो वही रिश्ते को और गहरा बना देती हैं। रूठना भी एक एहसास है और मनाना भी एक प्यार भरा इजहार। आखिर मोहब्बत का मजा ही क्या अगर कभी कोई शिकायत ना हो और उसे दूर करने की मीठी सी कोशिश ना हो। लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना था लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

तुम्हारी कसम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 22 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अभी आपने सुना चरित्रहीन फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। जी हाँ, दिल से दिल मिलने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर मुलाकात यूं ही नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त की किताब में पहले से लिखे हुए लगते हैं। कभी किसी की बात में अपनापन मिलता है, कभी उसकी खामोशी भी अपनी सी लगती है। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं, बिना ज्यादा कहे एहसास बढ़ने लगते हैं, तो लगता है कि इस जुड़ाव के पीछे कोई अनदेखा सा कारण

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसमें संगीत दिया। रिश्ता ऐसा हो जिसमें दिखावा ना हो, बस अपनापन हो, जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं बोलें और साथ होने का एहसास हर पल दिल को छूता रहे।

दूरियां फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। तुम्हारे आने के बाद जाना कि कुछ लोगों की मौजूदगी जिंदगी को बदल नहीं देती, बल्कि उसे एक नया अर्थ दे देती है। अब हर खुशी थोड़ी और खूबसूरत लगती है और हर पल में एक अपनापन सा महसूस होता है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है।

0: रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में डीआरडीओ की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, "The growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation." He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisations, or DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, "People are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border." The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security. Jameen.

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

जन्म जन्म के फेरे। इस फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एसएन त्रिपाठी ने। ये मीठी तान आज भी कानों में पड़ते ही दिल को सुकून दे जाती है, जैसे कोई अपना बहुत दिनों बाद हाल पूछने आ गया हो। पुराने गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जज्बातों का खजाना है, जो हर दौर में दिलों को जोड़ते रहते हैं।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। पुराने गीतों की मीठी तान दिल के किसी कोने को छू जाती है। इनमें शोर नहीं है न दिखावा है, बस सादगी, एहसास और मोहब्बत की खुशबू। कभी किसी सुर में चांदनी रात उतर आती है तो कभी किसी धुन में बिछड़ने का दर्द। उन गीतों को सुनकर लगता है जैसे बीते हुए लम्हे फिर से मुस्कुरा उठे हों और यादों की महफिल सज गई हो।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। पुराने गीत की दर्द भरी पुकार आज भी दिल के तार छेड़ जाती है। इन सुरों में बिछड़ने की कसक है, इंतजार की बेचैनी है और अधूरी मोहब्बत की कहानी है। जब कोई पुरानी धुन हवाओं में खुलती है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ खड़े होते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ नम आंखों के साथ।

अजी बस शुक्रिया फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

वक्त हुआ है 1:27, वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बड़ी बहन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया हुसन लाल भगतराम ने।

परवरिश फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया दत्ताराम वाटकर ने। अपने जज्बात बयान करने का सबसे सीधा और खूबसूरत जरिया ये पुराने गाने हैं। जो बातें कभी लफ्जों में नहीं कही जा सकी उन्हें इन गीतों ने सुरों में ढालकर दिल तक पहुंचा दिया। कभी मोहब्बत का इजहार बनकर, कभी इंतजार की आहट बनकर, तो कभी जुदाई की कसक बनकर, ये गाने हर एहसास को आवाज दे देते हैं।

एक सपेरा एक लुटेरा, रफी की आवाज में आपने गीत सुना। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया उषा खन्ना ने। कितना दर्द झलकता है इन गीतों में, जैसे किसी ने अपने दिल की सारी कसक सुरों में पिरो दी हो। कहीं बिछड़ने का गम है, कहीं अधूरी मोहब्बत की टीस, तो कहीं किसी के इंतजार में गुजरती लंबी रातों की दास्तान।

मतारी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। बड़ी बड़ी बातों को कितनी आसानी से कह दिया करते हैं ये पुराने गाने। जो बातें कभी किताबों में समझ नहीं आती वो दो चार पंक्तियों में दिल तक उतर जाती है। मोहब्बत हो, इंतजार हो, जुदाई हो या जिंदगी का कोई फलसफा, पुराने गीत बिना शोर किए गहरी बात कह जाते हैं।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जी हाँ, इन गीतों के अल्फाज सादे होते हैं मगर मायने बहुत गहरे। यही वजह है कि बरसों बाद भी इन्हें सुने तो लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े सलीके से कह रहा हो। पुराने गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसासों की ऐसी जुबान है जो हर दौर में समझी जाती है और जाती रहेगी।

बादल फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। हल्के फुल्के दिल को छू लेने वाले पुराने गाने जिंदगी की भागदौड़ में एक मीठी सी राहत जैसे लगते हैं। ना इनमें शोर होता है ना बनावटीपन, बस सादे अल्फाज, मधुर धुने और सच्चे एहसास।

0: जबक फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 31 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर

0: जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतलुआ अंगकिमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथान संगीव हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: The West Bengal government has assured special support for farmers in the agriculture sector in North Bengal with particular emphasis on potato and tea cultivation. State Minister for Agriculture and Agri-Marketing, Rural Development and Panchayati Raj, Dilip Ghosh, said this while addressing the Kanchenjunga Agripreneurs Meet in Siliguri. He said the government will give special attention to the welfare of farmers engaged in potato and tea production in the region. External Affairs Ministry has summoned Shadi Affairs of the United States.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

चितचोर फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और यीशुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुरमई हो, हवाओं में नमी खुली हो और कहीं दूर से कोई मधुर धुन कानों में उतर आए, ऐसे में दिल चाहता है कि कोई अपना पास आकर बैठ जाए, दूरियों के सारे फासले मिट जाएं और खामोशियों में भी मुलाकातों का एहसास मिलने लगे।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म से आपने गाना सुना। हेमलता की आवाज में रविंद्र जैन ने इसको लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। जिंदगी की धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर प्यार की छांव साथ हो तो सफर आसान लगने लगता है। अपनापन, विश्वास और स्नेह की ये छांव यूं ही बनी रहे, यही हर रिश्ते की सबसे खूबसूरत दुआ है।

सौदागर फिल्म का गाना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत दिया रविंद्र जैन ने। फूलों की महक हो, चांदनी की नरमी हो या किसी की सादगी में छिपी रौनक, दिल हर उस एहसास की ओर खिंच जाता है जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दे।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, जैसे कोई मीठा सा ख्याल हर पल साथ चलता हो। हवा भी कुछ अलग लगती है, मौसम भी सुहाना लगता है और हर छोटी सी बात में एक अनजानी सी खुशी झलकती है। शायद दिल ने किसी खूबसूरत एहसास को अपना लिया है, तभी तो आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गजल सुनी तलत अजीज की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। जी हाँ, ये साथ कितना प्यारा है, जैसे ठंडी हवा का एक नरम झोंका, जैसे बरसों से बिछड़े किसी गीत की मधुर धुन। तेरे साथ चलते हुए रास्ते आसान लगते हैं और हर पल में एक नई खुशी का एहसास जाग उठता है। जिंदगी की भीड़ में बस यही लगता है कि तेरा साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि यही मेरे लिए दिल का सबसे खूबसूरत सहारा है।

वक्त हुआ है 2:42 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथ साथ फिल्म से आपने ये गजल सुनी, जगजीत सिंह की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। तुम्हें देखकर लगा जैसे किसी लंबे सफर के बाद मन को एक सुकून भरा ठिकाना मिल गया हो, अचानक सब कुछ थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा हो। हवाएं, मौसम और वो पल जो अब तक बस यूं ही गुजर जाया करते थे, ऐसा लगा जैसे दिल के किसी कोने में छिपी एक पुरानी धुन फिर से बज उठी हो और उसकी मिठास देर तक साथ बनी हुई हो।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा मीर तकी मीर ने और इसका संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना गोयल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित

नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, शोर और जिम्मेदारियों के बाद अब वक्त है कुछ पल अपने लिए चुरा लेने का। जी हाँ, ये वक्त है कार्यक्रम हमराही का और मैं हूँ आपके साथ आज रात की हमसफर अर्चना गोयल। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात की ये खामोशी भी अजीब होती है, दिन में जो बातें सुनाई नहीं देती वो रात के सन्नाटे में धीरे से दिल तक पहुंच जाती हैं। तो आइए आज की इस शांत रात में कुछ बातें करते हैं, कुछ यादों को छुएंगे और कुछ पलों को बस महसूस करेंगे।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म महबूब की मेहंदी से। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। दिल सवाल करता है, रात जवाब देती है। कई लोग इस वक्त अपने घरों में होंगे, कोई नींद के आगोश में, कोई किताबों के साथ तो कोई किसी की यादों के साथ, और कोई सिर्फ खुद के साथ। आज अगर आपके मन में कोई अधूरी बात है तो उसे थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दीजिए।

दोस्तों, रात हमें सिखाती है कि हर अंधेरा डरावना नहीं होता। कुछ अंधेरे सुकून भी देते हैं, जैसे आसमान के सितारे दिन में नहीं दिखते। वैसे ही कई बार हमारी ताकत भी मुश्किल समय में ही नजर आती है। एक छोटी सी बात, हर दिन पूरा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खत्म होकर हमें कुछ सिखा जाए, ये जरूरी है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने धरती फिल्म का गीत सुना। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28:57।

कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका असर वही रह जाता है और रात उन यादों को आवाज दे देती है। अगर आपका भी किसी की याद आ रही है तो उसे रोकिए मत। ये यादें ही रिश्तों की एक खूबसूरत भाषा होती है।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, फिल्म थी बेटी। और अब कुछ पंक्तियां इस खूबसूरत सी रात के लिए। खामोशियों में भी आवाजें होती हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए। रात ने पूछा, क्यों जाग रहे हो? हमने कहा, कुछ सपने अभी बाकी हैं, जो बातें दिन में न कर सके उन्हें रात ने चांद को सौंप दिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म में ये आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। हर प्यार को शब्द नहीं मिलते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बातें कम एहसास ज्यादा होते हैं। वो हर दिन हाल पूछना नहीं लेकिन हर दिन याद करना होता है। वो साथ चलना नहीं लेकिन दूर रहकर भी साथ निभाना होता है। और शायद यही सबसे शांत और सबसे गहरी मोहब्बत होती है।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी कहानी में आते हैं लेकिन मंजिल नहीं बनते, फिर भी उनकी जगह कोई नहीं लेता। और अजीब बात यह है कि खामोश मोहब्बत शिकायत नहीं करती, वो बस दुआ बन जाती है। जहां भी रहो, खुश रहो, शायद यही सबसे सच्चा रिश्ता होता है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत था फिल्म शोर से। रात और मोहब्बत का रिश्ता पुराना है, दिन में लोग मिलते हैं, रात में यादें। कई लोग इस वक्त शायद किसी की प्रोफाइल नहीं बल्कि उनकी यादें देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अगर वो साथ होता तो ये रात कुछ और होती। वाकई दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते।

धीरे धीरे इस सफर को यहीं रोकते हैं। आज की रात अपने मन को थोड़ा हल्का कीजिए, पुरानी बातों को माफ कीजिए और आने वाले कल पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। अगर किसी की याद आई है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हर याद किसी खूबसूरत पल का सबूत होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामूहिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतुअंग अंकिमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथन संगी हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। इस बीच विदेश मंत्री डॉ SJYSHANKAR ने कहा कि उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमले में 3

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 4:11 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार। एक नए दिन की पहली सुबह के साथ आपका स्वागत है। रात की चुप्पी अब धीरे धीरे विदा ले रही है और आसमान पर उजाले की एक पतली रेखा दिखाई देने लगी है। ये समय है ठहर कर अपने भीतर झांकने का और नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का। तो शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। आज की भोर की बेला सिर्फ सुबह नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और मुस्कुराहट भी लाई है। इस उम्मीद विश्वास में अगर ईश्वर की प्रार्थना भी शामिल हो जाए तो क्या बात है। सुनते हैं भक्ति से भरा गीत।

कभी महसूस किया है सुबह की हवा कुछ अलग होती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक सुकून होता है। सुबह हमें सिखाती है कि हर दिन नया हो सकता है। पेड़ हर दिन नई हवा देते हैं, सूरज हर दिन नई रोशनी देता है, तो क्यों ना हम भी अपने मन में नई सोच क्यों ना लाएं।

दोस्तों, कई बार हम जीवन में बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन सुबह हमें याद दिलाती है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में भी होती है। एक कप चाय, खिड़की से आती हवा, घर वालों की मुस्कान और ये एहसास कि हम एक और नया दिन देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है, उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। दोस्तों, अगर मन में कोई बोझ हो तो सुबह उसे थोड़ा हल्का कर लीजिए। हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं मिलता, लेकिन हर सुबह हमें उसे देखने का नया नजरिया देती है। आज किसी अपने को एक प्यारी सी बात कहिए, किसी का हाल पूछिए या खुद के लिए 5 मिनट निकालिए। कभी कभी सबसे जरूरी मुलाकात खुद से होती है।

दोस्तों, जब सुबह होती है तो मन भी शांत होने लगता है। 2 मिनट आंखें बंद करके बस इतना कहिए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला पल है उसके लिए विश्वास। और यही विश्वास जीवन को हल्का बनाता है।

कल कैसा था ये अब कहानी बन चुका है, आज कैसा होगा ये हमारे विचार तय करेंगे। अगर मन में कोई अधूरापन है तो उसे आज पूरा करने की शुरुआत कीजिए। अगर कोई सपना रुका है तो आज उसे फिर आवाज दीजिए। याद रखिए, सूरज हर दिन इसलिए नहीं निकलता कि दिन बदल गया, वो इसलिए निकलता है कि हम बदल सकें।

दोस्तों, दिन भर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या आप खुद से मिले हैं कभी? सुबह का समय यही मौका देता है, कुछ पल अपने साथ बैठिए, सोचिए क्या चीज आपको खुशी देती है, क्या चीज आपको थका देती है। मन की सफाई भी उतनी जरूरी है जितनी घर की। आज का विचार है कि धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत दूर तक पहुंच सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए।

और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस सुबह की ताजगी को अपने साथ रखिए। आज का दिन मुस्कुराकर शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और की मुस्कुराहट की वजह बन सकती है। मैं आपकी साथी अर्चना गोयल आपसे फिर मुलाकात होगी भोर सुहाने के अगले सफर में, अब से कुछ देर बाद 5:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। सुबह की इस कोमल बेला में आपका स्वागत है। कार्यक्रम भोर सुहाने के साथ मैं आपकी हमसफर अर्चना गोयल, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वो समय है जब दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस शांत समय में अपने सपनों को नया आकार दे रहे होते हैं। कहते हैं कि सुबह सिर्फ समय नहीं होता, एक एहसास होता है, और आज इसी एहसास को महसूस करने के लिए हम और आप साथ हैं।

देखिए ना, बाहर पेड़ बिना शिकायत के खड़े हैं, हवा बिना शोर के चल रही है, आसमान बिना रुके रंग बदल रहा है। प्रकृति हर सुबह एक बात सिखाती है कि जीवन को सहज बनाइए। सब कुछ अपने समय पर खिलता है, क्योंकि यही मौसम होता है। निधिया से बहारें जब जागती हैं,

अगर आपके पिछले कुछ दिन कठिनाई में बीते हों तो ये सुबह आपके लिए एक संदेश लाई है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, रात चाहे कितनी भी लंबी हो सुबह आती है। इसलिए आज अपने लिए बस एक काम कीजिए, मुस्कुराइए बिना वजह।

वाकई बहुत ही सुंदर गीत, मुस्कुराते रहो और गम छुपाते रहो। दोस्तों, सुबह की ये नरम धूप, ये शांत हवा, एक कप चाय, खिड़की से आती हल्की रोशनी और मन में कोई जल्दी नहीं, सुबह शायद इसी का नाम है। और ये कुछ पल उम्मीद है कि आपका दिन सुंदर बनाएंगे।

आप सुन रहे हैं भोर सुहानी, जहां हर सुबह सूरज नहीं उगता बल्कि उम्मीदें जागती हैं, मन मुस्कुराता है और दिन को एक नई दिशा मिलती है। आज की सुबह भी कुछ अलग है। आज हम दिन की शुरुआत करेंगे जोश से, शोर से नहीं, ऊर्जा से लेकिन जल्दबाजी से नहीं। चलिए मन की खिड़कियां खोलिए और खूबसूरत सुबह को अपने अंदर बिखेर दीजिए।